सुप्रभात, ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 24वीं तिथि, तदनुसार 15 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है। इस सभा में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं।

0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता, जिसे दोहरा अंशदान समझौता DCC कहा जाता है, भी प्रभावी हो गया है। इससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर शून्य शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। कल नई दिल्ली में वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि ये समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए चरण की शुरुआत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत ब्रिटेन CETA और DCC का लागू होना वैश्विक स्तर पर एकीकृत, लचीली और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में भारत की यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
2: इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। रोहन के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने कहा है कि वे पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मथेसिय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। श्री जायसवाल ने कल नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए तनाव कम करना और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालना जरूरी है। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही नीतियों और लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का परिणाम है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराने की अपील की। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। उससे पहले वर्ष ये $679 मिलियन था। इसमें 13.5% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन है। इनमें दबाव वाले भारी पानी के रिएक्टर, उबलते पानी वाले रिएक्टर और हल्के पानी वाले रिएक्टर शामिल है। देश मुख्य रूप से दबाव वाले भारे पानी का रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। सरकार ने कहा है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए अपने परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का लगातार विस्तार कर रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने कल रात फ्रांस को 2-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए मिकेल ओयरज़ाबाल ने 22वें मिनट में पेनल्टी पर पहला गोल किया। इसके बाद 58वें मिनट में पेड्रो पोरो ने दूसरा गोल दागा। अब फाइनल में स्पेन का मुकाबला आज अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। वहीं क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हर रोज की तरह समूह स्वर में गाई इस मातृ वंदना के साथ। रचना उद्धव कुमार की, संगीत पंडित रविशंकर का।

समूह स्वर में मातृवंदना अभी आप सुन रहे थे। रचना थी उद्धव कुमार की, संगीत था पंडित रविशंकर का। और आइए अर्चना कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं ये गणपति वंदना। रचना सुधाकर की है, संगीत है अमीन संगीत का, स्वर अनूप जलूटा का।

गणपति वंदना अभी आप सुन रहे थे। स्वर था अनूप जलोटा का, रचना थी सुधाकर की, संगीत था अमीन संगीत का। इस समय आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना, और इस कार्यक्रम में आइए अब आपको सुनवाते हैं पंडित रामानंद शर्मा की रचना। स्वर शर्मा बंधुओं का है।

और आइए, अर्चना कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं ये पारंपरिक रचना। स्वर है जूठिका रॉय का।

अभी आप सुन रहे थे ये पारंपरिक रचना, स्वर था जूठी का रॉय का। इस भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना अब समाप्त होता है।

यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 6:25 हुए हैं, आइए आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर बाद यानी कि 6:30 पर आप सुनेंगे रामचरितमानस का संगीतमय पाठ। गायक स्वर होंगे कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के। भूले बिसरे गीत सुनिएगा सुबह 6:40 से। संस्कृत में समाचार होंगे सुबह 6:55 से। इन्हें अमरेली करते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हमारा दैनिक कार्यक्रम सुबह सुबह पेश किया जाएगा सुबह 7 बजे से। सुबह 7:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय होगा फूलों की खेती से लाभ और विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर आर के पटेल। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से हम रिली करेंगे सुबह 7:10 से। मन चाहे गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा सुबह 7:20 से। संगीत सरिता ये कार्यक्रम सुनिएगा सुबह 7:45 से। समाचार प्रभात का वक्त होगा सुबह 8 बजे का। रिली करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। लोक संगीत के कार्यक्रम में कुछ बुंदेली लोकगीत आप सुनेंगे सुबह 8:15 से। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:45 से। सुबह 9 बजे से सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। रिली करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। जिले की चिट्ठी सुनिएगा सुबह 10 बजे से। इसे हम रिली करते हैं आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। सुबह 10:05 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। फोन करें गीत सुने इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा सुबह 10:10 से। सुबह 11 बजे से सुनिएगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुबह 11:30 से एक बार फिर से आपको ले चलेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र और सुनवाएंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण। फिल्म संगीत का कार्यक्रम दोपहर 2 बजे से होगा। रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। प्रादेशिक समाचार होंगे दोपहर 2:10 से। इन्हें भी हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हम रेडी करेंगे दोपहर समाचार। वक्त दोपहर 2:15 का। दोपहर 2:30 से एक बार फिर से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रेडी किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। शाम 5 बजे से सुनिएगा कार्यक्रम युववाणी। इस कार्यक्रम में आज सुनिएगा परिचर्चा। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संचालित शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना पर केंद्रित। प्रतिभागी विशेषज्ञ होंगे धर्मवीर मौर्य, कल्याण प्रशासक श्रम कल्याण संगठन मध्य प्रदेश परिक्षेत्र, और डॉक्टर नरेश तिवारी, CMO सेंट्रल हॉस्पिटल सागर। संचालन होगा दीपक निषाद का। संगीत सरिता कार्यक्रम सुनिएगा शाम 5:30 से। सदाबहार गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:30 से। लोकरंग कार्यक्रम सुनिएगा शाम 6:45 से और शाम 7:20 से। हिंदी में समाचार होंगे शाम 7 बजे से। कार्यक्रम विवरण के तहत कार्यक्रमों की जानकारी प्रेषित की जाएगी शाम 7:05 से। प्रादेशिक समाचार होंगे शाम 7:10 से। इन्हें हम रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ग्राम सभा का अनुप्रसारण किया जाएगा शाम 7:30 से। रिली करेंगे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। रात्रि 8 बजे का समय होगा चित्रपट संगीत का। संगीत सरिता ये कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:15 से। रात्रि 8:30 पर सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम
नशे से दूरी है जरूरी 2.0। समाचार संध्या का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रात्रि 8:45 से। मन चाहे गीतों का कार्यक्रम पेश किया जाएगा रात 9 बजे से। रात 9:30 से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये तो थे हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं रामचरितमानस का संगीतमय पाठ, गायक स्वर कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के।

इस संसार में न कोई ज्ञानी है न कोई मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वो उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। एक बार सुंदर पर्वत नदी और वनों को देख नारद जी का भगवान के चरणों में असीम प्रेम जागृत हो गया। यहाँ तक कि दक्ष प्रजापति द्वारा नारद को दिए गए श्राप की गति भी रुक गई और नारद समाधि में लीन हो गए। नारद की समाधि से भयभीत होकर इंद्र ने कामदेव से प्रार्थना की कि वो किसी प्रकार नारद की समाधि को भंग करे। कामदेव ने नारद की समाधि को भंग करने के अनेक प्रयास किए पर असफल रहा। अंत में भयातुर कामदेव ने नारद के चरण पकड़कर उनकी स्तुति की। इस घटना के बाद नारद के मन में अभिमान जागृत हुआ कि उन्होंने कामदेव को भी जीत लिया है।

रामचरितमानस का संगीतमय पाठ अभी आप सुन रहे थे। गायक स्वर थे कविता कृष्णमूर्ति और साथियों के। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। 6:40 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भूले बिसरे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं इंदिवर के लिखे गीत के साथ, स्वर और संगीत मुकेश का, फिल्म का नाम अनुराग।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं SH बिहारी का लिखा गीत। संगीत है हेमंत कुमार का, आवाजें लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की। फिल्म का नाम हिल स्टेशन।

0: जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है। कार्यक्रम का नाम है भूले बिसरे गीत, और इस कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं नया अंदाज। इस फिल्म का गीत आवाजें किशोर कुमार और शमशाद बेगम की, बोल जानिसार अख्तर के संगीत है ओपी नैयर का।

अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बज चुके हैं, पीछे कार्यक्रम सुबह सुबह। सभी सुनने वालों को सुमित दुबे का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, जिंदगी में हम सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सी घटनाएं हमें प्रेरित करती हैं और ज़्यादातर हमें अच्छी बातें, अच्छी घटनाएं, अच्छे लोग ही सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन कई बार हम दूसरों की गलतियों से भी बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत सी घटनाएं हमें सतर्क करती हैं, दूसरों के खराब अनुभव भी हमें अनुभवी बनाते हैं। यानी सकारात्मक सोच के साथ काम करते हम अपने आसपास नकारात्मक चीज़ों से सकारात्मक परिवर्तन अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं। यानी किस बात को, किस घटना को, किस नज़रिए से आप देखते हैं, वो नज़रिया बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अक्सर हम कहते हैं कि जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये बात उसी संदर्भ में लागू होती है कि बहुत ईमानदारी से मेहनत करते जब हम असफल हो जाते हैं तब वो असफलता उससे बड़ी सफलता की तैयारी के लिए हमें तैयार कर देती है। और सफल होते हम ये कहते हैं कि जो कुछ हुआ था अच्छे के लिए ही हुआ था। टूटी फूटी रद्दी चीज़ों से कुछ रचनात्मक चीज़ों का निर्माण भी बताता है कि केवल सोचने का ढंग आपका सही है तो सब सही होता है। इसीलिए बहुत सी अच्छी विद्या और हुनर का उपयोग जब हम गलत सोच के साथ करते हैं गलत अंजाम के लिए तो नतीजा गलत ही होता है। इसीलिए कुछ भी सीखने की सार्थकता भी तभी है जब हम अपनी सीख से दूसरों को भी कुछ अच्छा सिखाते, सबके कल्याण की बात सोचें। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के नाते सही मायनों में तभी खुश रह सकता है जब सब खुश हों। क्योंकि सबकी खुशियों के बीच ही तो वो रहना चाहता है और उसके जीवन की खुशियां उसे समाज से भी मिलती हैं। क्योंकि जहां जो भी हम दूसरों को देते हैं वही लौटकर हमारे पास आता है और ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।

यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05

0: यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है। एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर 7:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम कृषि संकेत। इस कार्यक्रम में आज का विषय है फूलों की खेती से लाभ, और विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आर के पटेल।
1: बुंदेलखंड में किसानों की रुचि फूलों के प्रति कम है। उसका सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो किसान भाइयों को जानकारी का अभाव है, दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो किसान भाई मेहनत करके पुष्पों का उत्पादन करते भी हैं उनको अच्छे रेट्स नहीं मिलते, और अच्छे रेट्स नहीं मिलने के कारण चूँकि उनको वो फ्लावर्स बाहर ले जाना पड़ता है। चूँकि अभी इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था नहीं है, हालांकि अब ये नहीं कहा जा सकता, इस बात से तो मैं भी इनकार करता हूँ कि नहीं है, इसमें किसान भाइयों को निश्चित रूप से थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। और जो मेरे पड़ोस के डिस्ट्रिक्ट जिले हैं, जैसे आपका जबलपुर है, इंदौर है, तो ये हमारे किसान भाई पुष्पों का उत्पादन करके यदि इन लोगों से संपर्क में रहते हैं तो निश्चित रूप से बुंदेलखंड के लिए ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय का साधन बन सकता है, और किसान उसमें काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब रही बात वर्तमान में फूलों की जो जातियाँ हैं या फूलों के जो किस्में हैं, उसमें मुख्य रूप से जैसे गेंदा हुआ, गुलाब हुआ, क्राइसेंथिमम हुआ, तो ये फूल कॉमर्शियल फूल होते हैं, जिसको छड़ी वाला फूल बोलते हैं, और उसकी स्टिक जो है 3 से लेकर 4 रुपए, इवन 5 रुपए पर स्टिक की बिक्री होती है। उसको हिंदी में गुलदाउदी भी बोलते हैं, तरह तरह के थोड़ा अंग्रेजी में नाम। तो हमारे किसान भाई यदि इसमें फूल में रुचि लेते हैं तो निश्चित रूप से उद्यानिकी विभाग उनको अनुदान भी और ट्रेनिंग की भी व्यवस्था होती है। और आजकल देखिए, बहुत सबसे अच्छी बात यह है कि अब वो समय चला गया, निश्चित रूप से ठीक है, आप विभाग के संपर्क में हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे नए किसान भाई हैं, नए बच्चे हैं, वो सब आजकल ऑनलाइन से लोड करके और उसको सर्च कर ले, उसमें सारा आ जाता है कि आपको किस फ्लावर्स में कितना अनुदान दे है, किस फ्लावर्स को उगाएं, क्या टेक्निक है, टोटल आजकल प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। तो हम अपने नए किसानों से आग्रह करेंगे, खासकर नए बच्चों से जिनका खेती की ओर रुझान है, निश्चित रूप से इंटरनेट का भी उपयोग करके और अधिक से अधिक जानकारी विभाग के अलावा भी प्राप्त कर सकते हैं। उद्यानिकी विभाग के क्षेत्र में 5 सेक्टर आते हैं, सब्जी, मसाला, पुष्प और औषधि। तो जो प्रक्रिया अनुदान में फल में है वही प्रक्रिया पुष्पों में है, अनुदान के प्रतिशत में कुछ अंतर होता है। जी। और जैसा मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि किसानों को अनुदान के लाभ लेने के लिए अथवा इस प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे पहली बात यह होती है कि आप अपना ऑनलाइन आवेदन करो। तक किसान भाई ऑनलाइन आवेदन नहीं करवाएंगे वो अनुदान का लाभ उनको नहीं मिल सकता। अब रही बात अनुदान कैसे मिलता है, तो किसान भाई जब अपना ऑनलाइन आवेदन करवा लेंगे तो ऑनलाइन आवेदन करवाने के बाद सीधा उनका आवेदन हमारे जिला कार्यालय में आता है, और संचालनालय स्तर से जब टारगेट आते हैं तो प्रथम आओ प्रथम पाओ के सिद्धांत पर उन्हीं किसान भाइयों को अनुदान का लाभ देते हैं जिन्होंने ऑनलाइन अपना सबसे पहले करवाया। ये प्रक्रिया प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल माह से शुरू होती है, किसान भाई उसका आवेदन कर सकते हैं। तो हमारा किसान भाइयों से ये आग्रह अनुरोध है कि उनको पुष्पों की खेती में अनुदान का लाभ जो है प्राप्त हो सके।
0: कृषि संकेत कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। विषय था फूलों की खेती से लाभ, और विशेषज्ञ थे डॉक्टर आर के पटेल।

यह आकाशवाणी सागर है। 7:10 होने को हैं। थोड़ी देर में होंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की करेगा मेजबानी। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। इंदौर से अबूधाबी के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का आगाज आज से। और भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में कल 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिवसीय इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया करेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज आयुष संस्थान में 3 दिवसीय सेमिनार सौश्रुतम का उद्घाटन करेंगी। ये सेमिनार आचार्य सुश्रुत की जयंती के मौके पर आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आयुर्वेद और आधुनिक शल्य चिकित्सा के एकीकरण पर देश विदेश के विशेषज्ञ चर्चा करेंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता CETA आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है, जिससे ब्रिटेन में भारतीय व्यवसायियों की गतिशीलता और प्रतिस्पर्धात्मकता को बल मिलेगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% टैरिफ लाइनों पर 0% शुल्क की सुविधा प्राप्त होगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कल नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि
1: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
0: प्रदेश में बलराम कृषि महोत्सव की शुरुआत आज से होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस महोत्सव का शुभारंभ इंदौर के लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में करेंगे। वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन प्रदेश भर में किया जाएगा। इंदौर के अलावा 17 जुलाई को धार, 19 जुलाई को झाबुआ, 21 जुलाई को अलीराजपुर, 23 जुलाई को बड़वानी, 25 जुलाई को खरगोन, 27 जुलाई को बुरहानपुर और 30 जुलाई को खंडवा में बलराव महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकी, उन्नत बीजों, नवीन कृषि यंत्रों, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, फसल विविधीकरण, जल संरक्षण तथा शासन की किसान हितैषी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। महोत्सव में कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले उत्कृष्ट किसानों का सम्मान भी किया जाएगा। प्रदेश के बुनियादी ढांचे और जनकल्याण के लिए सरकार ने 10,800 करोड़ रुपए के अलग अलग विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कल मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में नगरी अधोसंरचना विकास मद में 8,445 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने किसानों के हित में मूंग उपार्जन के लिए 1,587 करोड़ रुपए की निशुल्क शासकीय प्रत्याभूति पर मोहर लगाई है। मंत्रिपरिषद ने कुंडलिया वृहद सिंचाई परियोजना 31 मार्च 2031 तक संचालन के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इसे राजगढ़ और आगरमालवा जिले के 1,39,600 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। प्रदेश भर में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के दूसरे दिन आज आगरमालवा और खंडवा सहित प्रदेश के कई जिलों में कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल भोपाल में इस अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नशे की रोकथाम के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है।
3: हमारे लिए अब एक प्रकार का नशा नहीं रह गया, कितने प्रकार की चुनौतियां आ गई, लेकिन आज हम जब सामाजिक रूप से इस बात को महसूस करते हुए सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है कि चुनौतियां तो अभी भी है, लेकिन फिर भी सभी प्रकार के नशे के लिए हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं रहने वाली है।
0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 से वित्त पोषित प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा इंदौर से अबुधाबी का आज शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबुधाबी से सीधे जोड़ेगी। टाटा समूह की विमानन इकाई एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित यह सेवा सप्ताह में चार दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। इंदौर से अबुधाबी हवाई सेवा प्रारंभ होने से मालवा निमाड़ के क्षेत्र की बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये वार्ता पिछले सप्ताह वर्चुअल माध्यम से आयोजित की गई थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस दौरान दोनों पक्षों ने सभी पहलुओं पर ठोस प्रगति की और कई मुख्य मुद्दों पर व्यापक सहमति बनी। भारत वर्तमान में 7 स्थानों पर 8.78 गीगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाले 24 परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों का संचालन कर रहा है। इसके अलावा 8000 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 और रिएक्टर इकाइयां निर्माणाधीन हैं। इनमें रिएक्टर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, बॉयलिंग वाटर रिएक्टर और लाइट वाटर रिएक्टर शामिल हैं। देश मुख्य रूप से प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टरों को चलाने और परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन का उपयोग कर रहा है। अब रुख करते हैं मौसम का। प्रदेश में तेज बारिश का दौर थमने के बाद भोपाल समेत कुछ शहरों में दिन का तापमान बढ़ गया है। मौसम केंद्र भोपाल के अनुसार प्रदेश में पिछले 6 दिन से भारी या अति भारी बारिश नहीं हुई है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 241.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो कि सामान्य बारिश से 260 मिलीमीटर कम है। वहीं पश्चिमी हिस्से यानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, ग्वालियर तथा चंबल में औसत से 6% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम केंद्र ने आज अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम, रीवा, मऊगंज और सतना समेत प्रदेश के 20 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। अब रुख करते हैं क्रिकेट की खबर का। क्रिकेट में कल भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए, जिसके जवाब में भारत ने 45 ओवर और 2 गेंदों में 4 विकेट खोकर 262 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला कल कार्डिफ में खेला जाएगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। झाबुआ जिला कोषालय में 16 और 17 जुलाई को तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए IFM IS केयर्स कैंप लगाया जाएगा। अशोकनगर में शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे के मामलों में कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाते हुए दोषियों को सिविल जेल भेजने के निर्देश दिए हैं।

ओमान में होने वाली यूथ हॉकी एशियन चैंपियनशिप 2026 के लिए मध्य प्रदेश राज्य हॉकी अकादमी के 4 खिलाड़ियों आयुष, करण, महक और नौशीन का चयन भारतीय टीम में किया गया है। डिंडौरी में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से बाइक रैली निकाली गई और इंदौर में बच्चों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए जिलों में 14 जुलाई से 31 अगस्त तक दस्तक सैड स्टॉप डायरिया अभियान चलाया जा रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत आज से हैदराबाद में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ही करेगा मेजबानी। बलराम कृषि महोत्सव 2026 का आज इंदौर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। इंदौर से अबू धाबी के बीच अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा का आगाज आज से और भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय मैच में 6 विकेट से हराया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।

अभी प्रादेशिक समाचार आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:20 हो चुके हैं। पेश है मन चाहे गीतों का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, सभी को हमारा नमस्कार। और श्रोताओं, इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं कन्यादान फिल्म के गीत के साथ, आवाज मोहम्मद रफी की, बोल नीरज के, संगीत शंकर जयकिशन का। फरमाइश आप सभी की। लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी और ऋषभ मरावी की। वडिंग खेड़ा पंजाब से ये फरमाइश है मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा की। झज्जर हरियाणा से ये व्हाट्सएप फरमाइश है बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया की। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से ये फरमाइश में मिली टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप की। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज की ये फरमाइश है। आप सभी की फरमाइश पूरी करते हैं, सुनते हैं कन्यादान फिल्म का गीत मोहम्मद रफी की आवाज़ में।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं जंजीर फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल हैं गुलशन बाबरा के संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। फरमाइश है आप सभी की। अड़ार नांद घाट छत्तीसगढ़ से ये फरमाइश में मिली माखन वर्मा चांदनी राहुल और गोपी वर्मा की। गोल्डन रेडियो श्रोता संघ राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से ये व्हाट्सएप फरमाइश में मिली राजेश कुमार वर्मा प्रीति वर्मा कार्तिक और आर्यन वर्मा की। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार पिंकी स्वर्णकार आर्यन कृष्णा और पीहू स्वर्णकार की ये फरमाइश है। जिला मुरादाबाद ग्राम दूल्हापुर उत्तर प्रदेश से ये फरमाइश में मिली मोहम्मद फरमान मोहम्मद सलमान मोहम्मद इरफान मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून की। श्रीरामपुर से डी अशोक कुंभार अविका जीविका सानू कुंभार और अर्चना कुंभार की ये फरमाइश है। और एक और फरमाइश है कोयते वस्ती पुनावली से और इसे भेजने वाले हैं अजय सोनवड़े करिश्मा सोनवड़े अविका सोनवड़े और साईशा सोनवड़े। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं जंजीर फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: इस समय आप सुन रहे हैं मनचाहे गीतों का कार्यक्रम। कार्यक्रम में समय है अंतराल का।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है मन चाहे गीतों के कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम की अगली पेशकश जॉनी मेरा नाम इस फिल्म से। आवाज़ है किशोर कुमार की, बोल इंदीवर के हैं, संगीत है कल्याण जी आनंद जी का। फरमाइश आप सभी की। कोल सिटी बरका काना से अफजल

नागपुर महाराष्ट्र से ये फरमाइश है कमल साहनी, श्रीमती पिंकी साहनी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम इफजाल और उनके तमाम साथी। रामनगर कैंट झारखंड से ये फरमाइश में मिली निप्पी साहनी और श्रीमती सुनीता साहनी की। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं जॉनी मेरा नाम, इस फिल्म का गीत।

और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज, फिल्म का नाम आप आई बाहर आई। फरमाइश आप सभी की, नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती पूजा प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव की यह फरमाइश है। धनौरी तेलीवाला से यह फरमाइश हमें मिली निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और अयान बाबू की। इसी गीत के लिए हमें पत्र लिख भेजा है कंवर कॉलोनी बड़वाह से। पत्र भेजने वाले हैं प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, आदित्य, अदिति, शिवानी और मीनूराज श्रीमाली। और एक और पत्र इसी गीत के लिए हमें प्राप्त हुआ नेपाल पैलेस सागर से, और इसे लिखने वाले हैं तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, प्रेम नारायण, शिवा, शिवांशु, यश, अवधेश, रमाकांत, रमेश कठौंदिया, सुजीत और उनके बहुत सारे साथी। आप सभी की फरमाइश पर सुनते हैं कार्यक्रम की अंतिम पेशकश, फिल्म का नाम आप आई बाहर आई।

इस गीत के साथ ही मन चाहे गीतों का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 7:46 हुए हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में पहले आपको सुनवा रहे हैं समीर का लिखा गीत, संगीत है सलीम और सुलेमान का, आवाज़ है आसमा की, एल्बम है आसमा।

0: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ है डॉक्टर ब्रजेश कुमार खरिया, स्वास्थ्य क्लिनिक सागर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, साधारण सर्दी या खांसी को कब गंभीरता से लेना चाहिए और डॉक्टर से सलाह कब लेनी चाहिए?
1: यदि बच्चों को दो दिन से अधिक बुखार रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में घबराहट की आवाज आए, खांसी लगातार बढ़ रही हो, बच्चा ठीक से खा पी ना रहा हो या सामान्य से अधिक थका हुआ और सुस्त दिखाई दे तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। छोटे बच्चों में स्थिति कभी कभी बहुत तेजी से बिगड़ सकती है, साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां देने से बचना चाहिए। समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने से बच्चा जल्दी ठीक होता है और संक्रमण के घर और स्कूल में फैलने की भी संभावना कम हो जाती है।
0: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है संगीत सरिता कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं सुचित्रा की आवाज में अरुण राज के बोल, संगीत रहमान राजन का एल्बम दम तेरा।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं सांवला सलोना इस एल्बम से ये गीत। आवाज़ है अली हैदर की, लिखा अली हैदर ने इस गीत को और संगीत भी है अली हैदर का।

इस गीत के साथ ही संगीत सरिता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में होंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमरीका ने ईरान की बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज, और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज लागू हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो गया है। नई दिल्ली में कल वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह समझौता भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नई शुरुआत करेगा।
3: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम, रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
2: हमारे संवाददाता ने बताया है कि समझौते से ब्रिटेन में भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे।
4: ये समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग के सामान और ऑटो कंपोनेंट पर लगभग 18%, चमड़े और फुटबियर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क घटकर अब 0 हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मृगनयनी पांडे।
2: भारत मालदीव मुक्त व्यापार समझौता वार्ता का पहला दौर सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। ये द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों को विस्तार देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। भारत मालदीव का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार पिछले वर्ष $771 मिलियन से अधिक का था। प्रस्तावित समझौते से दोनों देशों में सतत आर्थिक विकास में योगदान देकर आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को और मजबूत करने की संभावना है। भारत आज से हैदराबाद में ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। 2 दिन की इस बैठक में ब्रिक्स देशों के श्रम और रोजगार मंत्री तथा वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। बैठक में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने, श्रम क्षेत्र को अधिक व्यवस्थित बनाने और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों

0: पर चर्चा होगी। इस दौरान रोजगार कार्य समूह द्वारा तैयार मसौदा घोषणा पत्र पर भी विचार किया जाएगा। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच श्रम नीतियों, कौशल विकास, श्रमिक कल्याण और समावेशी रोजगार के क्षेत्र में सहयोग मजबूत करना है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की है। कोलकाता में कल कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। एक रिपोर्ट।
1: बैठक के बाद केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है। राज्य सरकार के अंशदान के साथ अगले वर्ष मार्च तक पंचायत के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के लक्ष्य ग्रामीण रोजगार की अवधि को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना है। साथ ही वीवीजी रामजी अधिनियम 2025 के तहत नए ग्रामीण रोजगार ढांचे को लागू किया जाएगा, जिसमें ग्रामीण परिसंपत्तियों के निर्माण पर विशेष बल दिया जाएगा। बैठक में सड़क, रेलवे, मेट्रो, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कोयला तथा श्रम क्षेत्रों के 82,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली 19 प्रमुख परियोजनाओं को भी समीक्षा की गई। संदीप अंदाश गुप्ता, आकाशवाणी कलकत्ता।
0: कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी आज नई दिल्ली में महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी के 8वें चरण की शुरुआत करेंगे। इनमें 9 राज्यों की 20 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। इन खनिजों में मोलिब्लेडेनम, ग्रेफाइट, ग्लूकोनाइट, दुर्लभ पृथ्वी तत्व, टाइटेनियम, टंगस्टन, पोटाश, लिथियम, सीजियम और रुबिडियम शामिल हैं। नीलामी के 7 चरण पूरे होने के साथ मंत्रालय ने 88 महत्वपूर्ण खनिज खंडों में से 56 की सफलतापूर्वक नीलामी की है। मंत्रालय ने कहा है कि खनिज क्षेत्र ने पिछले वित्त वर्ष में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 212 खनिज खंडों की सफलतापूर्वक नीलामी हुई है। ये नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से किसी भी वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक है। इसमें 22 महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंड शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए रास्ता बंद रहेगा। श्री ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अमेरिका आज रात ईरान पर हमला करने वाला है। उन्होंने कहा कि जब तक ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिका उसके सभी बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाएगा। इस बीच ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने बड़े पैमाने पर हमले करते हुए बहरीन में हथियारों और भंडारण केंद्रों को निशाना बनाया है। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
2: पश्चिम एशिया में हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
1: होर्मुज जलडमरू मध्य में दो व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रभावित क्षेत्र में काम कर रहे भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए व्यापक पहल शुरू की है।
3: पश्चिम एशिया में समुद्री सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए नई दिल्ली में उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय बैठक की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने क्षेत्र में संचालित प्रत्येक भारतीय नाविक की जहाजवार वास्तविक समय में निगरानी और प्रभावित प्रत्येक भारतीय नाविक के लिए समर्पित संपर्क अधिकारी नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय को विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारतीय नौसेना, डीजी शिपिंग तथा ईरान और ओमान स्थित भारतीय मिशनों के साथ 24 घंटे समन्वय बनाए रखने का भी निर्देश दिया। श्री सोनोवाल ने डीजी शिपिंग को फारस की खाड़ी, होर्मुज जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी में संचालित सभी जहाजों पर तैनात भारतीय नाविकों की निगरानी के लिए एक परिचालन डैशबोर्ड स्थापित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नौवहन सुरक्षा, चिकित्सीय निकासी और स्वदेश वापसी से संबंधित जानकारी के लिए निरंतर समन्वय बनाए रखने को भी कहा। केंद्रीय मंत्री ने जहाज मालिकों, पोत प्रबंधकों और भर्ती एजेंसियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी भारतीय नाविक को पर्याप्त जानकारी, सुरक्षा और सहायता के बिना यात्रा के लिए बाध्य न किया जाए। रोहन के साथ सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की सुप्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होने जा रही है।
4: पवित्र शहर में जय जगन्नाथ के मंत्र गूंज रहे हैं और पूरी कल भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन की भव्य रथ यात्रा देखने के लिए तैयार है। ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक त्योहार में से एक है। ये सालाना यात्रा भाई बहन देवताओं की श्री जगन्नाथ मंदिर से श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा का प्रतीक है। भक्त श्री गुंडीचा मंदिर को मौसी माँ यानी भगवान की मौसी का घर मानते हैं। इस पवित्र रथ उत्सव में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पूरी पहुंचे हैं। तीन भव्य रथ, नंदीघोष, तालध्वज और दर्प दलन को खूबसूरती से सजाया गया है और वे मंदिर के सिंह द्वार के सामने खड़े होने के लिए तैयार है। पूरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव सोने की झाड़ू से रथ के मंच की सफाई करेंगे, जिसके बाद भक्त रथ को ग्रैंड रोड पर खींचेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डेलस में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हरा दिया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। भारत ने इंग्लैंड को पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 6 विकेट से हरा दिया है। बर्मिंघम में कल इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 258 रन बनाए। जवाब में भारत ने 45वें ओवर में 4 विकेट पर 262 रन बनाकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने सर्वाधिक 80 रन बनाए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच कल कार्डिफ में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध तेज होने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, होर्मुज पर हक की जंग तेज, अमेरिका ने परमाणु संयंत्र वाले शहर बुशहर पर बम बरसाए, ईरान का बहरीन और जॉर्डन पर हमला, नाकेबंदी पर बड़े देशों ने जताई नाराजगी, चीन ने की सुरक्षित आवाजाही की अपील, कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल। वहीं नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, ईरान के हमले में एक की मौत, भारत ने किया विरोध, होर्मुज में 2 तेल टैंकरों पर अटैक, ईरान के दूत को किया तलब। पत्र के अनुसार होर्मुज में 20% शुल्क से पीछे हटे ट्रंप, कहा अब ट्रेड डील होगी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, गुलाम जम्मू कश्मीर में 9 प्रदर्शनकारियों की मौत, भारत ने जोर देकर कहा नागरिकों पर दमन और बुनियादी अधिकारों के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान जवाबदेह है। पत्र के अनुसार पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी। अमर उजाला ने पहली बार पहली जीत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, लॉर्ड्स की 142 साल के इतिहास में यहां खेले गए पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत की जीत का महत्व, इससे समझा जा सकता है कि जहां भारतीय पुरुष टीम को यहां पहली टेस्ट जीतने के लिए 54 साल का इंतजार करना पड़ा था, वहीं महिला टीम ने पहले ही प्रयास में ये करिश्मा कर दिखाया। राजस्थान पत्रिका का शीर्षक है, पहली बार तिमाही में 4,000 करोड़ रुपए का कारोबार पार, इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पंजाब केसरी की सुर्खी है, नासा की अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू, लगभग 99% भारतीय निर्यात पर शुल्क नहीं। केंद्र ने पश्चिम बंगाल में ग्रामीण विकास के लिए 8,500 करोड़ रुपए से अधिक के पैकेज की घोषणा की। महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज खंडों की नीलामी का 8वां चरण आज से। होर्मुज में जहाजों पर ईरानी हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू की। फ्रांस को हराकर स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना का मुकाबला आज। और भारत ने पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

अभी समाचारों का अनुप्रसारण किया गया आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 हुए हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम में तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और कार्यक्रम में पहले आपको सुनवाते हैं ये लोक भजन। कलाकार हैं जयप्रकाश पटेरिया।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये एक और लोकगीत। कलाकार हैं मालती सेन।

0: अभी आप सुन रहे थे देवेंद्र कुमार चंदसौरिया का स्वर। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम में समय है अंतराल का।
1: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार खरिया, स्वास्थ्य क्लिनिक सागर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, साधारण सर्दी या खांसी को कब गंभीरता से लेना चाहिए और डॉक्टर से सलाह कब लेनी चाहिए?
2: यदि बच्चों को दो दिन से अधिक बुखार रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में घबराहट की आवाज आए, खांसी लगातार बढ़ रही हो, बच्चा ठीक से खा पी ना रहा हो या सामान्य से अधिक थका हुआ और सुस्त दिखाई दे, तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। छोटे बच्चों में स्थिति कभी कभी बहुत तेजी से बिगड़ सकती है, साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां देने से बचना चाहिए। समय पर चिकित्सीय सलाह लेने से बच्चा जल्दी ठीक होता है और संक्रमण के घर और स्कूल में फैलने की भी संभावना कम हो जाती है।
1: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: अब बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
2: अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत है लोक संगीत के कार्यक्रम में, और इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं ये लोक भजन कलाकार हैं राजू पटेल और उनके साथी।
3: अरे सांवरी सूरत मोहिनी मूरत चित से टरे नटारी, अरे सांवरी सूरत मोहिनी मूरत

मथुरा प्रसाद सुमन की आवाज में अभी आप सुन रहे थे श्रृंगार गीत। लोक संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। 8:45 होने को हैं। पेश है चित्रपट संगीत का कार्यक्रम।

ये तो कमाल हो गया। ये था फिल्म का नाम जिसका गीत आपने सुना आशा भोसले, एसपी बाला सुब्रमण्यम और साथियों की आवाजों में। बोल थे आनंद बख्शी के, संगीत था राहुल देव बर्मन का। इस समय आप सुन रहे हैं चित्रपट संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम की अगली पेशकश ये दिल लगी इस फिल्म से। आवाजें लता मंगेशकर और कुमार सानू की, बोल समीर के, संगीत दिलीप सेन समीर सेन का।

और आइए कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं बप्पी लहरी और साथियों के स्वर। बोल हैं रमेश पंत के, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम वारदात।

इस गीत के साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। सुबह के 9 बजने को हैं। थोड़ी देर में विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम चित्रलोक में। साथियों, आज विश्व युवा कौशल दिवस है। ये हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे कौशलों से सशक्त बनाना है जो उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और बेहतर भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद करे। इस वर्ष की थीम है साझा भविष्य के लिए कौशल। बदलती तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में नए कौशल सीखना ही सफलता और आत्मनिर्भरता की सबसे मजबूत नींव है। तो आइए हमारे युवा साथियों को प्रेरित करते हैं इसी के लिए कौशल बनने के लिए इन्हें प्रेरित करते हैं। आइए और अब आपको सुनवाते हैं फोर्स फिल्म का गीत। के और सुचित्रा की आवाजों में जावेद अख्तर के बोल हैं, संगीत हैरिस जयराज का।

0: सुनिए एक खुशखबरी।
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
3: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
4: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
3: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: विविध भारती से आप सुन रहे हैं चित्रलोक कार्यक्रम और वक्त है अंतराल का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए सोनू निगम और मीत रोजनजान की आवाजों में क्या सुपर कूल है हम इस फिल्म का गीत। कुमार ने इस गीत को रचा है, मीत रोजनजान का संगीत।

जिस्म टू फिल्म का गीत के की आवाज, आर्को ब्रावो मुखर्जी और मुनीश माखीजा का के बोल, आर्को ब्रावो मुखर्जी का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
2: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत दीजिए नेहा अग्रकर देसाई को। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मल।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए। आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आए

गाया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: यह हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूँगा क्योंकि इट बी ईजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफ़ी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज़्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूज़िक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूज़िक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए 51 की एज पे। हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला, हमें नहीं लगता है लेकिन उन्हें जरूर लगा। और इसकी वजह भी है, सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों, फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
2: जी मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था और मुझे अभी तक याद है, ये उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज़ में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट

0: एक्टर के लिए रेहाना सुल्ताना साहिबा को, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए मजरू साहब को, बेस्ट लिरिक्स के लिए मदन जी को म्यूजिक के लिए, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया। और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूँ। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी है, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूँ, और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1000 रुपये मांगना चाहता हूँ, इस खबर के लिए आप मुझे 1000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, मैं बहुत बिजी हूँ। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया, और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफ़ी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, उनकी किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको 10 तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको 10 तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी, और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पर खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी, और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें 10 तक के लिए अवार्ड मिला है और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
1: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था, और 10 तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के 2 सूट सिलवाए, और मदन जी और संजीव कुमार ने वही 2 सूट बोटाई के साथ एकदम सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, हम मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे, मैं जैसे कहा छोटा था, तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ तेज चलाओ, क्योंकि वर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था। तो वो तेज चलाने लगे, आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माताजी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए, और उन्होंने कहा मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है कमाल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति की।

0: वतन साथी।
1: दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: हरदा जिले में बीते दिनों मानसून की दस्तक के साथ मौसम ने करवट ली। शुरुआती बारिश के बाद किसानों ने बड़े उत्साह के साथ सोयाबीन, मक्का और अन्य खरीफ फसलों की बुआई पूरी की। हालांकि लगातार बारिश से कई स्थानों पर नदी नाले उफान पर आ गए, ग्रामीण मार्ग प्रभावित हुए और कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बनी। बारिश थमने और धूप निकलने से लोगों को राहत मिली तथा जनजीवन पुनः सामान्य होने लगा। जिले के वनांचल क्षेत्र के उन किसानों के लिए शासन ने नई व्यवस्था लागू की है जिनके पास भूमि का पट्टा या वनाधिकार प्रमाण पत्र नहीं है। अब ऐसे किसान स्वघोषणा पत्र के आधार पर खाद बीज के लिए ई टोकन प्राप्त कर सकेंगे। जिले के खिरकिया रेलवे ओवरब्रिज परियोजना के लिए आईआईटी मुंबई की विशेषज्ञ टीम ने बीते दिनों ब्रिज कारपोरेशन के अधिकारियों के साथ अलाइनमेंट का निरीक्षण किया। करीब 3 वर्ष से लंबित इस परियोजना को लेकर उम्मीद जताई गई है कि तकनीकी रिपोर्ट मिलने के बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ सकेगा। हरदा जिले में वट सावित्री पूर्णिमा का पर्व श्रद्धा के साथ बीते दिनों मनाया गया। बड़ी संख्या में सुहागिन महिलाओं ने वट वृक्ष की पूजा कर 108 परिक्रमा लगाई और परिवार की सुख समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना की। स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र की यदि बात करें तो लॉयंस क्लब हरदा अंबर ने निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन बीते दिनों किया। इस शिविर में मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को ऑपरेशन के लिए भोपाल भेजा गया। वहीं राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर जिले के वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान भी किया गया। जन जागरूकता के क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा जिले में सेफ क्लिक 2.0 अभियान का आयोजन किया गया। जिस अभियान के तहत राजा बरारी गाँव में साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं जिला जेल हरदा में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा आध्यात्मिक एवं समाज सुधार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीते दिनों जिले में आयोजित पौधरोपण अभियान, स्वास्थ्य शिविर, सम्मान समारोह, स्वच्छता अभियान और जन जागरूकता कार्यक्रमों ने जिले की सामाजिक सक्रियता को नई दिशा दी। पुलिस विभाग में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया बीते दिनों पूरी हो गई। विभागीय पदोन्नति समिति ने मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 के तहत कुल 109 आरक्षकों को प्रधान आरक्षक के पद पर पदोन्नत किया है। हरदा जिले में दस्तक सह स्टॉप डायरिया कैंपेन का पहला चरण 31 अगस्त तक संचालित किया जाएगा। इसके लिए जिले के अनुमानित 69,922 बच्चों को सेवाएं प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। कोष एवं लेखा संचालनालय द्वारा IFMIS पोर्टल की तकनीकी समस्याओं के निराकरण के लिए जिले में 16 और 17 जुलाई को IFMIS केयर्स कैंप लगाया जाएगा। मेरा युवा भारत अंतर्गत जिला सलाहकार समिति की बैठक बीते दिनों कलेक्टर सिद्धार्थ जैन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। इस बैठक में उन्होंने जिले में पोर्टल पर 15 से 29 आयु वर्ग के अधिक से अधिक युवाओं का पंजीयन, विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय और वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर विस्तृत चर्चा कर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। हरदा जिले में ग्रीष्मकालीन फसल मूंग का समर्थन मूल्य पर उपार्जन 1 जुलाई से 10 अगस्त तक किया जा रहा है। जिले में किसानों की सुविधा के लिए 40 ग्रीष्मकालीन मूंग उपार्जन केंद्र स्थापित किए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर बीते शनिवार को ADR सेंटर में स्कूली बच्चों के लिए विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। न्यायाधीश चंद्रशेखर राठौर ने उपस्थित बच्चों को बताया कि भारत वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि जागरूक नागरिक बनकर वे समाज में जनसंख्या नियंत्रण, लैंगिक समानता, शिक्षा के प्रसार और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हरदा कलेक्टर ने जिले में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समुदाय में जागरूकता लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि ठोस अपशिष्ट का बेहतर प्रबंधन विकसित करने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वार्ड प्रतिनिधियों से चर्चा की जाए। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड हरदा वृत्त ने विद्युत चोरी और अनाधिकृत विद्युत उपयोग पर लगाम लगाने के लिए विशेष सघन जांच अभियान चलाया। विद्युत अधिनियम एवं कंपनी के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करते हुए लगभग 1,15,35,000 रुपए की बिलिंग की गई। पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए जनपद पंचायत हरदा ने हंडिया क्षेत्र के नर्मदा तट के पास की दुकानों में पॉलीथीन और सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ये जारी आदेश 9 जुलाई से प्रभावी हो गया है। पहली बार उल्लंघन करने पर 200 रुपए का आर्थिक दंड तथा दूसरी बार उल्लंघन करने पर 500 रुपए का आर्थिक दंड और तीसरी बार या बार बार उल्लंघन करने पर 1,000 रुपए का जुर्माना तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान को सील करने या लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। हरदा जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी भोपाल का प्रसारण। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन।

0: श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन कार्यक्रम में। मैं हूं मनोज सक्सेना। मित्रों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम लगातार डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग विषय पर बात करते हैं, और बातचीत करने के लिए हमेशा हमारे साथ होते हैं भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी। आइए आज की बातचीत को शुरू करते हैं। सर नमस्ते।
1: नमस्कार
0: सर। चिकित्सा विज्ञान जिस तरीके से लगातार उन्नति कर रहा है, नए नए शोध आ रहे हैं, और उस शोध में एक नाम अभी और आ गया है, मोटापे को कम करने के लिए सीमाग्लूटाइड करके जो एक दवा आई है, उस पर बहुत चर्चा है बाजार में। बहुत सारे लोगों ने सवाल किए हुए हैं कि क्या सभी इस दवा का उपयोग कर सकते हैं।
1: देखिए, ये बहुत ही चमत्कारी दवा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पहली बार एक एडवाइजरी जारी करी कि हार्मोन का डॉक्टर और कुछ विशेषज्ञ ही ये दवा लिख सकते हैं। ना इसको मसाज वाला लिख सकता है, ना कोई डाइटिशियन लिख सकती है, ना कोई ऐसा वेलनेस सेंटर चलाने वाला लिख सकता है। ये नियम बड़े सख्त हैं। क्यों बनाने पड़े ऐसे नियम? क्योंकि इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं वजन को लेकर, डायबिटीज को लेकर, हार्ट और किडनी में भी ये दवा बहुत कारगर है। तो इसलिए एक तरह की दवा है, और अब ये बहुत सस्ती हो गई है। जो दवा 15,000 रुपए महीने का खर्चा था, वो घटकर 2,000 से 3,000 रुपए महीने में आ गई। तो ये अपने आप में कमाल है।
0: जब भी कोई दवा आती है सर, साइड इफेक्ट की चर्चा जरूर होती है। इसके साइड इफेक्ट कितने हो सकते हैं?
1: ये बड़ा ही प्रासंगिक प्रश्न है, क्योंकि हमेशा हमारे मरीज आते ही पहले पूछते हैं कि सर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो मरीजों को मैं हमेशा कहता हूं कि पहले आप बीमारी के से होने वाले नुकसानों पे ध्यान दीजिए। मोटापे से आपके जोड़ खराब होते हैं, मधुमेह होता है, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, सारी बीमारियां होती हैं जो कि जानलेवा है। अगर इन सब से छुटकारा देने के लिए कोई इंजेक्शन आया है तो उसको सहज स्वीकार करें। आपको एक हार्मोन रोग विशेषज्ञ इंजेक्शन लिखेगा तो उसकी ट्रेनिंग है, वो देखेगा कि किन परिस्थितियों में इसको दिया जा सकता है और किन परिस्थितियों में इसको नहीं दिया जा सकता। तो कोई भी डॉक्टर ऐसा नहीं होगा जो आपको गलत परिस्थितियों में यह दवा लिखेगा।
0: बात वही आती है कि वह परिस्थितियां कौन सी हैं कि अब यह दवा देनी ही पड़ेगी।
1: देखिए, बात देने की नहीं है, हमें चाहिए परिणाम। मान लीजिए आपका वजन सामान्य से बहुत अधिक है और हम चाहते हैं कि आप 15 से 20 किलो वजन कम करें, तो केवल डाइट और एक्सरसाइज से तो ये संभव नहीं है, और सभी ऑपरेशन कराना नहीं चाहते मोटापे की सर्जरी। तो बीच की स्थिति में कुछ तो चाहिए, तो ये इंजेक्शन उस बीच की स्थिति की कड़ी है, जहां पर आपका 10 से 15% वजन कम हो जाता है। तो आपके जीवन में मधुमेह अच्छा हो जाता है, ब्लड प्रेशर अच्छा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल अच्छा हो जाता है, हृदय की भी गति अच्छे से चलने लगती है।
0: सर, अगर ये हमने इंजेक्शन लेना बंद कर दिया तो क्या वापस से वही स्थिति आ जाएगी?
1: शोध कहते हैं कि 6 महीने में आपका फिर से वजन बढ़ने लग जाएगा। तो ये दवा ऐसी रामबाण दवा नहीं है कि एक बार लगा लिया तो आपको जिंदगी भर मोटापे से छुटकारा मिल जाएगा। मोटापे का इलाज फैट सेल्स की बीमारी है मोटापा, जहाँ एडिपोज टिश्यू आपकी तकलीफ में है, जिसको फैट सेल्स को एडिपोज टिश्यू कहते हैं। तो उसके लिए तो निरंतर प्रयास करने होंगे, जिसका जो मुख्य केंद्र बिंदु है वो डाइट और एक्सरसाइज है। उसके ऊपर आपको नाना प्रकार की दवाइयां, सर्जरी ऑप्शंस आते रहेंगे और उसका आपको प्रयोग करना पड़ेगा।
0: सर, एक जगह ये भी कहा गया कि अगर हमने इस दवा को लेना शुरू किया है, फिर उसके बाद अगर हम चाहें कि एक्सरसाइज करते रहें, इस दवा को छोड़ दें, तो एक्सरसाइज करके क्या हम उसको मेंटेन कर सकते हैं?
1: देखिए, डाइट और एक्सरसाइज तो मस्ट है, क्योंकि वजन कम होगा तो मांसपेशियां कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सार्कोपेनिया हो जाएगा, तो आपके लिए वो बिल्कुल भी अच्छी अवस्था नहीं होगी। पर डाइट और एक्सरसाइज की अपना एक दायरा है, वो उस दायरे में तो आपको जरूर फायदा मिलेगा। पर जब आप दवा बंद करेंगे तो 5-6 महीने में आपका वजन बढ़ने लग जाएगा।
0: मित्रों, वाकई यह दवा बड़ी चमत्कारी है, जिसकी चर्चा बार बार हम करते हैं और बाजारों में भी आजकल इसकी बहुत बातचीत होती है। आपके मन में भी कोई और शंकाएं हैं, कोई और सवाल हैं, तो आप हमें सीधा भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर ध्यान से सुन लें, 8878112343। नंबर फिर से सुन लें, 8878112343। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात डायबिटीज, थायराइड और हार्मोन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन चित्तावार जी से। अगले बुधवार हम फिर आते हैं, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना का नमस्कार।
2: स्वस्थ तन स्वस्थ जीवन। अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:10 हुए हैं। आइए सुनते हैं, फोन करें, गीत सुने, इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण।

0: श्रोताओं नमस्कार। प्रस्तुत है कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ सुब्रता यादव। चलिए देखते हैं ये पहला कॉल किसका है। आकाशवाणी सागर कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने।
1: जय बजरंग रेडियो श्रोता संग बस ट्रेन बंडा विली के लक्ष्मण को चाय वाली बोल रहे। दीदी कैसी हो आप?
0: हम अच्छे हैं लक्ष्मण जी, आप कैसे हैं?
1: अच्छे हैं। चाय पी लो दीदी।
0: अरे चाय वाय अब छोड़ दी हमने भैया।
1: चाय छोड़ दी तो कॉफी पियो।
0: चाय कॉफी सब छोड़ दिया है।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ आप बताइए लक्ष्मण भैया, कैसी चल रही है चाय की शॉप आजकल?
1: बस चाय की दुकान अच्छी चल रही, भगवान कृपा है, आप लोग कृपा है,
0: मौसम की भी कृपा है थोड़ी सी आपके ऊपर। बारिश का मौसम है, चाय तो बहुत अच्छी से लोग पीते हैं।
1: हाँ।
0: ये बताइए कि आपके दुकान के जो आसपास स्वच्छता किस तरह की है, किस तरह साफ सफाई रखते हैं आप?
1: हम तो सफाई रखते हैं, मगर का है कुछ लोग जो सफाई मुफाई कचरा फैला रहे हैं।
0: अच्छा, तो उनको आप समझाइश नहीं देते?
1: हाँ देते हैं, बस अभी काम लगना है तो कब लगेगा।
0: अच्छा बस स्टैंड बनना है आपके यहाँ?
1: बनना है तो कब लगेगा काम। अब
0: गाड़ी तो आती होगी कचरे वाली?
1: हाँ कचरे वाली तो आती है गाड़ी।
0: आप अपनी तरफ से भी कुछ कोशिश कर सकते हैं कि जैसे?
1: हम तो अपने तरफ से कोई कचरा नहीं फैलाते।
0: हाँ बड़े बड़े डस्टबिन रखिए लोग।
1: हाँ धरा है, डस्टबिन भी धरा है।
0: अच्छा बारिश के मौसम में वहाँ बस स्टैंड पे कहीं पानी भराव का या जल की समस्या तो नहीं आती है?
1: पानी तो अभी स्टैंड में भर रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है।
0: उसका प्रमुख कारण ये भी है कि सही से जल जो निकासी की व्यवस्था नहीं होती है, एक जगह भरा रहता है पानी।
1: क्या टाइम टेबल पे जो नाली माली जो चौक होती है वे बल दी जाए, मतलब कचरा निकल जाए तो साफ सफाई रहेगी सब रहेगा।
0: लक्ष्मण जी आज हम अपने कार्यक्रम में मुद्दे की बात लेकर आए हैं कि जल का संरक्षण करें, बारिश के जल का संचयन करें। बताइए कुछ आपने अपने घर में कुछ ऐसी व्यवस्था बना रखी हो जिससे आप पानी का संरक्षण करते हो?
1: हाँ सफाई पे रहता है, जैसे सफाई रहेगी तो पानी अच्छा रहेगा, अच्छा पीना चाहिए सबको। अपने जो मोहल्ला वगैरह है तो सफाई रखें, मच्छर भी नहीं पनपेगा।
0: हाँ
1: और अपन भी सही रहेंगे।
0: सही बात है। आज हमारे कार्यक्रम में आपकी फरमाइश क्या है?
1: ये ठीक है बॉबी पिक्चर का झूठ बोले कौवा काटे, ये सुनवा देना।
0: बिल्कुल सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।
2: झूठ

0: वर्क फ्रॉम होम हाई सैलरी बस एक क्लिक में। अरे वाह।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: मैं ग्राम गौर झामर जिला सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारी बात कर रहा हूँ। मैम
4: विपिन जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
3: जी शुक्रिया, थैंक यू।
4: विपिन जी आप बताइए आपको हमारे किस तरह के कार्यक्रमों में ज्यादा रुचि हो रही है आजकल, किस तरह के कार्यक्रमों को सुन रहे हैं आप?
3: जी वैसे तो सभी कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं मैम, और अभी जो मतलब कुछ नए कार्यक्रम जो शुरू किए हैं वो भी अच्छे लग रहे हैं, और बाकी तो जो पुराने कार्यक्रम हैं वो भी सुनते हैं, और फिर फोन इन कार्यक्रम तो हर श्रोता की पसंद रहती है तो वो तो हमारे प्रिय है ही।
4: हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके गीत संगीत में क्या रुचि है, किस तरह के गीत आपको अच्छे लगते हैं?
3: देखिए मैम ये सवाल बड़ा असमंजस में मुझे डाल देता है, क्योंकि पता है मैं लगभग 10-12 सालों से रेडियो सुन रहा हूँ और अभी तक मैं तय ही नहीं कर पाया कि मुझे किस तरह के गाने पसंद है, क्योंकि मुझे नए गाने भी पसंद है और जो आज से 70 साल पहले फिल्में आई हैं 1950 के दशक मतलब 50 के दशक के भी गाने पसंद आ जाते हैं और हाल फिलहाल के भी पसंद आ जाते हैं, तो ये मेरा एक शौक ही समझ ले कि मुझे सभी प्रकार के गाने पसंद आ जाते हैं और सभी मैं सुनता भी हूँ।
4: क्या बात है, ये तो बहुत अच्छा है कि आपको संगीत से इतना प्रेम है कि आपको हर तरह का संगीत अच्छा लग रहा है और जितने भी अच्छे गीत हैं चाहे वो किसी भी दशक के हों आपको अच्छे लगते हैं।
3: हाँ बिल्कुल सभी प्रकार के गाने अच्छे लगते हैं।
4: चलिए विपिन जी आज हम बता देते हैं आपको कि हम एक कार्यक्रम में मुद्दे की बात लेकर आते हैं।
3: जी बिल्कुल है, विषय है जल संरक्षण।
4: जी जी बताइए क्या कहना चाहेंगे आप?
3: देखिए जल संरक्षण का विषय जो है वो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और अभी जैसे मानसून आ चुका है अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, क्या बल्कि कहा जाए तो पूरे भारत में ही मानसून पहुंच चुका है, तो जल संरक्षण बहुत आवश्यक है और जरूरी है, क्योंकि यही उचित समय है जहाँ पर मानसून आता है और लगभग 3 से 4 महीने बारिश होती है, तो जो तैयारी है वो तो नहीं कह सकते कि अभी होनी चाहिए क्योंकि तैयारी का वक्त तो निकल चुका है। जो आपको गर्मियों का मौसम था उस टाइम पर जो कार्य थे कि भाई हमें अपने आसपास के जो नदी नाले हैं उनकी साफ सफाई करनी चाहिए और जो हमारे गांव का जल है वो गांव में रहे और जो खेतों का जल है वो खेतों में ही रहे, तो वो तैयारियां का समय तो निकल गया, लेकिन हाल फिलहाल में जो कर सकते हैं वो ये है कि जल अगर अधिक बारिश हो रही है और पानी की कमी अब तो नहीं है क्योंकि बारिश होने लगी है, तो ऐसा ना हो कि अधिक पानी मिलने के कारण हम अधिक पानी का दुरुपयोग करें, क्योंकि हमें जितनी से जितनी हो सके बचत करनी चाहिए, और जल संरक्षण बूंद बूंद से ही कहते हैं कि घड़ा भरता है, तो बूंद बूंद बचाने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जो पानी हम अभी बचाएंगे वो निश्चित रूप से हमें आगे के मौसम में काम आएगा।
4: बिल्कुल सही बात है, इससे भू का जल स्तर भी जो है वो बढ़ता है और जो पानी आज बचाते हैं वही पानी कल को हम उपयोग करते हैं। बहुत अच्छी बातें कही आपने विपिन जी, बहुत अच्छे से आपने विषय को समझा और उस विषय पर आपने बहुत अच्छे अपने विचार भी रखे।
3: जी बिल्कुल मैम, और क्योंकि देखा जाता है कि हर साल गर्मियों के मौसम में पानी की कमी देखी जाती है कहीं ना कहीं, और यही एक कारण रहता है कि पहले से तक जो हो रहा है कि जल स्तर नीचे जाता ही जा रहा है, तो हमें उस पर देखभाल करने की आवश्यकता रहती है, और इसमें अगर विशेष ध्यान दिया जाए तो आगे चल के हमें जल का संकट ज्यादातर नहीं देखना पड़ेगा अगर विशेष सावधानियां अभी से हम लोग सब बरतने लगे तो।
4: और ये सभी बातें आपके माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं तक पहुँच रही है और वो सभी निश्चित तौर पर इनका ख्याल रखेंगे। विपिन जी बताइए आज हमारे कार्यक्रम में आपको गीत कौन सा सुनना है?
3: मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में गाना है तुम तो प्यार हो सजना।
4: जी आप क्या कुछ गाते हैं?
3: हाँ कभी कभार थोड़ा बहुत।
4: कुछ गुनगुनाना चाहें तो बिल्कुल गुनगुनाइए।
3: तुम्हें तो प्यार हो सजना, तुम्हें तो प्यार हो, मुझे तुमसे प्यारा और न कोई।

0: हेलो, फोन करें गीत सुने।
1: जी फोन करें गीत सुने, कार्यक्रम का नाम है। आप बताइए आपका नाम और पता क्या है।
0: जी मैं मुरैना मध्य प्रदेश से हरविलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
1: हरविलास सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में।
0: धन्यवाद।
1: बताइए कैसे हैं आप।
0: आपकी दुआ ईश्वर कृपा से बहुत अच्छी तरह से ईश्वर से बने करते हैं। पूरा आकाशवाणी परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे।
1: जी बताइए क्या करते हैं आप।
0: मैं खेती किसानी करता हूँ।
1: तो अभी क्या लगा रखा है खेतों में आपने।
0: अभी बस बाजरे की बोनी शुरू होने वाली है, दो एक दिन में मोटे अनाज में बाजरे की फसल होती है।
1: ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने श्री अन्न को अपने खेत में लगा रखा है। कैसी फसल होती है इसकी।
0: बहुत ही अच्छी फसल होती है, कम से कम एक बीघा में 6-7 क्विंटल की पैदावार होती है बाजरे की।
1: तो मुरैना साइड ये फसल के लिए उपयुक्त तो जलवायु है लगता।
0: जी यहाँ बाजरा और ज्वार खरीफ में होती, रबी में सरसों और गेहूँ की फसल होती है।
1: हरविलास जी ये बताइए कि आप रेडियो कितना सुनते हैं, कब कब सुनते हैं।
0: रेडियो में सारे दिन ही सुनता हूँ, कई आकाशवाणी केंद्रों से जुड़ा हूँ, सहभागिता भी करता हूँ।
1: किस तरह के कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं।
0: सबसे ज्यादा कार्यक्रम ग्राम सभा जैसे होती, खेती किसानी कार्य में उनसे सुन के लाभ लेता हूँ। जैसे मिट्टी परीक्षण बताया जाता, वार्ताएं होती है जैविक विधि से अनुगान के बारे में, जैविक विधि से कीटनाशकों के बारे में, उनसे लाभ लेता हूँ। वो कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।
1: जी कोई ऐसा उदाहरण या कोई ऐसी चीज आपको याद आती हो जो आपने आकाशवाणी से सुनी हो और फिर उसको अपने उपयोग किया हो, तो कुछ आपको लाभ हुआ हो तो बताएं हमको।
0: जी मैंने आकाशवाणी से सुना था सहजन के वृक्ष के बारे में, आकाशवाणी छतरपुर से सुना था कि उसके पत्ता पत्ता जड़ डाल सब कुछ काम में आती, तो मैं अचंभित रह गया। फिर मैंने सहजन के कई वृक्ष लगाए, 2-3 वृक्ष गृह बाट काम मेरे में सहजन के वृक्ष।
1: बहुत फायदेमंद है, उसमें कैल्शियम भी है, बहुत सारे विटामिन भी है। तो आप उसका सेवन कर रहे हैं।
0: बिल्कुल कर रहा है, उसकी सब्जी का सेवन कर रहा है, उसकी पत्तियों का भी चूरा बनाया जाता है बताते हैं, लेकिन मैंने तो सब्जी खाई उसकी फलियों की।
1: फलियों की सब्जी सांभर वगैरह में डालते हैं।
0: हाँ डालते हैं उसे।
1: और कभी जो उसकी पत्तियां होती हैं उसके पकौड़े बना लिए या कुछ और बना रहे हैं तो उसमें डाल दिया,
0: कड़ी वगैरह बनाते उसमें डाल देते हैं।
1: हाँ खासकर बारिश के मौसम में उसके पकौड़े खाइए। पकौड़े वैसे तो अनहेल्दी है, लेकिन आप जब उसमें इसकी पत्तियां डाल लेंगे तो थोड़ा सा स्वास्थ्यवर्धक हो जाएगा।
0: स्वास्थ्यवर्धक हो जाएगा, सही कह रहे हैं आप।
1: इसी तरह अपने मन की चीजें खाते रहिए और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। हरविलास जी अभी आप क्या, बारिश कैसी हो रही है।
0: बारिश कल से शुरू हुई है, मौसम बिल्कुल बदल गया। कल बारिश आज रात को भी हुई और कल थोड़ी हुई थी दिन में भी।
1: अच्छा आज हमारे कार्यक्रम में जो हम मुद्दे की बात लेकर आए हैं वो है कि बारिश के जल का संचयन करें, उसे व्यर्थ ना बहाएं।
0: जी
1: जैसे खेतों में मेड़ बना लें या खेत में
0: मेड़ बंधान करके खेतों में बना लें, और घर का छत का पानी है उसको ऐसे गड्ढे बना लेते हैं ईंटों से मिलके, तो उसमें चला जाता है छत का पानी। और व्यर्थ जो नालों में बहता है उसका भी हम प्रयोग करते हैं। गृह वाटिका वगैरह है, जैसे नाले वगैरह कोई खेत है उसमें फसल के काम आता है, पानी की बूंद व्यर्थ नहीं जाना चाहिए।
1: क्या बात है हरविलास जी, हमसे पहले आप जानते हैं, आपने बहुत अच्छे से इस विषय को समझा दिया।
0: सब आकाशवाणी से सीखा, जैसे मैंने पोखर तालाब है उनको जीवंत करना चाहिए, तो इस समय बरसात का पानी उनमें भर जाएगा, जल स्तर बढ़ेगा।
1: यही होता है आकाशवाणी से, हमारा सिर्फ मनोरंजन नहीं होता,
0: बहुत ज्ञान वर्धन होता है। सूचना शिक्षा और मनोरंजन की त्रिवेणी है आकाशवाणी।
1: जी जी
0: स्वस्थ मनोरंजन आकाशवाणी भी मिलता है, कोई फेक न्यूज नहीं, स्वस्थ मनोरंजन और ज्ञान वर्धन सटीक सूचना सब आकाशवाणी से मिलती है।
1: जी जी आकाशवाणी सुनने वाले व्यक्ति से बात करने पर एक अलग ही एहसास होता है और पता चलता है कि वो कितना बुद्धिजीवी है, उसकी बातचीत अलग होती है अन्य व्यक्तियों से।
0: जी जी सही कह रही हैं आप।
1: जी बताइए, अच्छा आज आपको गीत कौन सा सुनना है हमारे कार्यक्रम में।
0: फिल्म का नाम है प्रेम नगर, ठंडी हवाओं ने गोरी का घूंघट उठा दिया।
1: अब आपको हम सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम का नाम है फोन करें गीत सुने।
1: हाँ जी मैडम नमस्कार। मैडम हम ग्राम लक्ष्मणपुरा जिला टीकमगढ़ से मैडम अखिलेश सेन बात कर रहे हैं। मैम
0: क्या करते हैं आप?
1: मैम हम ब्लाइंड हैं। मैम हैंडीकैप ब्लाइंड पर्सन। मैम पढ़ाई करते हैं। मैम
0: पढ़ाई करते हैं?
1: जी मैम, जो ब्रेल पे की पढ़ाई होती है, जो ब्लाइंड लोग पढ़ते हैं उंगली से छू छू के पढ़ते हैं, मैम हम वही ब्रेल से पढ़ाई करते हैं मैम 12th क्लास में।
0: चलिए आप 12th में आ गए, बहुत अच्छी बात है ये। तो अखिलेश जी बताइए, आप अपने खाली समय में क्या करते हैं?
1: दीदी खाली समय में हमारा कोई खास शौक नहीं है, हम रेडियो सुनते रहते हैं। अपना रेडियो में क्या है, हमारा टाइम भी वेस्ट नहीं होता, अपना काम भी करते रहते, पढ़ाई भी करते रहते और मनोरंजन भी होता रहता।
0: अच्छा, आप भविष्य में क्या करना चाहते हैं? क्या आपने सोच रखा है कि क्या सरकारी नौकरी में जाना है या कुछ और करना है?
1: दीदी हम टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं, सरकारी टीचर के लिए।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है ये। तो अखिलेश जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। आपने कुछ म्यूजिक वगैरह सीखा है?
1: जी दीदी, हारमोनियम वगैरह, ढोलक वगैरह, सारा सब कुछ बजा लेते हैं दीदी।
0: अरे वाह, क्या बात है। कोई भी परेशानी बाधा नहीं होती है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कहें तो आप सब कुछ कर सकते हैं।
1: जी दीदी, जैसे कि कितना ही बड़ा काम हो, यदि इंसान कोशिश करे तो कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जो इंसान नहीं कर सकता है। जो है हिम्मत नहीं हारना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मन के हारे हारे मन के जीते जीत, और यही संदेश आपके माध्यम से पहुंचता है सभी को। अखिलेश जी आज हमारे कार्यक्रम में हम मुद्दे की बात लेकर आए हैं, जल संरक्षण की।
1: जी
0: आप कुछ कहना चाहें इस विषय पे तो बताएं।
1: दीदी इसमें देखिए, जैसे कि हमने बहुत से गांव में देखा है कि आज जैसे गर्मियों के सीजन है तो आज भी पीने का पानी के लिए समस्या होती है, तो इस पे तो दीदी हम यही कहना चाहते हैं कि पानी बचाएं और कम से कम उपयोग करें, और जैसे सभी लोगों का ध्यान रखें। जैसे पशु पक्षी हैं तो ये तो बेचारे बोल नहीं सकते हैं, तो इनका भी अपन को ही ध्यान रखना है।
0: और एक और बात है कि जैसे बहुत ज्यादा प्लास्टिक का उपयोग ना करें, ये प्लास्टिक फंस जाती है तो जब बारिश का जो पानी होता है वो भी उसके कारण से फंसता है, बह नहीं पाता, और जल भराव की समस्या भी आती है।
1: जी दीदी, ये प्लास्टिक तो ऐसा है कि गलता नहीं है शरीर में, तो ये जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है और जमीन को, हमारे पर्यावरण को भी ये नुकसान पहुंचाता है। तो यही कहेंगे श्रोताओं से कि प्लास्टिक का तो उपयोग करें ही ना।
0: और कुछ ऐसी भी चीज है, जैसे आपको दूध लाना है, दही लाना है, आप अपने घर से डिब्बा लेके जाइए।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप एक केन लेके जाइए, उसमें अपने घर से दूध लेके आइए, दही लेके आइए, लेकिन पॉलीथीन का उपयोग मत करिए।
1: जी बिल्कुल।
0: जी अखिलेश जी बताइए, आज हमारे कार्यक्रम में आपको गीत कौन सा सुनवा दें?
1: दर्द भरा कोई सा भी गीत सुनवा दीजिए।
0: नहीं, आप एक दर्द भरे गीत क्यों सुनना चाहते हैं?

0: आप 12वीं क्लास में पढ़ते हैं, आपको खुशी खुशी के गीत सुनने चाहिए।
1: शौक होता है कभी कभी तो
0: आपके बहुत सकारात्मक विचार हैं, तो गीत भी आप थोड़े सकारात्मक सुनिए ताकि आपको अच्छा महसूस।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए,
2: 287 मेरी चाय।
3: आकाशवाणी सागर कार्यक्रम का नाम है, फोन करें, गीत सुने।
4: खाते गांव से बोल रहा था गोविंद जलोदिया।
3: क्या करते हैं आप गोविंद जी?
4: मैं तो कुछ भी नहीं, खाली समय पे बस यही जो है टाइम पास ही करना रहता है अपना, ज्यादातर रेडियो वगैरह ये।
3: जी कुछ तो करते होंगे खाली समय में अपने।
4: तो पहले करता था मैं, तो टाकीज में था वैसे। अच्छा। टाकीज बंद हो गया।
3: टाकीज में क्या करते थे आप?
4: टाकीज में सब काम कर लेता था मैं, तो मशीन भी चला लेता था, गेट कीपर पे भी चलाता था, सब मतलब ऑलराउंड।
3: अच्छा, तो आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी।
4: मैं तो बहुत सारी पिक्चरें देखी, पिक्चर का तो क्या है वो, तो मैं तो हम तो ऐसे पिक्चर थोड़ी ऐसे देखते थे पिक्चर की, कोई मीना कुमारी की पिक्चर आज तक हमने छोड़ी नहीं।
3: अच्छा, यानी फिल्मों का शौक था आपको।
4: मीना कुमारी का ही गाना है सर, मौसम है आशियाना, 1972 की पिक्चर है मीना कुमारी आखिरी।
3: बहुत अच्छी फिल्म है और गीत भी बहुत अच्छा है। यही गीत आपको सुनना है आज हमारे कार्यक्रम में?
4: हाँ हाँ
3: जी, बिल्कुल सुनवाएंगे गोविंद जी। उससे पहले हम बता देते हैं, आज हमारे कार्यक्रम में मुद्दे की

0: है कि जल का संरक्षण करें।
1: अच्छा,
0: आप बताइए कुछ, आपने अपने घर में कुछ क्यारी व्यारी बना रखी हो?
1: जल ही जीवन है, जल की तो ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग करना ही नहीं चाहिए, उपयोग ही करना चाहिए, रोकना चाहिए।
0: जी गोविंद जी, चलिए आपने अपनी फरमाइश तो बताई दी है, आइए अब आपको सुनवा देते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नगर परिषद हटा से बोल रहे दिनेश प्रसाद पुरानी।
1: दिनेश जी बहुत बहुत स्वागत है।
0: जी सर,
1: क्या करते हैं आप?
0: नगर परिषद में पंप ऑपरेटर के पद पे हूँ सर।
1: रेडियो कब से सुन रहे हैं आप?
0: ये आपका सुना है, 3-4 साल हो चुके हैं हमको सर।
1: कौन कौन से कार्यक्रमों को सुनते हैं?
0: ये फोन करें लोग भी सुने, उस फोन लगता ही नहीं है कभी।
1: हाँ?
0: कभी कभार अगर सोचे भी कि या लगाएं तो उठाते ही नहीं है, परेशान हो गए। एक बार मैंने 5 मोबाइल से लगाया तब भी नहीं लगा प्लाटिंग पे।
1: क्या रहता है, लाइन बहुत व्यस्त रहती है, बहुत सारे श्रोता हमें कॉल करते हैं इसलिए नहीं लग पाता होगा। लेकिन देखिए आज आपका कॉल हमारे पास लग गया है, आपका हम स्वागत कर रहे हैं और आज आपको जो भी बात कहनी है बिल्कुल कहिए।
0: अरे मैडम जी अब क्या बताएं, परेशान है बहुत, सर्विस भी कर रहे परेशान है बहुत ज्यादा।
1: परेशान क्यों है?
0: अरे मैडम जी घर की समस्या है, माता जी के इंतजाल हो गया, बहुत समस्या टेंशन बना रहे थे दिमाग में।
1: जो समस्याएं हैं वो एक ना एक दिन सॉल्व हो जाएंगी, या कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो हमारे जीते जी कभी सॉल्व नहीं हो सकती
0: जी।
1: पर हमें किसी भी समस्या का तनाव नहीं लेना है
0: जी,
1: उसको
0: जी।
1: दूर करने के बारे में सोचना है पर दिन रात नहीं सोचना है
0: जी। जी
1: जो समस्याएं ऐसी हैं जो हल नहीं हो सकती उनको तो सोच के हम कुछ कर नहीं सकते
0: जी।
1: तो बहुत तनाव से बचिए क्योंकि ज्यादा तनाव आपके शरीर को कमजोर कर देगा और
0: ये टेंशन बना रहता दिमाग में, वही चीज घूमती है।
1: बिल्कुल सही कहा भी जाता है, चिंता चिता के समान है, उसमें आप धीरे धीरे जलते रहते हैं आप, तो इस तरह की चिंताओं से दूर रहिए।
0: और क्या सुना मैडम जी, अब हम ये समस्या और थी वो नहीं सुना पा रहे हैं, अब अगली बार सुनाएंगे आपको लग जाएगा, यदि किस्मत बुलंद होगी तो लग जाएगा फिर।
1: हम ये नहीं कहते आप अपने व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं हमें बताएं, लेकिन हम ये कहते हैं समस्याएं सबके जीवन में हैं और किसी के जीवन में बहुत ज्यादा समस्या है, किसी
0: के जीवन में समस्याओं में जूझ ही रहे हैं मैडम जी बहुत।
1: धैर्य और ऊपर वाले पे भरोसा
0: जी जी,
1: इन चीजों से आप समस्याओं से पार पा सकते हैं और हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी सब समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो
0: जी जी
1: जी। दिनेश जी हम आपको बता दें आज हमारे कार्यक्रम में मुद्दे की बात है जल का संरक्षण करें, आप बताइए कुछ आपने जल का संरक्षण के लिए कुछ किया हो अगर, या अपने आसपास देखा हो?
0: जी वहाँ हमारे जल के संरक्षण के लिए तो मैडम तो हमारे वहाँ तालाब है पास में, तो उसको पानी का संचयन करते है, इकट्ठा करते है, बरसात में उसको पूर्ण तरीके से सुरक्षित रखते है। जल है तो कल है, जल नहीं है तो कुछ नहीं है, और मनुष्य का उसकी बिना चल किसी का भी नहीं चलता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, कहा भी गया है रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मोती मानुष, तो पानी को हमें बचा के रखना है, पानी के साथ साथ हमें प्रदूषण नहीं करना, क्योंकि जो पानी है तभी जमीन में जाएगा जब वहाँ पे पॉलीथीन नहीं होगी, सब कचरा नहीं होगा,
0: गंदगी मत फैलेंगे, पॉलीथीन से तो बहुत ज्यादा वो हो रही है सर, प्रदूषित हो रहा पानी, पानी में सर्दी नहीं है ना गलती है, वो तो कचरे की तरह इकट्ठी हो जीव जंतुओं को हानि पहुँचा रही है, पशु पक्षी जो ठीक है वो ये तुम्हारे गाय भैंस उसको खा लेती मर जाती।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा
0: जी।
1: दिनेश जी बताइए आपको गीत संगीत का कितना शौक है, किस तरह के गीत सुनते हैं आप?
0: बरसात फिल्म का कोई भी गीत सुनवा देना, नई वाली बरसात फिल्म का।
1: चलिए दिनेश जी बहुत अच्छी बातचीत हुई आपसे, अब आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हम ग्राम बोतराय तहसील पथरिया से ग्राम सेवक मिस्त्री बोल रहे।
1: ग्राम सेवक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कर रहे थे आप?
0: अब जी बस काम है, लगो है।
1: क्या घर आर बन रहा है कहीं?
0: हाँ जी मकान ही बन रहा है।
1: अच्छा, जैसे आज हमारे कार्यक्रम में मुद्दे की बात है कि जल का संरक्षण करें, तो आप बताइए, आप घर बनाते हैं तो कभी आपने देखा है कोई इस तरह का घर का निर्माण कराता हो कि अगर बारिश का पानी आए तो यहाँ भर जाए, बारिश के पानी रिजर्व करने के लिए कोई इस तरह का मकान का स्ट्रक्चर बनवाता हो?
0: अजी बना तो देते हैं मैडम जी, मतलब ऊपर जैसे छत ढली, छत के ऊपर बाउंड्री वाउंड्री बना दी, जैसे भर जा कम से कम 2 फुट पानी भर गया तो वो काम में आ जाए प्रयोग में।
1: हाँ, कोई अंडरग्राउंड भी कुछ बनवाता है, जमीन के नीचे भी कोई बनवाता है तलहटी में?
0: जी जी, वो कुआ के अगल बगल में जैसे गड्ढा गड्ढा करवा देते हैं और मिट्टी भर दी, उसे पानी का मैंने बोल देते हैं बचाओ,
1: पानी को बचाने के लिए तरीके अपनाए जाते हैं इस तरह के। कुछ लोग ये भी करते हैं कि टेरेस गार्डन बनवाते हैं, तो आप लोग क्या अभी पुराने तरीके से ही मकान बना रहे हैं कि कुछ नई तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं?
0: नहीं, पुराने तरीका तो मैडम जी सब बंद हो गया, अब तो नए कॉलम माने जी कॉलम बीम और ये नए नए तरीका से अब मकान का निर्माण होता है।
1: जैसे पुराने घर जो बनते थे हम देखते वो बहुत लंबा चलते थे, बहुत टिकाऊ होते थे, पर नए घर उतने टिकाऊ नहीं होते, इसका कारण क्या है?
0: तो मैडम जी मिट्टी, पहले पुराने घर हमारे पिताजी बनाते तो मिट्टी मिट्टी के बना देती, और जैसे पत्थर वगैरह है तो वो मजबूत है, और आजकल क्या है जी ईंट है, रेता है, सीमेंट, मतलब ये तो इसकी 40-50 वर्ष उम्र होती है।
1: टूटने की बात तो हम ना करें, अगर हम ये देखें कि मजबूती भी, तो वो दरवाजे, वो सामान, वो लोहे के बक्से, वो जो बने थे घर, वो आज भी वैसे ही बिल्कुल अमर से हो गए हैं, पर हमारे जो नए घर 10-12 साल पहले बने होते हैं उनमें कहीं चटक जाते हैं, कहीं जो दरवाजे होते हैं वो टूटने लगते हैं, छोटी छोटी चीजें खराब होने लगती है।
0: नहीं, वो सब कह रही आप मैडम जी, क्या है जी अब नई चीजें हैं, जैसे हमने बताया कि दीवार बिल्कुल छोटी बनती, मतलब 8 इंच की दीवार रहती है, और मसाला साला की देख रेख न करिए, जैसे घर मालिक ने अपनी गाई का पैसे तो मकान से, तो आप जो कह रहे हैं कि सही बात, 100 साल तक हमारे यहाँ मकान बने हैं पुराने वाले।
1: जी बिल्कुल सही कहा।
0: जी जी,
1: बताइए आज हमारे कार्यक्रम में आपको गीत कौन सा सुनवा दें?
0: दाग द फायर फिल्म का गाना सुनना है, दिल दीवाना ना जाने कब खो गया।
1: ठीक है ग्राम सेवक जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, अब सुनवाते हैं आपको दाग द फायर फिल्म का ये गीत।

फोन करें, गीत सुनें। अभी आप सुन रहे थे इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण। यह आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: शब्दांग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है लोहारा यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोल्हे और अश्विन कोल्हे जी ने। बड़ा सुंदर विचार इन्होंने भेजा है, आइए सुनते हैं।
2: लिखते हैं, सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते।
0: बहुत ही सुंदर विचार, आप सबको हमारा धन्यवाद। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: सुहाना चौक ग्राम जसवाड़े से सूरज कुमार ढाकसे जी ने लिखा है,
0: अजीत जी और विमलेश जी आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आप कैसे हैं जी? आशा करता हूँ कि

0: आप सकुशल होंगे। मैं सूरज कुमार ढाक से दोनों आंखों से नेत्रहीन हूँ, प्रतिदिन आपका कार्यक्रम रेडियो पर सुनता हूँ। आपके इस कार्यक्रम में एक से एक बढ़कर कहानियाँ, कविताएं और ये भी जानिए मैं दुर्लभ जानकारियाँ सुनकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमें दिनांक 22 जून 2026 का कार्यक्रम राग सिंदूरा बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद
1: सूरज कुमार ढाकसे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अगला संदेश हमें मिला है रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू और शुभम सेजल साहू।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेशों के लिए श्रोताओं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करते हैं श्रृंखला ये भी जानिए में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग एक शैक्षिक कार्यक्रम है,
1: इसलिए इसमें शिक्षा की बात तो होती ही है, लेकिन ये मनोरंजन से भी भरपूर होती है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के विकास की, और इस क्रम में हमने कल बात की थी मेसोपोटामिया की सभ्यता की मिट्टी की पटियाओं की, जिन्हें हम आज की पुस्तकों का आदि रूप कह सकते हैं।
0: जी, समय का पहिया चलता गया और मेसोपोटामिया की सभ्यता के लगभग 400 वर्षों के बाद एक और महान सभ्यता विकसित हुई। लेकिन वो कौन सी सभ्यता थी, ये विमलेश जी आपको बताना होगा। तो चलिए मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ।
1: जी,
0: वो सभ्यता उस नदी के किनारे विकसित हुई थी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है।
1: अजीत जी, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, और मिस्र को नील नदी का उपहार भी कहते हैं। कहीं ये मिस्र की सभ्यता तो नहीं?
0: बेशक, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। तो चलिए अब करते हैं बात पुस्तकों की और जानते हैं प्राचीन मिस्र में लेखन कला का विकास कैसे हुआ और वे कैसे लिखते थे।
1: प्राचीन मिस्र के लोगों ने नील नदी के तट पर प्रचुरता से मिलने वाले पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई।
0: पेपिरस के पौधों से लिखने की सामग्री बनाई, लेकिन कैसे?
1: ये एक अद्भुत तकनीक थी। पहले वे पेपिरस के पौधों की कटाई करते थे, फिर इसकी मोटी लेकिन मुलायम डंडियों का छिलका हटाकर उन्हें पतली पतली पट्टियों में काटा जाता था। फिर पट्टियों को पहले एक दिशा में बिछा दिया जाता था।
0: जी, और उसके बाद दूसरी परत को उन पर आड़ा बिछाया जाता था। फिर उन्हें भारी समतल पत्थरों या लकड़ी की भारी तख्तियों से दबाया जाता था।
1: इसमें एक मजेदार बात यह है कि पेपिरस के पौधों का प्राकृतिक रस ही गोंद का काम करता था, जिससे वे आपस में चिपक जाती थी। उन्हें सुखाने पर वे कागज की तरह बन जाती थी, फिर उन पर लिखा जाता था।
0: लेकिन वो लिखते कैसे थे?
1: लिखने के लिए वे सरकंडे का उपयोग करते थे। पेपिरस के द्वारा मिस्र वासियों ने स्क्रॉल्स भी बनाए जिनमें राजाज्ञाएं लिखी होती थीं। इसी स्क्रॉल शब्द का प्रयोग आज मोबाइल या कंप्यूटर के पर्दे को ऊपर नीचे करने में इस्तेमाल होता है।
0: उनका स्याही बनाने का तरीका भी बहुत दिलचस्प था। वे घास और वनस्पतियों को जलाकर कालीख बनाते थे
1: जी,
0: और उसमें गोंद मिलाते थे तो बन जाती थी काली स्याही
1: जी।
0: वे लाल गेरू से लाल स्याही बनाते थे। ये प्राकृतिक लाल रंग की बेहद चिकनी मिट्टी होती है। बता दें श्रोताओं कि महत्वपूर्ण बातों को वे लाल रंग से लिखते थे और शेष बातों को काले रंग से। इससे दस्तावेज के महत्व का पता चलता था।
1: यही परंपरा आज भी चली आ रही है। पता है श्रोताओं, पेपिरस इतना उपयोगी था कि लगभग 2000 वर्षों तक मिस्र से भूमध्य सागर के आसपास के कई देशों को निर्यात करता था। इसी पेपिरस से पेपर शब्द निकला, और पेपर को पेपिरस का वंशज कहा जा सकता है। पेपिरस के आने से पुस्तकों का वजन बहुत हल्का हो गया, जिससे उन्हें आसानी से लाया ले जाया जा सकता था।
0: विमलेश जी, तो ये बात हुई पेपिरस की
1: जी।
0: अभी जानना चाहिए कि मिस्र के लोगों ने पेपिरस पर क्या लिखा। क्या इससे मिस्र की सभ्यता के बारे में कोई जानकारी मिलती है?
1: जी अजीत जी, ये जानना बड़ा रोचक होगा। मिस्र वासियों ने पेपिरस पर धार्मिक ग्रंथ लिखे। पेपिरस पर राजाओं के वृत्तांत भी लिखे मिलते हैं,
0: और फैरो राजाओं के आदेश भी। बता दें कि फैरो मिस्र के राजा हुआ करते थे
1: जी।
0: पेपिरस पर प्राचीन मिस्र की चिकित्सा विधियां भी लिखी मिलती हैं, गणित साहित्य और कथाएं भी मिलती हैं। एक बात और साझा करना चाहता हूँ विमलेश
1: जी,
0: और वो ये कि प्राचीन मिस्र में लेखक बहुत सम्मानित समझे जाते थे और उन पर राजाओं की विशेष कृपा होती थी।
1: तो श्रोताओं, जिन दिनों में विश्व के अनेक देश पत्थरों और मिट्टियों की तख्तियों पर लिख रहे थे, उस समय मिस्र के लेखक पेपिरस के हल्के और लचीले पन्नों पर विज्ञान, चिकित्सा, व्यापार और साहित्य का विशाल ज्ञान संजो रहे थे।
0: तो श्रोताओं, ये थी जानकारी किताबों के उद्भव और विकास की। लेकिन अभी और भी मंजिलें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे अगले एपिसोड में
1: जी।
0: अब सुनिए आज का प्रश्न। तो हमारा आज का प्रश्न है, पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पेपर शब्द किस वनस्पति के नाम से बना है और ये वनस्पति कहाँ पैदा होती थी।
0: आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं,
1: और हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए, audio@cit.nic.in है हमारे ईमेल का पता।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओं, हमारा आज का पहला कार्यक्रम है धरती का हरियाला उत्सव।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में मानसून के बारे में बताते हुए प्रकाश डाला गया है कि मानसून की परिभाषा क्या है और वर्षा लाने में इसकी क्या भूमिका है।
0: धरती का हरियाला उत्सव।
2: नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है आज के कार्यक्रम में। ऋतिक और रश्मि नाना नानी के घर गर्मी की छुट्टियों में गए हुए थे। नाना नानी दोनों ही शिक्षक रह चुके हैं। शाम को ऋतिक और रश्मि चौपाल जरूर जाते थे। बहुत गर्मी पड़ रही थी, सब गर्मी के प्रकोप से परेशान थे। देखते ही देखते चौपाल में चर्चा मानसून की होने लगी। ऋतिक और रश्मि जब घर पहुंचे तो उनके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, मानसून किसे कहते हैं? आइए सुनते हैं कि क्या बातें हो रही हैं ऋतिक, रश्मि और उनके नाना नानी के बीच।
3: नाना जी।
4: अरे ऋतिक, रश्मि भाई, आओ आओ आओ। कैसी रही चौपाल?
3: ठीक रही नाना जी। आज ना किसी ने गीत गाया और ना ही कोई नाटक दिखाया गया। आज तो बस यही बात हो रही थी कि
5: बहुत गर्मी पड़ रही है। कोई कह रहा था कि मानसून अब बस आने ही वाला है।
6: नाना जी,
5: इतना तो मुझे भी पता है कि यह ग्रीष्म ऋतु के बाद आता है, लेकिन आप हमें और कुछ बताइए ना।
3: हाँ हाँ बताइए ना। माँ बताती हैं कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते थे। क्या पढ़ाते थे आप?
4: बेटा मैं भूगोल पढ़ाता था।
5: ये लो, नानी जी भी आ गई।
7: अरे यहाँ क्या बातें हो रही हैं?
4: अरे कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। मैं तो बता रहा था इन्हें कि तुम बहुत अच्छा हिंदी पढ़ाती हो।
7: हाँ वो तो है।
3: नानी, हम मानसून के बारे में जानना चाहते थे।
7: अच्छा तो ये बात है। तो भाई चलो शुरुआत करते हैं तुम्हारे नाना जी से।
4: अच्छा चलो भाई चलो, मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, मानसून के बारे में जानने से पहले ये तो जान लें कि मानसून शब्द आया कहाँ से है।
3: कहाँ से आया है
4: भाई? शाब्दिक रूप से मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से आया है। किस शब्द से?
3: अरबी भाषा के मौसम शब्द से।
4: बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। मौसम शब्द का अर्थ होता है ऋतु। एक बात और बता दूं कि इस शब्द का प्रयोग पूरी दुनिया में नहीं होता।
5: पूरी दुनिया में नहीं होता तो फिर?
4: ये शब्द हिंद महासागर, अरब सागर, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण एशिया सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसमी पवनों के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है।
3: आपने कहा ये मौसमी पवन है, क्या मानसून पवन या हवा है?
4: बहुत सुंदर प्रश्न बेटी, बहुत सुंदर प्रश्न। नहीं बेटी, मानसून सामान्य हवा या पवन नहीं है। ये एक ऋतु है जो विशेष मौसमी हवाओं के कारण आती है, इसीलिए इसे मानसूनी हवा भी कहते हैं। इसी के कारण वर्षा ऋतु आती है।
3: नाना जी, मानसूनी पवन कैसे बनती है?
4: देखो बच्चों, अगर सरल शब्दों में कहें तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है, एशियाई भूभाग गर्म होने लगता है। वहाँ एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन जाता है।
3: अच्छा नाना जी।
4: चूँकि पवन ऊंचे दबाव वाले क्षेत्र से निम्न दबाव वाले क्षेत्र की ओर बहती है, इसलिए ये महासागर से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर बहती है। ये समुद्री पवन नमी लेकर आती है।
3: अच्छा।
4: जो गर्म भूभाग पर संघनित होती है और फिर उससे भारी वर्षा होती है।
3: अब समझ में आया। नाना जी, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि भारत में मानसून आने ही वाला है, इसका क्या मतलब हुआ?
4: देखो भाई, यदि भारत की बात करें तो मानसून यानी मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिणी हिस्से से प्रवेश करती हैं, कुछ सप्ताहों में उत्तर की तरफ बढ़ती हैं और जुलाई के महीने तक पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल जाती हैं।
7: और बच्चों, भारत में मानसून सबसे पहले केरल में आता है।
4: हाँ,
7: जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत एक कृषि प्रधान देश है।

0: हमारे देश की लगभग 60-70% खेती मानसून पर ही निर्भर करती है।
1: बिल्कुल।
0: और हाँ, हमारी भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी जाती हैं, जिन्हें षड ऋतु कहा गया है।
2: अच्छा।
0: वर्षा ऋतु का प्रभाव सभी ऋतुओं पर पड़ता है। अच्छा मानसून यानी अच्छी फसल, और अच्छी फसल यानी
2: अच्छी अर्थव्यवस्था।
0: हाँ।
1: बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। तुम्हें पता है वर्षा का हमारी भारतीय संस्कृति पर भी बहुत गहरा प्रभाव है। ये सिर्फ बारिश का मौसम ही नहीं है, हमारी कला, साहित्य, त्योहारों और संस्कृति का भी आधार है।
2: वो कैसे?
0: वो ऐसे कि महाकवि कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है मेघदूत। कहा जाता है कि इस महाकाव्य में बादलों और वर्षा ऋतु का सबसे सुंदर चित्रण है।
2: ओह।
0: अगर आधुनिक कविताएं कहें तो फिर सुमित्रा नंदन पंत, निराला और महाकवि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी मानसून यानी वर्षा ऋतु की सुंदरता के बारे में बहुत कुछ और बहुत सुंदर लिखा है।
1: भाई, इसे सावन और भादों का नाम भी दिया गया है। और हाँ, यदि संगीत की बात करें तो हमारे राग जैसे मेघ मल्हार, मिया मल्हार, गौड़ मल्हार और राग देश विशेष रूप से वर्षा ऋतु के लिए ही तो रचे गए हैं। समझ गए?
2: जी नाना जी। और हमें मानसून के बारे में जानकारी भी मिल गई।
3: हाँ हाँ, पूरी जानकारी मिल गई।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम धरती का हरियाला उत्सव, और आइए अब सुनते हैं हमारा अंतिम कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी विवेकानंद।
5: इस कार्यक्रम में भारत के महान संत, तपस्वी, विचारक और चिंतक स्वामी विवेकानंद के जीवन और भारतीय दर्शन को पश्चिमी देशों में परिचित कराने की उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का सविस्तार उल्लेख किया गया है।

स्वामी विवेकानंद भारत के महान संतों में से एक हैं। वे भारतीय संस्कृति के गौरवशाली प्रतीक एवं महान व्याख्याता माने जाते हैं। उन्होंने देश विदेश की यात्राएं की और भारतीय परंपराओं को गौरवान्वित किया। विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर का कहना है, यदि आप भारत को समझना चाहते हैं तो स्वामी विवेकानंद का अध्ययन कीजिए। स्वामी विवेकानंद का जन्म कलकत्ता में 12 जनवरी 1863 को हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ था। नरेंद्रनाथ का पालन पोषण खुशहाली में हुआ। उनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट में बड़े वकील थे। वे नए विचारों के व्यक्ति थे। नरेंद्रनाथ की माताजी पुराने विचारों की धार्मिक महिला थीं। उनका अधिकांश समय पूजा पाठ में व्यतीत होता। वे नरेंद्रनाथ को रामायण और महाभारत के किस्से कहानियां सुनातीं। अतः नरेंद्रनाथ को अपने माता पिता से नए और पुराने विचारों का समन्वय मिला। नरेंद्र बचपन से ही बहुत नटखट थे। उनकी शरारतों के कारण सभी तंग रहते। एक दिन की बात है, नरेंद्र कोई शरारत करके भाग खड़े हुए। उनकी बहन उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। नरेंद्र ने तुरंत नाली में उतरकर अपने शरीर पर कीचड़ लपेट ली और बोले, अब पकड़ो मुझे। कीचड़ में लिपटे भाई को देखकर बहन अपना समूह लेकर लौट गई। नरेंद्र थे तो नटखट स्वभाव के, परंतु उनके हृदय में धर्म के प्रति आदर एवं श्रद्धा का भाव था। वे अपनी माँ के पास घंटों बैठे पुराणों की कथा बड़े चाव से सुनते और उन्हें याद रखते।

0: एक दिन की बात है, नरेंद्र उस समय 8 वर्ष के थे। अपने कुछ साथियों के साथ शहर में लगा मेला देखने गए। वहां उन्होंने बहुत आकर्षक वस्तुएं देखी। उन्होंने उत्सुकता से मेले की सभी दुकानें देखी। अंत में उन्होंने मिट्टी का एक शिवलिंग खरीदने का निश्चय किया। शिवलिंग खरीदने के बाद नरेंद्रनाथ के पास केवल 4 आने पैसे बचे। वे अभी सोच ही रहे थे कि इन पैसों का क्या खरीदा जाए कि तभी
1: अरे, ये तो किसी के रोने की आवाज है। कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है? देखूं तो ये आवाज कहां से आ रही है? ओ, ये तो एक बच्चा है, पता नहीं क्यों रो रहा है। चलकर इसी से पूछता हूँ, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो?
2: मेरा नाम राजू है। मैं यहाँ मेला देखने आया था। मुझे माँ ने मेले में खर्चने के लिए 4 आने पैसे दिए थे। पता नहीं वो पैसे कहाँ खो गए।
1: अच्छा?
2: जब माँ को पता चलेगा तो वो मुझे बहुत मारेगी। मैं कहाँ से लाऊं वो पैसे?
1: चुप हो जाओ, रो नहीं, मैं तुम्हें 4 आने पैसे देता हूँ। ये लो 4 आने, इन्हें अब संभाल कर अपने पास रख लो। अब माँ नहीं मारेगी तुम्हें। जाओ, खुशी खुशी घर जाओ।
2: अच्छा।
0: और इस तरह नरेंद्र ने अपने बचे हुए पैसे उस बच्चे को दे दिए। बच्चा बहुत खुश हुआ। मेले से जुड़ी एक और घटना है जिससे हमें पता चलता है कि नरेंद्रनाथ दीन दुखियों की सहायता करना अपना कर्तव्य समझते हैं। मेले से खरीदा शिवलिंग हाथ में लिए नरेंद्रनाथ घर की ओर चल दिए। वे अभी मेले से बाहर निकले ही थे कि उन्होंने देखा एक छोटा बालक दौड़ता हुआ सड़क की ओर आ रहा है। यदि उसे तुरंत बचाया नहीं गया तो गाड़ी के नीचे आ सकता है। नरेंद्र ने तुरंत हाथ में पकड़ी हुई शिवलिंग फेंकी और दौड़कर उस बच्चे को उठा लिया। तभी पास खड़े एक वृद्ध ने उससे कहा,
3: बेटा, तुम्हारा शिवलिंग तो टूट गया, अब तुम किसकी पूजा करोगे?
1: महाशय, हाँ? कोई बात नहीं
3: है?
1: मुझे खुशी है कि मैंने इस बालक की जान बचाई। यही मेरा कर्तव्य है, मेरी सबसे बड़ी पूजा है।
0: नरेंद्र की माताजी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने बेटे को गले से लगा लिया और कहा,
4: बेटे, जीवन में सदैव ऐसे ही काम करना।
1: परंतु माँ, एक अपराध हो गया।
4: क्या?
1: मुझसे शिवलिंग टूट गया। ये तो शिव जी का अपमान हुआ ना।
4: बेटा नरेंद्र, तुमने ऐसा जानबूझकर तो किया नहीं।
1: नहीं।
4: और फिर मनुष्य और मनुष्यता की रक्षा ही सच्ची शिव भक्ति है। तुमने जो किया मेरे बच्चे, बिल्कुल ठीक किया।
1: माँ,
0: बाल्यकाल से ही नरेंद्रनाथ में महापुरुष के लक्षण स्पष्ट रूप से झलकने लगे। एक दिन की बात है, उनकी कक्षा में प्रधानाचार्य धर्म और दर्शन पर व्याख्यान दे रहे थे। उन्होंने देखा नरेंद्रनाथ अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। उन्होंने पूछा,
5: नरेंद्रनाथ, तुम सो रहे हो?
6: जी नहीं प्रधानाचार्य जी, मैं कुछ सोच रहा था।
5: क्या सोच रहे हो तुम?
6: क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष्ट करेंगे?
5: हाँ, बोलो नरेंद्र, क्या प्रश्न है तुम्हारा?
6: श्रीमान जी, क्या आपने ईश्वर के दर्शन किए हैं?
5: नरेंद्रनाथ, तुमने बहुत कठिन प्रश्न पूछा है। तुम इस प्रश्न के उत्तर की खोज में गंभीर भी हो, निराश ना हो। मैं तुम्हें ऐसे संत का नाम बताता हूं जो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर सही सही दे सकते हैं। यदि वास्तव में ईश्वर के दर्शन करना और सत्य की प्राप्ति ही तुम्हारा उद्देश्य है तो तुम दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास चले जाओ, वे ही तुम्हें ईश्वर के विषय में बता सकते हैं।
0: नरेंद्रनाथ को प्रधानाचार्य की बात जच गई और वे कुछ ही दिनों बाद दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गए। वहां पहुंचकर नरेंद्रनाथ ने अपना वही प्रश्न पूछा।
6: प्रणाम महात्मन।
7: जीते रहो पुत्र।
6: महात्मन, मैं आपसे अपने एक प्रश्न का उत्तर जानने आया हूँ, क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर देंगे?
0: जब श्री रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्रनाथ को देखा तो वे उन्हें एकटक देखते ही रहे, जैसे वे बहुत पहले से ही एक दूसरे से परिचित हों। फिर वे नरेंद्र से बोले,
7: पूछो पुत्र, तुम क्या पूछना चाहते हो?
6: क्या आपने ईश्वर को देखा है?
7: हाँ पुत्र, मैंने ईश्वर को देखा है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हें देख रहा हूँ, तुमसे बात ही कर रहा हूँ। यदि कोई सच्चे हृदय से ईश्वर की आराधना करे तो वो अवश्य भगवान को प्रत्यक्ष पा सकेगा। यदि तुम मेरे कहे अनुसार काम करो तो तुम्हें भी भगवान के दर्शन करा सकता हूँ।
0: श्री रामकृष्ण परमहंस की बातों का नरेंद्रनाथ पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। रामकृष्ण परमहंस को तो पहली दृष्टि में ही नरेंद्र के प्रति अपार स्नेह उत्पन्न हो गया, और एक समय वो भी आया जब नरेंद्र श्री रामकृष्ण परमहंस के सच्चे शिष्य बन गए। उन्होंने उनके विचारों को अपनाया। श्री रामकृष्ण परमहंस की महासमाधि यानी उनके निधन के बाद नरेंद्र ही उनके उत्तराधिकारी बने। वे केवल नाम के ही उत्तराधिकारी नहीं बने, उनके काम के भी बने। अपने गुरु के नाम पर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की, गुरु के विचारों का प्रसार किया, देश के दीन दुखियों के लिए शिक्षा तथा अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाईं। अब वे स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हो गए और उन्होंने देश के अनेक भागों का भ्रमण किया, लोगों के असहनीय दुख दर्द को अपनी आंखों से देखा और उन्हें मिटाने का भरसक प्रयत्न किया। स्वामी विवेकानंद ने अपने एक पत्र में लिखा था,
6: मुझे ईश्वर में विश्वास है, मुझे मनुष्य में विश्वास है, मुझे दीन दुखियों की सहायता में विश्वास है, और यही मेरा कर्तव्य भी है।
0: इसी दृढ़ निश्चय को लेकर उन्होंने दक्षिण भारत में कन्याकुमारी नामक स्थान पर समुद्र के बीच स्थित एक शिला पर 2 दिन और 2 रात अटूट समाधि लगाई।

इसी समाधि के दौरान उनकी आंखों के सामने अतीत और वर्तमान भारत के चित्र उभर आए। जिस शिला पर स्वामी विवेकानंद ने समाधि लगाई वो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में प्रसिद्ध है। आज लाखों लोग कन्याकुमारी स्थित उस विवेकानंद स्मारक के दर्शन करने आते हैं। जन कल्याण की भावना विवेकानंद के रोम रोम में समा चुकी थी। इसी भावना को लेकर उन्होंने देश में पैदल भ्रमण किया। वो जहां भी जाते उनका आदर सत्कार होता और लोग उनके शिष्य बन जाते। इसी बीच अमरीकी शहर शिकागो में एक विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन हुआ। स्वामी जी ने इस सम्मेलन में जाने का फैसला किया। वे शिकागो पहुंचे। वहां उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस शिकागो सम्मेलन में उन्हें अपने विचार प्रकट करने का विधिवत निमंत्रण नहीं मिला था।

0: फिर भी अपने एक मित्र की सहायता से उन्हें सम्मेलन में केवल 5 मिनट बोलने का समय दिया गया, जिसमें वे अपने विचारों को सभा के सामने रख सकते थे। स्वामी जी ने अपने भाषण में कहा,
1: मेरे अमरीकी भाइयों और बहनों, मुझे अपने देश भारत पर, अपने देश की संस्कृति पर और अपने धर्म पर गर्व है। ये वही देश है जिसने संसार के पीड़ितों की, दुखियों की रक्षा की है। सभी भारतवासियों को सर्वधर्म संभाव की शिक्षा दी है। मुझे ऐसे राष्ट्र का नागरिक होने का गौरव प्राप्त है जिसने विश्व के सब धर्मों और राष्ट्रों के शरणार्थियों को शरण दी है। इस धरती पर समय समय पर अत्याचार होते रहे हैं, भिन्न भिन्न धर्मों के लोग पीड़ित किए गए हैं। धर्म का अर्थ है अशांति और द्वेष को पूरी तरह दूर करना। हमारा कर्तव्य है कि अपने धर्म की श्रेष्ठता सिद्ध करते हुए दूसरे धर्मों को नीचा न कहें। सभी धर्म एक समान है, सभी धर्मों का आदर करना हमारा कर्तव्य है।
0: स्वामी विवेकानंद का ये भाषण सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो गए और तालियों की गड़गड़ाहट से भवन गूंज उठा। उनके विचारों की सभी ने प्रशंसा की। इसके बाद पश्चिमी देशों में स्वामी जी के भाषणों का तांता लग गया। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उनके भाषणों की चर्चा सारे विश्व में होने लगी। उन्होंने सुसंस्कृत भारत की जो छवि विश्व के सामने प्रस्तुत की, उससे भारतवासियों के मस्तक गर्व से उठ गए। और जब वे विदेश से भारत लौटे तो भारत की जनता ने उनका भावभीना स्वागत किया। स्वामी विवेकानंद को भारतीय होने का गर्व था। वे चाहते थे कि उनके देशवासी भी ऐसे ही हों, देश के लिए जिएं, देश के लिए मरें। स्वामी जी में देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। उनका सारा प्रेम भारत के प्रति था और भारत की सेवा में ही उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आज भी उनके विचार उन्हें अमर बनाए हुए हैं।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद। इस कार्यक्रम के बाद हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को,
3: उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता,
2: जगबंधु,
3: चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ मुझे यानी विमलेश को आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग,
5: उमंग। अभी आप सुन रहे थे ये प्रायोजित कार्यक्रम आकाशवाणी का ये सागर केंद्र है। अगला प्रसारण थोड़ी देर में आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: सोनू निगम की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे, दीवाना एल्बम का नाम था। साजिद वाजिद ने म्यूजिक दिया और फैज अनवर ने इसे लिखा था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग।

0: कार्यक्रम रंग तरंग की ये पेशकश थी दीवाना एल्बम से। सोनू निगम की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम रंग तरंग और ये है उसकी अगली पेशकश।

हम किसी से कम नहीं। ये था फिल्म का नाम। मोहम्मद रफी, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम रंग तरंग यहीं संपन्न होता है।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इस अवसर पर केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करते हुए राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। विदेश व्यापार महानिदेशालय, रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद, सीमा शुल्क प्राधिकरण और अन्य हितधारकों के सहयोग से 15 जुलाई की दोपहर को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन करेगा, जिसमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते की शुरुआत के उपलक्ष्य में निर्यात खेप ब्रिटेन को भेजी जाएगी। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता और सामाजिक सुरक्षा समझौता लागू हो गए हैं, जिससे भारत के लगभग 99% निर्यात पर 0 शुल्क के साथ बाजार पहुंच प्राप्त होगी और द्विपक्षीय व्यापार मूल्य का लगभग 100% हिस्सा इसके अंतर्गत आएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ज्ञान से बुद्धिमत्ता उत्पन्न होती है, कौशल विकास को गति देता है और स्वस्थ जीवन हर आकांक्षा को साकार करने की शक्ति प्रदान करता है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि आज के युवा इन गुणों को अपना रहे हैं और राष्ट्र की पहचान को और मजबूत कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता के कामकाज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने उन्हें भारतीय राजनीति के सबसे महान नेताओं में से एक बताया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि उनकी सेवा और राष्ट्र निर्माण की अमिट विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि के कामराज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के एक मजबूत स्तंभ और एक असाधारण सार्वजनिक व्यक्तित्व थे। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा शक्ति है। सोशल मीडिया पर एक

0: पोस्ट में श्री बिरला ने कहा कि युवाओं की ऊर्जा, प्रतिभा और नवाचार विकसित भारत के सपने को साकार करने की सबसे मजबूत नींव है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जगन्नाथ राव जोशी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि कर्नाटक के श्री जगन्नाथ राव जोशी एक देशभक्त कर्मयोगी थे जिन्होंने गोवा में परमिट राज को समाप्त करने के लिए अमानवीय अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि भाजपा के आदर्शों और संगठन को पूरे देश में फैलाने में जोशी जी की राजनीतिक सूझबूझ युवा नेताओं को प्रेरित करती रहेगी। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
1: The Security Council has been ineffective.
2: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है, इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
1: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
0: होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले व्यापारिक जहाजों पर ईरान के हालिया हमलों के जवाब में अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी फिर शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अन्य देशों के लिए होर्मुज का रास्ता खुला है, लेकिन ईरान के लिए ये रास्ता बंद रहेगा। भारत पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नई दिल्ली में कल होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.5% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 495 अंक की वृद्धि के साथ 77,550 पर, जबकि निफ्टी 147 अंक बढ़कर 24,191 पर था। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल।

कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे आशिकी फिल्म से। समीर ने इसे लिखा और नदीम श्रवण का संगीत था। आज यादों की महफिल में वो गीत जो जिंदगी से जुड़े हैं और जीवन से जुड़े हैं, ऐसे गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिलहाल फेरिस्त में ये अगला गीत।

भूपिंदर और अनुराधा पौड़वाल की आवाजों में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। दूरियां फिल्म का नाम था, सुदर्शन फाकिर ने इसे लिखा। अब वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का।

0: डियर जिंदगी, ये था फिल्म का नाम। जसलीन की आवाज में ये गीत अभी आप सुन रहे थे। कौसर मुनीर ने इसे लिखा और अमित त्रिवेदी का संगीत।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
3: जी।
2: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल, जिसमें हम आपको सुनवा रहे हैं जिंदगी और जीवन शीर्षक से जुड़े गीत।
4: तुमसा कोई दूसरा इस समय पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले का

0: काला पत्थर इस फिल्म से अभी ये गीत सुन रहे थे। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और सखियों की आवाजों में साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था। आप इस वक्त सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: प्रोग्राम यादों की महफिल की अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

0: मेरी जंग इस फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: उनके जुल्म

नफरत छुपा सकता नहीं। कितनी दिल

0: उदित नारायण और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी कसूर। समीर ने इस गीत को लिखा, नदीम श्रवण का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो हैं विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम यादों की महफिल।

मासूम फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे अनूप घोषाल की आवाज में। गुलजार ने इस गीत को लिखा था आरडी बर्मन की तर्ज। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम यादों की महफिल यहीं संपन्न होता है।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत आप सबका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुरीला सफर। मैं हूं अनुराधा, मेरा प्यार भरा नमस्कार स्वीकार करें। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी तरफ से एक पोस्ट या इबारत टेक्स्ट की जाती है, पोस्ट की जाती है, और उसमें से आपको शब्द चुनने होते हैं। साथ ही उन शब्दों में से कौन कौन से गीत शामिल हो सकते हैं, कौन कौन से गीत बन रहे हैं, वो लिखना होता है अपने FB कमेंट्स पर। आपके प्यार भरे संदेश मुझ तक पहुंच चुके हैं और मैंने पढ़ भी लिए हैं। बहुत सारे गीत आपने फहरिस्त बनाकर लिखी है वहां पर, और बहुत सारे गीत मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेल खा रहे हैं, लेकिन जिनके मेल नहीं खा रहे हैं वो सुनिए, हमारे सवालों का जवाब भी दें और फिर वहां पर कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस प्रोग्राम की, लेकिन उन लोगों के लिए, उन श्रोताओं के लिए जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है, हमारे साथ जुड़े हैं, उनके लिए इबारत फिर से पढ़ देते हैं। इबारत कुछ इस प्रकार थी, सितम हो चाहे कितने भी, इस दिल को अब रोको ना यार, रिश्ता अगर सच्चा हो तो हर दर्द भी बन जाता है प्यार, कहीं ठहर

जाए ऐसा समा जहां रोज रोज खेले नए ख्वाब, यादें चुपके से आकर मेरी पलकों पर उतर जाएं हर रात। रिश्ता कोई नाम का मोहताज नहीं होता, मोहब्बत का रास्ता आसान नहीं होता। मन को छूकर मेरे ठहर जाओ तो कभी, मोहब्बत का मौसम यूं ही नाराज नहीं होता। कोई रोको ना इन उड़ते ख्वाबों के समा को, पलकों तले रोज रोज ऐसा ख्वाब नहीं होता। तो बताइए जल्दी से कि कौन से शब्द आपने चुने हैं और कौन से गीत उनसे बन पाएंगे। और शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ, उसके बाद आएंगे आपके संदेशों पर।

लता मंगेशकर की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे आंखें फिल्म से साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत। वैसे इस गीत को बहुत से श्रोताओं ने समझ लिया था, जान लिया था और लिख भी दिया था, तो सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स हमारे पास आए हैं इसी एक गीत के जो भी आपने सुना है उसके आए थे, और बहुत से प्यारे प्यारे संदेश हैं। रिश्ते वो बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते वो बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। कितने अनमोल है ये रिश्ते, कोई याद ना करे तो भी उनसे मिलने की एक उम्मीद रहती है, हमारे श्रोतागण लिखते हैं। और सचमुच यही रिश्ता है आपका, आप श्रोताओं का हमसे, यानी कि विविध भारती से, ये हमेशा बना रहे। एक और श्रोता लिखते हैं कि सितम दिल रिश्ता यार, इन शब्दों से सजे आज गीत सुनेंगे और एंजॉय करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि आज गद्यांश तीन अलग अलग भावनाओं को बयां करता हुआ प्रतीत हो चला है, जहां एक ओर सच्चे रिश्ते की आहट है तो दूसरी ओर प्यार की दास्तां, और वहीं तीसरा पहलू यादों और ख्वाबों की दुनिया रच रहा है, यानी जीवन के मिश्रित एहसासों को समेटे हुए यादों और ख्वाबों से सजाए हुए प्यार के रिश्ते जीवन यात्रा को अनंत अभिलाषा और इच्छाओं तक पहुंचा देते हैं। बिल्कुल, ये सभी मिले जुले रूप आज आपको इस प्रोग्राम में मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत को पढ़कर तो ऐसा लग रहा है कि काश प्यार ना किया होता तो अच्छा होता, क्योंकि पहले कर्म फिर सितम फिर अपने प्यार के लिए रोना गिड़गिड़ाना, अरे भाई ये तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, दिन रात उसी में लगे रहिए। लेकिन ये भी है कि प्यार एक ऐसा एहसास है कि हर कोई अपनी जिंदगी में से गुजरता जरूर है, और वो कहते हैं ना कि जरूर करना चाहिए, प्यार इंसान को बदल देता है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि ये भारत जीवन के एक सुंदर उत्सव का सजीव चित्र प्रस्तुत करती है, जहां प्रेम स्मृतियां और आत्मीयता मिलकर हमारे रूखे जीवन को एक सजीव कलाकृति में बदल देते हैं। बिल्कुल, एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय जीवन के विविध रंगों का मिलन है, और गीत इन्होंने लिखा है जो कि हम शामिल कर सकते हैं। देखते हैं अब कितने सारे गीत शामिल होते हैं आपकी पसंद के। चलिए बिना देरी के अगला गीत आपको सुनवाते हैं और देखते हैं कि कितने सारे लोगों ने ये गीत लिखा है लिस्ट में, और उसके बाद हम अपने सवाल जवाबों पर भी आएंगे। प्रोग्राम का ये अगला गीत

किशोर कुमार की आवाज में गीत अभी आप सुन रहे थे प्रियतमा, फिल्म का नाम, योगेश ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत। आपके खूबसूरत संदेश हम तक पहुंच चुके हैं और इस गीत की डिटेल्स भी हम तक पहुंच चुकी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सच्ची मोहब्बत जिंदगी का वो खूबसूरत ठहराव है जहां वक्त के सितम और हर दर्द भी प्यार में बदल जाते हैं। रूह से जुड़े ऐसे पाक रिश्ते किसी नाम या पहचान के मोहताज नहीं होते। बिल्कुल सही लिखा आपने। एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्ता नाम का मोहताज नहीं होता, ये तो विश्वास, अपनापन, सम्मान और सच्चे एहसास से बनता है। कई बार खून के रिश्ते भी दूर हो जाते हैं और कुछ अनजाने लोग दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि जीवन का अहम हिस्सा बन जाते हैं। बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि ख्वाबों की दुनिया बेहद खूबसूरत होती है, कभी बादल, कभी पानी, कभी कोई जुदा हो गया तो फिर सपनों में आकर मिल जाता है और हम खुश हो जाते हैं। कभी कभी ख्वाब में रिश्ते टूट जाते हैं और सपने में टूटते ही वो रिश्ते भी टूट जाते हैं। रिश्तों की डोर भी नाजुक होती है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा होता है। सपनों के साथ और हकीकत के साथ एक बिल्कुल महीन सी एक रेखा होती है उसके बीच। बस ये जरूर है कि मन उड़ उड़ कर उस तरफ जाना चाहता है, यानी कि सपनों की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि जो हकीकत में नहीं मिलता उसे कहीं ना कहीं वहाँ प्राप्त करना चाहता है, वहाँ उसे पाकर आनंदित होना चाहता है। हमारे पहले गीत के बारे में बात करते हुए एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी के सफर में कभी सितम मिलते हैं तो कभी दिल को छू लेने वाला प्यार मिलता है। सच्चा रिश्ता वही होता है जो हर दर्द को मुस्कुराकर सहले और हर मुश्किल में साथ निभाए। बिल्कुल। रिश्ता अगर सच्चा हो तो दर्द की गुंजाइश ही नहीं रहती, सिर्फ प्यार ही प्यार होता है दो दिलों के बीच में, ऐसा भी कहना है हमारे एक श्रोता का। तो ये एक्सपीरियंस की बात है और जिस तरह से हमारी जिंदगी गुजर रही है हर किसी का अपना अपना अनुभव है। बिल्कुल। और इसीलिए तो हम यहाँ पर साझा करते हैं अपने विचार, ताकि हर कोई अपने बारे में, अपने अनुभवों के बारे में लिख पाए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सितम अपनों के अक्सर हमें अंदर तक तोड़ देते हैं, क्योंकि अपनों से चोट की उम्मीद कोई नहीं करता। अक्सर ऐसा दर्द शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है और साहिर लुधियानवी ने अपनी मशहूर शायरी में भी इस दर्द को घोल डाला है और वो गीत बहुत प्यारा है, ऐसा इन्होंने लिखा। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे जो हिंदी सिनेमा के गीतकार हैं उनको पूरा क्रेडिट जाता है, पूरा श्रेय जाता है इसके लिए। और हर एहसासों को उन्होंने इस तरह से पिरोया है कि हमें लगता है वो हमसे जुड़ा हुआ है, हर गीत हमसे जुड़ा है। लेकिन ये भी है कि जिंदगी में कुछ भी एक सा नहीं होता, बदलाव तो रहता ही है, जीवन बदलता रहता है, स्थितियां बदलती रहती है और मौसम भी तो बदलता रहता है। मौसम का काम ही बदलना है, कहते हैं ना कि मौसम की तरह बदल तो ना जाओगे, तो ऐसा ही कुछ है। अगला गीत समा के ऊपर आप सुनिए और साथ ही साथ क्यों ना, ये जो मौसम बदलता है इसी तरह से बहुत से परिवर्तन हमारी जिंदगी में आते हैं, तो ऐसे कौन से परिवर्तन हैं जिन्हें अपनी जिंदगी में शामिल करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो आदतें एक बार अगर आ जाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। आप मुझे लिखें, मैं इंतजार कर रही हूँ आपके संदेशों का।

जमीन आसमां, इस फिल्म से गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। अनजान ने इसे लिखा और आरडी बर्मन की तर्ज थी, जैसा कि आप सब लोगों ने अपने संदेशों में भी लिखा है। हमारे एक शोधा कहते हैं कि क्या बात है, उनकी फहरिस्त से मिलते जुलते ये तीसरे नंबर का गीत भी शामिल हो गया है, ऐसा समाना होता, और बहुत दिनों के बाद ये हैट्रिक लगी है और वो बहुत खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। दूसरे श्रोता हमारे एक लिखते हैं धुनों के बारे में, और उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम के शुरुआत में अनाउंसमेंट उद्घोषणा के पहले जो हमने फिलर बजाया था उसके बारे में वर्णन किया है, साथ ही साथ उन्होंने और भी जो हमने फिलर्स बजाए थे उसके बारे में लिखा है और पूरा जानकारी दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा समाना होता, इसमें भी ये बेहतरीन बांसुरी का प्रीलूड यूज़ किया गया है, इस्तेमाल किया गया है, रोनू मजूमदार जी ने बजाया, साथ में गिटार और वाइब्रेटोन। ऐसा समाना होता, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत खुशी होती है जब हमें ये सब आप लिखकर भेजते हैं, और अच्छा लगता है कि गीतों के साथ साथ जो म्यूज़िक या फिर जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं उसके बारे में भी आप सोचते हैं, उसे इतने संजीदा तरीके से सुनते हैं और लिखते हैं। धन्यवाद। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि सितम करने वाले से ज्यादा सितम सहने वाले को पता होता है, फिर भी वो सहता है और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कोई दूर हो या पास, पर प्यार उसके लिए हमेशा हो, कभी साथ कभी दूर, लेकिन हर परिस्थिति में प्यार होना बहुत जरूरी है। जी हाँ बिल्कुल। चलिए सुरीला सफर को आगे बढ़ाते हैं और ये अगला गीत सुनते हैं। इसमें आप मुझे बताएं कि अभिनेता और अभिनेत्री इस गीत को जिन पर फिल्माया गया है वो कौन है, वो मुझे लिख भेजिए। और साथ ही साथ हम जहां परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि मौसम किस तरह से बदल जाता है, कभी बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी थी, फिर बरसात आई तो बस बरसात ही बरसात, उससे परेशान हो गए कुछ लोग लगातार बारिश से, और अब मौसम बहुत खुशगवार है। तो ये जो बदलाव है, इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कुछ परिवर्तन हमें करने होते हैं अपनी सेहत को ध्यान में रखते हुए। कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी सेहत में ठीक हो, अच्छी हो, इसीलिए अपनाते हैं, हालांकि वो हमें कुछ खास पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी हमें उन्हें अपनाते हैं। तो ऐसी कौन सी आदतें हैं जो आपने अपनाई है अपनी सेहत के लिए, अपनी जिंदगी के लिए, और जो आपको पसंद नहीं है लेकिन फिर भी आपके लिए अच्छी है,

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज़ों में ये नाखुदा फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे और आपका अंदाज़ा एकदम सही है, बिल्कुल ये फिल्म आया गया है राजकिरण और स्वरूप संपत पर, बिल्कुल। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफ़र चल रहा है जिसमें विविध भारती के गीतों की झड़ी लगी है, सचमुच सुरीले सफ़र में एक से बढ़कर एक गीत है और दिल को खुश कर देते हैं ये गीत, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता लिखते हैं कि जहाँ पर आदत की बात की गई है वहाँ सुबह सूरज के उगने से पहले जाग जाते हैं और ध्यान योग करते हैं, दैनिक दिनचर्या में शामिल करने से आपका जो स्वास्थ्य है और आयु है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जी हाँ बिल्कुल। एक और श्रोता लिखते हैं कि समय कोई बांध नहीं सकता क्योंकि निरंतर चलता रहता है, हम सभी को समय के साथ ही चलना चाहिए। बिल्कुल, एक ऐसी आदत है जो हमें ज़रूर शामिल करनी चाहिए अपनी ज़िंदगियों में और अक्सर हम समय की कद्र थोड़ा सा कम करते हैं, थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं या फिर हमारी जो टाइमलाइंस होती है जो हमने अपने आप को वक्त दिया रहता है उस वक्त से भी हम थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, समय पर अपना काम समाप्त नहीं करते जिससे कि बाद में वो जो काम है वो बस इकट्ठा होता चला जाता है और कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस और इन सब चीज़ों का, परेशानियों का सबब बनता है। तो ज़रूर जब हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, समय को किस तरह से अच्छी तरह से मैनेज किया जाए वो बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, बारिश का नामो निशान तक नहीं है। जी हाँ, लेकिन मौसम है, मौसम तो बदलेगा ज़रूर, मौसम निरंतर चलता रहता है और लेकिन बदलता भी रहता है, तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, बारिश भी जल्द ही होगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उन्हें सुबह जल्दी उठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता लेकिन वो उठते हैं क्योंकि पूजा और योग दोनों रह जाते हैं नहीं तो, और फिर पूरा दिन ऐसा लगता है कि ना तो योग किया और ना ठीक से पूजा की और फिर दूसरे जो काम है वो सब रहते हैं। तो हालांकि इन्हें पसंद नहीं है लेकिन फिर भी इन्होंने इस आदत को अपनी ज़िंदगी में शुमार किया है कि जल्दी उठना है। और ऐसा भी कहते हैं ना कि कुछ दिन यानी कि 21 दिन तक अगर आप एक आदत को करें तो वो फिर आपकी ज़िंदगी में, दिनचर्या में शामिल हो जाती है। तो बस वो जो शुरुआत के कुछ दिन हैं, शुरुआत के कुछ स्टेप्स हैं, शुरुआत के कुछ कदम हैं, बस वो उठाने में वक्त लगता है। बिल्कुल। सुरीला सफर में अब दिल को छू देने वाला एक और गीत आपको सुनवाते हैं। वैसे तो सभी गीत दिल को छू लेते हैं लेकिन ये गीत, यहां पर एक शब्द छुपा है

याराना फिल्म से ये गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, अनजान ने इसे लिखा और राजेश रोशन का संगीत था। आदतों की बात की जाए जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि अभी तो मैंने बहुत देर से आपका प्रोग्राम जो है ज्वाइन किया है, जुड़ा हूँ, कुछ तो मिस कर दिया है, तो अब समझ में आ रहा है कि वक्त से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हमारे एक और श्रोता के लिखते हैं कि पहले वो बहुत ज़्यादा खर्चा किया करते थे, लेकिन अब बचत को ध्यान में रखते हुए एक आदत अपना ली है कि अब बचत पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल सही, और कहते हैं ना कि मौके और मुसीबत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तो मौका या मुसीबत कुछ भी आए उसके लिए आप हमेशा से तैयार रहिए, और बचत तो बहुत ज़रूरी चीज़ है ज़िंदगी में। एक और श्रोता लिखते हैं कि बुज़ुर्गों के लिए नियमित मॉर्निंग वॉक ही स्वस्थ रहने का एकमात्र विकल्प है, और ये प्रतिदिन कम से कम 5 किलोमीटर या अधिक से अधिक 8 किलोमीटर वॉक करते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि सुबह उठकर छत पर बैठ जाते हैं और योगासन करते हैं, ध्यान करना अच्छा लगता है, और जब सूर्य देवता उदय होने लगते हैं तभी वो सूर्य नमस्कार करते हैं, और कुछ देर तक सूरज की किरणों को देखना भी अत्यंत सुख देता है, जो कि नेत्र ज्योति में भी बढ़ावा करता है, वृद्धि करता है। जी हाँ बिल्कुल, हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि ऐसी ही कुछ एक चीज़ें हैं जो वो पहले कतराते थे करने के लिए, लेकिन अब उन्होंने छोटी छोटी आदतों से शुरुआत की है अपनी ज़िंदगी में उन्हें शामिल करने की, क्योंकि वो अच्छी है। जी हाँ, स्वास्थ्य संबंधी चीज़ें तो आप बता ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा और भी आदतें आप हमें बता सकते हैं, जैसे कि किसी चीज़ को ना कहना। ऐसा भी होता है कि हम किसी के कहने पे वो चीज़ करते चले जाते हैं लेकिन हमारा मन नहीं होता है, या फिर हमें उतनी क्षमता

क्षमता नहीं होती है, लेकिन अगर अगले को बुरा लग जाए तो, रिश्ता टूट जाए तो, किसी को अपमानजनक लगे तो, हम उन चीज़ों को करते चले जाते हैं बगैर मन के और बगैर क्षमता के, तो ऐसा भी होता है। तो कुछ ऐसी आदतें, कुछ ऐसी बातें जो आप चाहते हैं कि नई पीढ़ी से भी सीखें और अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, वो भी आप मुझे लिख सकते हैं कमेंट में, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। फिलहाल हम चलते हैं अपने दूसरे गीत की तरफ।

सनम तेरी कसम इस फिल्म से ये गीत था। किशोर कुमार की आवाज में गुलशन बावरा ने इसे लिखा और आर डी बर्मन की तर्ज। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि इसीलिए तो ये गाना बना है, नाना करते प्यार तुम इसे कर बैठे, कि हम नाना भी करते हैं लेकिन फिर भी वो काम कर लेते हैं। जी हाँ। एक और श्रोता लिखते हैं कि हंसने से पीड़ा दूर होती है, तो हंसना जरूर चाहिए, ये एक ऐसी आदत है जिसे अपनी जिंदगी में जरूर जरूर शामिल करना चाहिए। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सालों पहले उन्होंने भावनगर वैशाली टॉकीज में याराना और कालिया एक साथ देखी थी और इन्हें ये गीत सुनकर वो याद आ गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि छू के मेरे मन को ये गीत जो था, ये प्रेम, अपनापन और भावनाओं की कोमलता को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। इसकी धुन और शब्द दोनों मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जो श्रोता के मन में मधुर यादें और भावनाएं जगा देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जब आदत की बात आती है तो शाम को खाना बनाना उन्हें अच्छा नहीं लगता क्योंकि गर्मी में बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो हम ये जो चीज़ है जो हम बदल नहीं सकते, उसमें कुछ और छोटा मोटा बदलाव ला सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हमें आरामदायक महसूस हो, कुछ आराम आए, क्योंकि खाना तो बनाना पड़ेगा ना, आप नहीं तो किसी और को खाना बनाना, खाना ये सब तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये ज़रूर कि अपनी आरामदायक तरीके से और अपनी कन्वीनियंस से, जिसे कहते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बदलाव में सब करने को तैयार हूं, परंतु विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुनने में कभी भी बदलाव नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार भरे संदेश के लिए, आपके इस प्यार के लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमें पसंद होता है वो बाकी सबको पसंद नहीं होता, जैसे कि बहुत तेज आवाज में गीत चलाना, बच्चों को अपना सुनना होता है और कोई और कुछ और सुनना चाहता है, तो ऐसे में जो घर है उसमें जो आवाजों का जो युद्ध छिड़ता है उसकी बात ही अलग हो जाती है, लेकिन फिर वो अपनी खुशी के लिए मोबाइल पर सुन लेते हैं धीमे आवाज में। जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो बदलाव है, छोटे छोटे जिसे एडजस्टमेंट्स कहते हैं, ये भी जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले गीत की तरफ।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में बड़े दिल वाला इस फिल्म से गीत सुन रहे थे। आरडी बर्मन का संगीत और मजरू सुल्तानपुरी ने इसे लिखा। हमारे श्रोता लिखते हैं कि रिश्ते और प्यार पर आज सुरीला सफर उन्हें बहुत पसंद आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें ये भी लिखते हैं एक श्रोता कि जो बात हमें ठीक नहीं लगती उसके लिए ना कह देते हैं, लेकिन कभी कभी कोई बात जो हमें गलत लग रही है सामने वाले का दृष्टिकोण एकदम अलग होता है, सही होता है, तो हमें दोनों के दृष्टिकोण से देखना चाहिए और सही गलत का चुनाव करना चाहिए। बिल्कुल सही। एक और श्रोता लिखती है कि कहो कैसे रास्ता भूल गए, ये जो गीत है ये सुनते ही उन्हें अचानक ऐसा लगा ये गीत तो सोचा भी नहीं था, तो ये गीत उनके लिए बड़ा अच्छा वाला शौक था। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे लिखते हैं कि विविध भारती के फेसबुक पेज पर हम बिल्कुल जानबूझकर आते हैं, रास्ता भूलकर नहीं आते हैं और बार बार आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। एक और श्रोता लिखते हैं कि आषाढ़ की दोपहर को गुलजार करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, उन्हें आज का प्रोग्राम अच्छा लगा। एक और श्रोता कहते हैं उनकी सबसे बड़ी बुरी आदत यह है कि सुबह से उठकर रेडियो का कान मरोड़ते हैं और इस आदत से पूरा घर परेशान है क्योंकि उन्हें सुबह सुबह गीत सुनना पसंद नहीं है। लेकिन हम ये कहेंगे कि ये जो आपकी बुरी आदत जो दूसरों को बुरी लगती है लेकिन बुरी नहीं है, इसे बरकरार रखिए, इसे बिल्कुल भी ना बदलें।

0: ये गीत समय की कमी की वजह से पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, सुरीला सफर सुनने के लिए धन्यवाद।
1: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत हमने लिया है फिल्म बीवी हो तो ऐसी सी, अनुराधा पौडवाल की आवाज, साथ में मोहम्मद अजीज, समीर का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

पंकज दास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में अब हम आपको सुनवा रहे हैं दयावान फिल्म का ये नगमा, अजीज़ कैसी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल के गाए इस नगमे के साथ ही आज का फिल्म संगीत यहीं संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 2:10 होने को है, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को पंजाब दौरे पर जाएंगे। वे सबसे पहले चंडीगढ़ स्थित पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचेंगे, जहां विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद वे जालंधर कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्निर्मित 74 अन्य रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन भी करेंगे। श्री मोदी संत रविदास एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाएंगे, जो अमृतसर को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जोड़ेगी। प्रदेश मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव लखन पटेल से पशुपालन विभाग वापस ले लिया गया है। ये विभाग अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने पास रखेंगे। इसके बाद लखन पटेल अब केवल आनंद विभाग के मंत्री रह गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। लखन पटेल पथरिया विधानसभा से विधायक हैं। साल 2023 में सरकार के गठन के साथ लखन पटेल को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पशुपालन और डेयरी विभाग की जिम्मेदारी सौंपी थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर से अबूधाबी के लिए प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की जाएगी और सप्ताह में चार दिन सोमवार बुधवार शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। अभी तक इंदौर से अबूधाबी जाने के लिए यात्रियों को दिल्ली या मुंबई होकर जाना पड़ता था, जिसमें 7 से 8 घंटे लगते थे। नई उड़ान से यह सफर सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का भी शुभारंभ करेंगे। ये महोत्सव लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी परिसर में आयोजित किया जा रहा है। प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इसी कड़ी में ये महोत्सव आयोजित हो रहा है। महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन, स्मार्ट सिंचाई, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। इंदौर के बाद ये महोत्सव धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 14 से 17 जुलाई भारत टेक 2026 चल रहा है। इसमें प्रदेश के पवेलियन में पीएम मित्रा पार्क, टेक्सटाइल इकोसिस्टम और निवेश अनुकूल नीतियों को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदेश के प्रतिनिधि मंडल ने देश विदेश के संभावित निवेशकों से विस्तृत चर्चा कर उन्हें प्रदेश की औद्योगिक संभावनाओं से अवगत कराया। प्रदेश ने अन्य 6 पीएम मित्र राज्यों के साथ एक राउंड टेबल सत्र में भी भागीदारी की। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से प्रदेश के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। वे आज रात अशोकनगर पहुंचेंगे। कल से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करेंगे। कल वे तार वाले बालाजी मंदिर में दर्शन करने के बाद जन सुनवाई करेंगे और स्वसहायता समूह की महिलाओं से संवाद भी करेंगे। शाम को सिमरखेड़ी में विद्युत सब स्टेशन का लोकार्पण करेंगे। वहीं 17 जुलाई को कलेक्ट्रेट में DVMC की बैठक के बाद श्री सिंधिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसी दिन अशोकनगर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार का उद्घाटन और विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। और अब बात मौसम की। प्रदेश में मॉनसून की रफ्तार धीमी पड़ने से गर्मी ने फिर से जोर पकड़ लिया है। राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 35 से 36 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। पिछले 6 दिनों से प्रदेश में कहीं भी भारी बारिश

0: दर्ज नहीं की गई है। अगले 5 दिनों तक भी भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। अब तक प्रदेश में 9.5 इंच बारिश हुई है, जबकि इस अवधि तक सामान्य वर्षा 10.5 इंच मानी जाती है। मौसम विभाग के मुताबिक आज इंदौर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बालाघाट सहित 21 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पीआईबी भोपाल द्वारा देश के समग्र विकास और साल 2047 तक भारत को एक सशक्त और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के संकल्प को लेकर कल रीवा में कार्यक्रम आयोजित किया गया। आगर मालवा जिले में कल व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल संचालकों, दुकानदारों और सब्जी विक्रेताओं को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 के बारे में जानकारी दी गई। झाबुआ में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल पर आयोजित बलराम कृषि महोत्सव के अंतर्गत जिले में 19 जुलाई को जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी की पुलिस अधीक्षक यांगचिन डोलकर भूटिया ने कल खुद बैराड थाने पर आयोजित ग्राम चौपाल में लोगों से जनसंवाद किया। दमोह लोकसभा क्षेत्र के सांसद राहुल सिंह लोधी ने छतरपुर जिले के बड़ा मलहरा स्थित केंद्रीय विद्यालय का बीते रोज निरीक्षण किया। नर्मदापुरम में कृषक कल्याण वर्ष के तहत जिला प्रशासन किसानों की कृषि लागत कम करने, आय बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा दे रहा है। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमियों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। ओडिशा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और खेलों में फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना। अब समाचार विस्तार से। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। श्री मोदी ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे प्रौद्योगिकी, पेशेवर सेवाओं और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग भी मजबूत होगा। इससे कुशल भारतीय प्रतिभाओं की आवाजाही को भी बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती देगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये क्षण भारत ब्रिटेन के बीच विश्वास तथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश और नवाचार द्वारा संचालित एक प्रगतिशील साझेदारी बनाने के उनके संकल्प को दर्शाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रिटेन साझा समृद्धि के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के आज से लागू होने पर वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश और नवाचार के लिए नए आयाम खोलेगा। एक अंग्रेजी दैनिक में लिखे लेख में श्री गोयल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौता कारोबार के लिए विशेष अवसर सृजित करेगा तथा विकसित भारत 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को और गति देगा। उन्होंने ये भी कहा कि महत्वाकांक्षी समझौता समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाएगा। श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते से महिलाओं, किसानों, युवाओं, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, नवोन्मेषकों, पेशेवरों को लाभ होगा और उनके लिए कई अवसर सृजित होंगे। तो इस बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच हुआ यह समझौता देश की आर्थिक कूटनीति में एक नया अध्याय है। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्रों के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदारी भी मजबूत होगी। इस समझौते के तहत प्रोसेस्ड फूड पर पहले लगने वाला 70% शुल्क, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक का

0: शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे किसान उत्पादक संगठनों, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में ग्रामीण रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस व्यापार समझौते के साथ सामाजिक सुरक्षा अंशदान से जुड़ा सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। इसके तहत अस्थायी रूप से ब्रिटेन में काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों और उनके नियोक्ताओं को दोनों देशों में सामाजिक सुरक्षा अंशदान नहीं देना होगा। इस छूट की अवधि 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई है। इस समझौते से 75,000 से अधिक भारतीय पेशेवरों और 900 से ज्यादा कंपनियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दीपेंद्र कुमार के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच ऐतिहासिक व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते पर ब्रिटेन के उप उच्चायुक्त स्टीव हिकलिंग और विदेश व्यापार महानिदेशालय संयुक्त निदेशक डॉक्टर राहुल सिंह ने आज अहमदाबाद के सानंद में स्थित इनलैंड कंटेनर डिपो से समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। 3,07,00,000 रूपए से अधिक मूल्य की इस पहली खेप में अहमदाबाद की विनिर्माण क्षमता की झलक मिलती है। इसमें औद्योगिक उपकरण, दवाइयां, ऑटोमोबाइल, पॉलीमर और वस्त्र सहित 7 प्रमुख क्षेत्रीय निर्यातकों के उत्पाद भी शामिल हैं।
2: हमने टारगेट रखा है, वो टारगेट है 5 साल में आज के एक्सपोर्ट को डबल करने का। अभी हमारा एक्सपोर्ट गुड्स और सर्विसेज को मिला के अराउंड 34-35 बिलियन डॉलर्स है। उसको डबल करके नेक्स्ट 5 ईयर्स के अंदर 2030 तक उसको डबल करने का प्लान है, जिसमें हमारे गुड्स भी बढ़ेंगे, सर्विसेज भी बढ़ेंगे।
1: भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय आर्थिक संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के रूप में चेन्नई स्थित ब्रिटेन उप उच्चायोग में उप उच्चायुक्त डॉक्टर सुतापा चौधरी ने आज विदेश व्यापार महानिदेशालय के अधिकारियों के साथ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के तहत पहली निर्यात खेप को रवाना किया। इस समझौते से दोनों देशों के नागरिकों को ठोस आर्थिक लाभ पहुंचने की उम्मीद है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के व्यापक हित में आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में 100 श्रोतम 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि केंद्र सरकार ने नई ऊर्जा के साथ आयुर्वेद और योग को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा की प्राचीन परंपरा को वैज्ञानिक मानकों पर स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सेवा के वैश्विक मानकीकरण को मजबूत करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर काम कर रहा है। उन्होंने युवाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान देने का आग्रह किया।
3: यहाँ उपस्थित युवा विद्यार्थियों तथा प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत कर रहे शोधकर्ताओं से मैं ये कहना चाहूंगी कि आयुर्वेद का भविष्य आपके हाथों में है। आप सभी को जिज्ञासा, सत्यनिष्ठा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ व्यवहारिक शोध और अपने क्षेत्रों में श्रेष्ठ साक्ष्य निर्माण के मार्ग पर आगे बढ़ना होगा।
1: राष्ट्रपति ने महिलाओं से आयुर्वेद के क्षेत्र में जुड़ने का आग्रह किया।
3: आयुर्वेद चिकित्सा का अध्ययन करने वाली बेटियों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन चिकित्सक बनने के बाद आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने वाली महिलाओं की संख्या उस अनुपात में नहीं बढ़ रही। इन महिला चिकित्सकों को आयुर्वेद से जुड़े प्रोफेशन में बने रहने और प्रगति की सीढ़ियां चढ़ सकने के सहायक हो सकने वाले उपायों को सुझाया गया है। मुझे लगता है इतने ही सुझाने से पर्याप्त नहीं होगा, उसको अमल में लाने के लिए सबको सोचना होगा।
1: भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है।
4: The Security Council has been ineffective.
5: सुरक्षा परिषद प्रभावित आबादी की तकलीफों को खत्म करने में नाकाम रही है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के मूल सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने पर ही सवाल उठने लगे हैं। सुरक्षा परिषद की इन कमियों की वजह साफ है। 1940 के दशक के हिसाब से बना 80 साल पुराना ढांचा आज की चुनौतियों से निपटने के लिए उपयुक्त नहीं है। संयुक्त राष्ट्र एक समूह के तौर पर सुरक्षा परिषद में सुधार लाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठा पाया है।
4: ऑन रिफॉर्मिंग द सिक्योरिटी काउंसिल।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के हमले आने वाले दिनों में जारी रहेंगे और अगले सप्ताह इनका दायरा बढ़ सकता है और ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका उसके प्रमुख ऊर्जा प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के पास समझौता करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर श्री ट्रंप ने दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय आवाजाही के लिए खुला है लेकिन ईरान के जहाजों के लिए बंद है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में ईरान को संदेश भेजकर समझौता करने की सलाह दी है, अन्यथा उसे और अधिक गंभीर परिणामों का सामना करना पड़ेगा। भारत की 2026 की अध्यक्षता में हैदराबाद में 12वें ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में हो रही इस उच्च स्तरीय चर्चा में सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना, कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना, वैश्विक कौशल का आकलन करना और गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। स्किल इंडिया मिशन की आज 11वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस मिशन की शुरुआत की थी। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: कौशल विकास केंद्र सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य युवाओं को ऐसे हुनर सिखाना है जिससे उन्हें आसानी से नौकरी मिल सके या वे अपना रोजगार शुरू कर सकें। इस अभियान के तहत लाखों युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 6 करोड़ से अधिक युवाओं को सशक्त बनाया है। हर साल स्किल इंडिया मिशन के तहत लगभग 1 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत अब तक 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण मिल चुका है। विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए युवाओं को हुनरमंद बनाना जरूरी है ताकि वे आगे बढ़ सकें और देश की तरक्की में अपना योगदान दे सकें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश और कुछ जगहों पर तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर भारत, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में कल तक तेज वर्षा की संभावना है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, रायलसीमा और उत्तर प्रदेश में कल तक मौसम गर्म और उमस भरा रहने की आशंका है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा के कारण बिहार में गंडक, बागमती, कमला बालन और कोसी नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: गंडक नदी के जलस्तर में लगातार हो रही बढ़ोतरी के चलते पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर गंडक बराज से आज सुबह 12 बजे तक 183,900 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल संसाधन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। साथ ही अगले आदेश तक सभी अभियंताओं की छुट्टी रद्द कर दी गई है। जिला प्रशासन ने आसपास बसे लोगों को सतर्क रहने और आवश्यकता होने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। इधर शिवहर में बागमती नदी का जलस्तर बढ़ने से कटाव की समस्या शुरू हो गई है। कई स्थानों पर नदी के दोनों तटबंध के अंदर पानी फैलने लगा है। सविता पारिक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। अमेरिका के डल्स में कल पहले सेमीफाइनल में स्पेन ने फ्रांस को 2-0 से हराया। फाइनल में स्पेन का मुकाबला अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच आज अटलांटा में होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से होगा। मध्य प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा आज इंदौर से शुरू होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इंदौर से अबुधाबी के लिए पहली सीधी उड़ान को रवाना करेंगे। ये सेवा प्रदेश की नागर विमानन नीति 2026 के तहत शुरू की जा रही है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये उड़ान सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को संचालित होगी। तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम TTD के अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी वेंकैया चौधरी ने भक्तों से अपील की है कि वे श्रीवारी दर्शन, ठहरने की व्यवस्था, अर्जित सेवाओं और अन्य सेवाओं की बुकिंग केवल TTD की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ही करें। श्री चौधरी ने भक्तों को ये भी सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, अनधिकृत वेबसाइटों और बिचौलियों के माध्यम से फैलाए जा रहे झूठे प्रचार का शिकार न बने। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर झारखंड में लापता और अपहृत बच्चों तथा वयस्कों की तलाश और बरामदगी के लिए सभी जिलों में विशेष निगरानी दल का गठन किया जाएगा। पुलिस महानिदेशक के आदेश के अनुसार प्रत्येक जिले में डीएसपी मुख्यालय के नेतृत्व में गठित ये दल लापता मामलों की ट्रैकिंग, जांच और बरामदगी की नियमित निगरानी करेगा। सभी पुलिस अधीक्षक को निगरानी दल गठित कर प्रत्येक 15 दिन में रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया गया है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय अन्वेषण

0: ब्यूरो और पुलिस मुख्यालय स्तर पर होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे भारत के किसानों, उद्यमों, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का आश्वासन, समझौते के अंतर्गत डेयरी उत्पाद, सब्जियां और खाद्य तेल सहित संवेदनशील कृषि उत्पाद पूरी तरह से सुरक्षित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन कल्याण के लिए आयुर्वेद में आधुनिक तकनीकों को अपनाने का आग्रह किया। भारत का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार का आह्वान, आगाह किया सुधार न होने से विश्व में इसके प्रति लोगों का विश्वास कमजोर होगा। उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी। और फीफा विश्व कप में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का आज रात दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से सामना होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे।

0: हवाएं से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्जेंट कॉन्फ्रेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे, और इसकी अगली पेशकश लीजिए सुनिए।

0: फिल्म वक्त से अभी आप ये गीत सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाजों में। साहिर लुधियानवी ने इसे लिखा और रवि का संगीत।
1: वो लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
2: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य की स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
1: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं प्रोग्राम सदाबहार नगमे।

लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे श्री 420 से। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, शंकर जयकिशन की तर्ज थी।

गाइड फिल्म से आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और सखियों को। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा था, एसडी बर्मन की तर्ज थी। और इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम सदाबहार नगमे यहीं संपन्न होता है।

0: सहेली सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। मंजरी आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सोनाली जी आपको और सुनने वाले हमारी सभी सखियों को और श्रोता भाइयों को प्यार भरा मंजरी का नमस्कार। और थोड़ा सा आप कहेंगे अच्छा अच्छा सा भीनी भीनी हवाएं आए सब तरफ और बादल भी आए, जहाँ पानी नहीं बरस रहा वहाँ बरसे,
0: ये हम प्रार्थना करते हैं,
1: ये प्रार्थना करते हैं और ये दिली तमन्ना भी है। और देखो ना, बादलों का जो परिवार था ना वो इधर से उधर चला गया,
0: यानी हमारे साथ में लुका छिपी खेल रहे हैं बादल। हाँ, है ना?
1: अभी तो उन्होंने कहा कि नहीं अब यहाँ बहुत बरस लिया, अब चलो चलते कहीं और, तो कहीं और चले गए। लेकिन कभी ना कभी रात में आके थोड़ा बहुत बरस जाते हैं,
0: और जब रुक जाती है बारिश तो हम पसीने से भीग जाते हैं।
1: बिल्कुल, तो मौसम ऐसे ही चल रहा है, लेकिन मौसम में अपनी सावधानियां भी बहुत जरूरी होती है ना।
0: बहुत सावधानी रखना जरूरी है, क्योंकि ऐसा होता है ना जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि छाता रख लिया जाए, फिर ऐसा लगता है छाता फालतू में रख लिया, हमें तो गॉगल रखना था।
1: सही बात है। और देखो इसी के साथ हम लोग अपने विषय की ओर भी बढ़ चलते हैं। वो भी हमें ध्यान रखना है कि भाई आज तो मकई के व्यंजन के बारे में बातें होंगी। हमारे साथियों ने बहुत सारी चीजें लिखकर भेजी है।
0: हाँ, बहुत सारे हमारे साथियों ने मकई के व्यंजन लिखकर भेजे हैं, पर जब झमाझम बारिश होती है ना उसी वक्त वो मकई के व्यंजन खाने में और भी आनंद आ जाता है। हालांकि बाजार में बहुत सारी नरम नरम मुलायम सी मकई के दाने आ चुके हैं, तो जब बारिश गिरेगी ना तो उस वक्त हम मकई के पकौड़े बनाएंगे, उसकी चाट तो बनती ही है, और बहुत सारे मीठे व्यंजन भी मकई के बनते हैं। जैसे हमारे
1: मकई का हलवा, मकई का सूप बनता है,
0: मकई की खीर।
1: हाँ, यानी अनंत है। और फिर देखो हमारे बातें होंगी पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र, ये भी बड़ा प्यारा सा विषय है और सबके विचार भी आ गए हैं, तो आप भी बता सकते हैं कि आपका कौन सा प्यारा सा पड़ोसी है, अच्छा मित्र है, ये भी बता सकते हैं।
0: और साथ में मंजरी जब पड़ोसी का जिक्र चलता है तो व्यंजन जो है ना कटोरी में डाल के पड़ोसियों को भी दिए जाते हैं,
1: होता है। और साथ में कभी कभी चीनी खत्म हो गई, चाहे इसका भी तो
0: और वो थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा, पर उसमें जो प्यार होता था ना, उसमें जो उस उनकी जो छोटी सी एक कटोरी भर के जो व्यंजन आता था ना, उससे जो हम इतने हम घर में भी लड़ाई होती कि अरे थोड़ा मेरे लिए भी रखना। वो आंटी जो पड़ोस वाली आंटी, उनकी जो फलानी फलानी सब्जी है वो बहुत अच्छी लगती है, तो ये आदान प्रदान फिर से अगर शुरू हो जाए तो उसमें क्या बात होगी।
1: नहीं, कहीं कहीं पे तो देखो सोनाली होता भी है, अभी भी हमारे जो अच्छे अच्छे पड़ोसी होते हैं वो एक दूसरे को कुछ ना कुछ बना के देते रहते हैं। और शब्द हमारा विचार आपके, इसमें भाई हिम्मत की बात होगी।
0: और जब हम कभी संकट में आ जाते हैं, संकट की घड़ी आप पड़ती है हमारे जीवन में, उस वक्त हमें हिम्मत देने के लिए हमारे पड़ोसी ही सबसे पहले आते हैं।
1: बिल्कुल। और साड़ियों का संसार, इसमें सोनाली आज किस साड़ी की बात करने वाले हम लोग?
0: आज हम अरनी सिल्क की जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे श्रोता भाइयों ने, हमारी बहनों ने इस विषय में भी बहुत सारे कमेंट्स लिखना शुरू कर दिए।
1: अच्छा, अरनी साड़ी को अरनी भी और अरनी दोनों भी बोला जाता है,
0: अरनी भी कहते हैं और अरनी भी कहते हैं
1: जी। और विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं आज हम, तो सबसे पहले तो विश्व युवा कौशल दिवस की सभी को बधाई दे देते हैं कि सब लोग के बच्चे जो है वो अपने अपने हुनर से आगे बढ़े, है ना,
0: और खूब तरक्की करें,
1: खूब तरक्की करें। और हम लोग आगे बढ़ते हैं गीत के साथ,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो हम भी चलते हैं।
1: बिल्कुल, विश्व युवा कौशल दिवस की बात करने वाले हैं और हर वर्ष सोनाली 15 जुलाई को ये मनाया जाता है। इसकी शुरुआत यूनाइटेड नेशंस द्वारा वर्ष 2014 में की गई थी ताकि युवाओं को रोजगार, उद्यमिता और सतत विकास के लिए आवश्यक कौशलों के महत्व के प्रति जागरूक किया जा सके। पहले की शिक्षा में और आज की शिक्षा में बहुत बदलाव हुआ है। आज इतने सारे तकनीकी कोर्स उपलब्ध हो गए हैं कि युवाओं को बेहतर करियर के लिए वो उनको अपनी रुचि अनुसार चुन सकते हैं। जैसे पहले होता था ना कि शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और बैंक जॉब के बारे में या बिजनेस कर लेंगे या दुकान खोल लेंगे जैसा सोचा जाता था। इनके अलावा भी बहुत से कोर्स हैं, लोगों की सोच बदली है क्योंकि आज इंटरनेट जुड़ गया है जिसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को रोजगार परक एवं तकनीकी कौशल प्रदान करना। यानी कि समय के साथ साथ बदलाव हुआ है और हमारे युवाओं ने भी, युवतियों ने भी इस चीज़ को स्वीकारा है।
0: ये बहुत अच्छी बात आपने कही और कौशल विकास के माध्यम से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। साथ ही युवाओं को कुछ कौशल सीखने चाहिए, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल की बात की जाए तो संचार कौशल, यानी अपनी बात स्पष्ट और प्रभावी ढंग से कहना और दूसरों को ध्यान से सुनना। साथ ही डिजिटल कौशल, यानी डिजिटल स्किल की बात की जाए तो उसमें कंप्यूटर है, फिर इंटरनेट है, ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन सुरक्षा है और नई तकनीकों का उपयोग करना। साथ ही एआई की समझ, एआई टूल्स की जिम्मेदारी से उपयोग और उसकी उत्पादकता को बढ़ावा देना।
1: बिल्कुल, और समस्या समाधान और तार्किक सोच, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व कौशल, लीडरशिप स्किल्स की बात की जाती है तो टीम का मार्गदर्शन करना और जिम्मेदारी निभाना भी युवाओं के लिए बहुत जरूरी है। और टीम वर्क, दूसरों के साथ मिलकर काम करना और सहयोग की भावना रखना, इस तरह की जो स्किल्स हैं वो भी बहुत मायने रखती है। और समय प्रबंधन, समय का सही उपयोग कर लक्ष्य, समय पर जो लक्ष्य होता बांधा किया जाता है उसको पूरा करना होता है।
0: और साथ ही वित्तीय साक्षरता, यानी फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी बजट बनाना, बचत, निवेश और धन का सही प्रबंधन। साथ ही उद्यमिता, यानी नए विचारों को व्यवसाय में बदलने और रोजगार सृजित करने की क्षमता रखना। साथ ही रचनात्मकता और नवाचार, यानी नए विचारों पर काम करना, अलग अलग सोच को विकसित करना। और साथ ही इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता, यानी अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना और संतुलित व्यवहार करना।
1: बिल्कुल, और सुनाली इसके साथ साथ भाषा कौशल, हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी या अन्य भाषाओं का ज्ञान, अनुकूलन क्षमता, यानी बदलती परिस्थितियों और नई तकनीकों के साथ स्वयं को बदलना या ढालना, प्रस्तुतिकरण और सार्वजनिक भाषण, यानी आत्मविश्वास के साथ लोगों के सामने अपने विचार रखना, जीवन कौशल, लाइफ स्किल्स, अनुशासन, ईमानदारी, आत्मविश्वास, धैर्य, निर्णय क्षमता और सकारात्मक सोच को समझना। आज युवाओं के लिए केवल डिग्री पर्याप्त नहीं है बल्कि ऐसे कौशल भी आवश्यक हैं जो उन्हें आत्मनिर्भर और सक्षम और सफल बना सके।
0: और वैसे ही होता है ना कि आजकल पढ़ाई के साथ साथ माता पिता जो बच्चे 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड में आ गए कि इस तरह के उन्हें कोचिंग भी के लिए भी भेजते हैं ताकि जो बचपन से ही ये सारी क्षमताएं वो डेवलप लेते हैं, अगर विकसित कर लेते हैं तो आगे चल के उन्हें नौकरी में बहुत फायदा होता है। और इसी तरह की बात हमारे साथी ने भी लिखा है कि विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जुलाई को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को रोजगार, अच्छे कार्य, उद्यम के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक कौशल से प्रशिक्षित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2014 को एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया था और प्रतिवर्ष इस दिन को मनाने की घोषणा की गई।
1: बिल्कुल, और एक साथी हमारे लिखते हैं कि आज के समय में केवल शैक्षिक डिग्री ही नहीं बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक कौशल भी सफलता की कुंजी बन चुके हैं। कंप्यूटर, संचार, तकनीकी शिक्षा, उद्यमिता और डिजिटल कौशल युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करते हैं। भारत में स्किल इंडिया मिशन और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसे पहले इसी दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। विश्व कौशल दिवस का संदेश है, कौशल ही आत्मनिर्भरता और उज्जवल भविष्य की पहचान है। तो अपनी स्किल्स को पहचान
0: डेवलप करना चाहिए।
1: और एक साथी ने और भी लिखा है कि कुकिंग स्किल्स से तकनीकी का उपयोग करके भी आप लाभ उठा सकते हैं,
0: बहुत लाभ उठा रहे हैं। कितनी सारी गृहणियां जो है वो अपनी कुकिंग स्किल, पहले जो पुराना जमाना हुआ करता था ना कि हम सिर्फ घर में ही खाना बनाते थे, पर आज जो अलग अलग प्रांत के लोग जो है वो दूसरे दूसरे प्रांत की डिशेस खाना पसंद कर रहे हैं और जिससे ना गृहणियां हैं जिनमें कुकिंग की स्किल है उन्हें भी रोजगार मिल रहा है।
1: बिल्कुल, और जो हमारी जो लड़कियां भी हैं वो भी अच्छी अच्छी क्वालिफाइड हैं, एजुकेशन अच्छी है, लेकिन उसके बाद भी वो अच्छी अच्छी डिशेस बना के कुकिंग स्किल्स को बढ़ावा देकर के कुछ ना कुछ अपना आर्थिक रोजगार अपने लिए आर्थिक धन
0: कमा रही हैं
1: तो कहना चाहिए कि आपके अंदर जो भी गुण है, जो भी शौक है, आप उसको आगे बढ़ाइए और अपनी आर्थिक मदद आप परिवार को भी कर सकते हैं और खुद भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा है।
0: यानी बस अपने अंदर झांक कर देखने की जरूरत है कि हमारा ऐसा कौन सा प्लस पॉइंट है जिसमें हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं या पैसा कमा सकते हैं। और हम अब आगे बढ़ेंगे गीत के साथ
1: जी।

0: तो सुनाली बहुत प्यारा सा ये गीत था। तो जैसे इन्होंने कहा कि तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, तो इसी तरह हम सखियों में सखी सहेली में भी हम दोनों सखियों का भी ऐसे ही रहता है कि एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा के हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं।
1: और जब हम साड़ी पहनते हैं
0: फिर उस भी एक दूसरे की तारीफ से, उस समय भी एक दूसरे की तारीफ करते हैं
1: और हमें तालमेल भी बहुत बिठाना पड़ता है।
0: बिल्कुल। आज हम बात करने वाले हैं अरनी सिल्क साड़ी की, जिसे अरनी या अरनी भी कहा जाता है। अरनी सिल्क साड़ी भारत के प्रसिद्ध पारंपरिक रेशमी साड़ियों में से एक है। इसका निर्माण मुख्य रूप से तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले के अरनी नगर में किया जाता है। ये साड़ी अपनी बेहतरीन बुनाई, शुद्ध रेशम, आकर्षक रंगों, टिकाऊ गुणवत्ता और शानदार जरी के काम के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत की सांस्कृतिक पहचान मानी जाने वाली ये साड़ी आज देश विदेश के फैशन प्रेमियों की भी पसंद बन चुकी है।
1: और अरनी में रेशमी साड़ियों की बुनाई का इतिहास लगभग 300 से 400 वर्ष पुराना माना जाता है। विजयनगर साम्राज्य और उसके बाद के शासकों के समय इस क्षेत्र में रेशम उद्योग को विशेष संरक्षण मिला था और समय के साथ यहाँ के बुनकरों ने अपनी पारंपरिक कला को नई तकनीकों के साथ जोड़ा, जिससे अरनी सिल्क साड़ियों की अलग पहचान बनी है। आज भी अरनी में अनेक परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी इसी शिल्प से जुड़े हुए हैं और ये कला केवल आजीविका का साधन नहीं है बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत भी है।
0: बिल्कुल। और अरनी सिल्क साड़ी का निर्माण कई चरणों में पूरा होता है, जैसे रेशम का चयन, उच्च गुणवत्ता वाले मलबेरी शहतूत रेशम का उपयोग किया जाता है, धागों की रंगाई, रेशम के धागों को विभिन्न आकर्षक और टिकाऊ रंगों में रंगा जाता है, ताना बाना तैयार करना, करघे पर धागों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित किया जाता है और जरी का उपयोग असली या उच्च गुणवत्ता वाली जरी के बॉर्डर और पल्लू बुने जाते हैं
1: और साथ ही हाथ करघे पर बुनाई की जाती है। अनुभवी बुनकर कई दिनों तक मेहनत करके एक साड़ी तैयार करते हैं और तैयार साड़ी की मजबूती, रंग और डिजाइन की जांच की जाती है और एक उत्कृष्ट अरनी साड़ी बनने में मंजरी 7 से 20 दिन तक और जबकि जटिल डिजाइन वाली साड़ियों में इससे भी अधिक समय लग सकता है। और इस साड़ियों में चौड़े और आकर्षक जरी बॉर्डर होते हैं जिनमें मंदिर, मोर, आम, कमल, बेल बूटे और ज्यामिति डिजाइन होती है और ये साड़ी वजन में बहुत हल्की होती है और जिसके कारण लंबे समय तक पहनने में आरामदायक होती है, साथ ही मजबूत बुनाई के कारण वर्षों तक सुरक्षित रहती है।
0: और तमिलनाडु में विवाह, धार्मिक उत्सव, समारोह और पारिवारिक आयोजनों में अरनी सिल्क साड़ी विशेष रूप से पहनी जाती है। ये शुभता, समृद्धि और पारंपरिक भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। दक्षिण भारतीय दुल्हनों के विवाह संग्रह में इसका विशेष होता है सोनाली। और अरनी के हजारों बुनकर इस पारंपरिक उद्योग से जुड़े हैं। वे आधुनिक डिजाइनों को अपनाते हुए भी अपनी प्राचीन बुनाई शैली को संरक्षित किए हुए हैं। उनके धैर्य, मेहनत और कलात्मक कौशल के कारण ही अरनी सिल्क साड़ी विश्व भर में सम्मान प्राप्त कर रही है
1: और साथ ही स्थानीय स्तर पर हजारों लोगों को रोजगार मिलता है। भारत के विभिन्न राज्यों और विदेशों में इन साड़ियों का निर्यात होता है और तमिलनाडु के हस्तकरघा उद्योग और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ये साड़ियां सशक्त बनाती है। महिला स्वयं सहायता समूह और सहकारी समितियां भी इस उद्योग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अरनी साड़ियों को केवल ड्राई क्लीन करवाना चाहिए और सूती कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए और सीधे धूप में लंबे समय तक ना रखें। अरनी साड़ियों को धोना बिल्कुल नहीं है।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानकारी दी सुनाली तुमने। और समय समय पर साड़ी को मोड़ बदलते रहने, जो तह होती है उसको बदलते रहना चाहिए ताकि रेशम और जरी सुरक्षित रहे। अरनी सिल्क साड़ी केवल एक परिधान नहीं बल्कि भारतीय हस्तकरघा परंपरा, उत्कृष्ट शिल्प कला और सांस्कृतिक गौरव का जीवंत प्रतीक है। इसकी बारीक बुनाई, शानदार रंग संयोजन और आकर्षक जरी का काम इसे भारतीय रेशमी साड़ियों में विशिष्ट स्थान दिलाता है
1: और ये साड़ी हमें उन कुशल बुनकरों की अथक मेहनत और सदियों पुरानी कला की याद दिलाती है जिन्होंने अपनी विरासत को आज भी जीवित रखा है। इसलिए अरनी सिल्क साड़ी भारतीय संस्कृति और हस्तशिल्प की एक अमूल्य धरोहर मानी जाती है
0: और हम सभी सखियां जो है वो अपने अपने वार्डरोब में चेक कर ले कि ये साड़ी है कि नहीं है
1: और नहीं है
0: तो खरीद ले। और फिलहाल ये सुने, गीत
1: सुनते हैं।

0: तो सुनाली देखो कितनी अच्छी सी बातें इस गाने में भी थी है ना,
1: कि जब हमारी कोई सहेली साड़ी पहन के जाती है तो अब अगर हम बोले कि क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, तो वो कितनी खुश हो जाती है ना।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखो आज भी जब आई थी तो हम लोग ऐसी ही बातें कर रहे थे ना। साड़ी तो नहीं लेकिन हाँ कुर्तों पे हम लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। ऐसी बातें हो जाती है जब सखियां मिलती है,
1: यानी जो छोटी से जो तारीफ, जो छोटा सा शब्द है ना, ये हम सभी का मनोबल कई गुना बढ़ा देता है। तो बीच बीच में से तारीफ करते रहना चाहिए।
0: तारीफ करने के लिए भी देखो बड़ी हिम्मत कलेजा चाहिए रहता है, या फिर किस तरह से
1: हमारी हिम्मत बढ़ जाती है,
0: हमारी हिम्मत भी बढ़ जाती है। और हम अभी हम लोग बात भी करेंगे हिम्मत के विषय में, कि हिम्मत कैसे अपने अंदर रखनी चाहिए कि हर मुसीबत का सामना भी हम अच्छे से कर सके। तो हमारे बहुत सारे विचार आ ही चुके हैं। तो अब अंतराल का समय हो चुका है, तो लेते हैं अंतराल।

0: अंतराल के बाद हम हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली
1: सहेली, और हम लोग बात करने वाले हैं शब्द हमारा विचार आपका। इसमें हम लोग हिम्मत के बारे में बात करने वाले हैं। तो सोनाली, देखा जाए जब भी हम हिम्मत की बात करते हैं
0: जी,
1: तो केवल कठिन समय में आगे बढ़ने का नाम हिम्मत नहीं है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति भी है। और हर जगह हिम्मत दिखाना समझदारी नहीं होती, जहाँ विवेक और धैर्य की आवश्यकता हो वहाँ केवल साहस नहीं बल्कि संयम भी जरूरी होता है। हिम्मत कहाँ कहाँ रखनी चाहिए सच्चाई का साथ देने में, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, गलत के खिलाफ आवाज उठाने में, अन्याय और अत्याचार को चुपचाप सहन नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमें हिम्मत उठानी, हिम्मत दिखानी चाहिए, और अपने सपनों को पूरा करने में भी हिम्मत दिखानी चाहिए। असफलताओं से घबराकर हार नहीं माननी चाहिए।
0: ये तो बहुत सही बात आपने कही। और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो दीपक है जो अंधेरों में भी जलता है, हर मुश्किल के सामने सीना तान कर चलता है, राहों में चाहे कितने भी तूफान आ जाए हिम्मत वाले कदम पीछे नहीं हट पाए, गिरकर उठना फिर आगे बढ़ जाना, सपनों को सच करने का यही अफसाना है। जो डर को अपनी मंजिल के बीच न आने दे वही इंसान सफलता का आसमान छू ले। हिम्मत से ही जीवन में नई राहें बनती है, इसी से जीत की खुशियां और उम्मीदें बनती हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि जिसके पास हिम्मत होती है उसके लिए असंभव भी एक दिन संभव बन जाता है। हिम्मत वो आवाज है जो हर हार के बाद भी कहती है एक बार और कोशिश करो। ये तूफानों से लड़ना नहीं बल्कि उनके बीच मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना सिखाती। बहुत सुंदर सी बात लिखकर हमारे साथियों ने भेजी है।
0: एक साथी कहते हैं कि हिम्मत का अर्थ केवल शारीरिक बल से नहीं बल्कि एक मानसिक और आत्मिक शक्ति है। जब व्यक्ति मानसिक रूप से हार मानने से इनकार कर देता है तो वही उसकी असली हिम्मत कहलाती है। ये डर की अनुपस्थिति नहीं बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने का नाम है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और संघर्ष हमें नया अनुभव देते हैं। हिम्मत रखने वाले लोग इन अनुभवों से अपने भविष्य की नई कहानी लिखते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण, सकारात्मक और प्रेरणादायक विचार आपके भीतर हिम्मत की एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं।
1: बिल्कुल। और हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत शब्द का अर्थ साहस, बहादुरी और हौसला होता है। हम बोलचाल की भाषा में इसका बहुत आयत प्रयोग करते हैं, हम तो हिम्मत हार गए, या इस फैसले से हमारी हिम्मत बढ़ गई। ये व्यक्ति कि वो मानसिक शक्ति है जो उसे किसी कठिन परिस्थिति, डर या खतरे का निडरता से सामना करने और बड़े संकल्प को पूरा करने की प्रेरणा देती है। डर पर काबू पाने की क्षमता साहस को दर्शाता है। किसी मुश्किल काम को करने का पक्का इरादा, जब कोई दिलेरी पराक्रम की बात होती है, इसे पराक्रम, दिलेरी, शौर्य, जीवट भी कहा जाता है।
0: एक साथी कहते हैं, एक मुहावरा है, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। अगर हम कोई असंभव कार्य करने की हिम्मत करते हैं तो खुदा यानी ईश्वर जरूर मदद करेगा। बस आप को खुद पर विश्वास रखते हौसला बढ़ाए रखना है। फिर वो व्यापार करने वाले हो, कारोबारी हो, पढ़ाई कर रहे हो, विद्यार्थी हो, हिम्मत से जीवन नया पार लगा सकते हैं।
1: और एक हमारे साथी लिखते हैं कि हिम्मत वो आंतरिक शक्ति है जो इंसान को विपरीत परिस्थितियों में भी मजबूत बनाए रखती है। ये डर को खत्म नहीं करती बल्कि डर की मौजूदगी में इंसान को आगे बढ़ने का हौसला देती है। इसी से इंसान को सफलता मिलती है। हिम्मत वो सीढ़ी है जो हार को भी जीत में बदल देती है। बहुत सुंदर सी बात है कि हिम्मत अगर होगी, अगर उसकी सीढ़ी पर हम चढ़ गए तो हमारी हार जो होती है ना वो भी जीत में बदल जाती है। और हिम्मत तो हमें देखो दिखानी पड़ती है। अभी कोई नया काम हम सीखते हैं, नहीं सीखना चाहते, जैसे वाहन चलाना, स्कूटर चलाना या कार चलाना है, तो हमें हिम्मत तो दिखानी ही पड़ती है, तभी हम सीख सकते हैं।
0: बच्चों को भी हमें हिम्मत देना पड़ता है। जब नए नए बच्चे चलना सीखते हैं तब भी डरते हैं, पर माँ जब उसे थाम लेती है कि डरो नहीं, हम हैं साथ में, तो वही हिम्मत उसकी ताकत बन जाती है।
1: बिल्कुल। इसी तरह बच्चे जब पढ़ने वाले होते हैं, स्कूल जाने वाले होते हैं, तो वो किताबें देख के डरते हैं, विषय देख के डरते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता, तो उन्हें हिम्मत दिखानी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि देखो अभी हम समझाते हैं, तुम समझ जाओगे, डरो मत, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, दिमाग पर जोर मत दो, आराम से सुनो। ऐसी बातें करते तो उनकी हिम्मत और बढ़ जाती है, हौसला बढ़ जाता है, तो वो हर चीज कर लेते हैं।
0: परीक्षा के समय में भी हिम्मत जुटाते हैं ना हम, हिम्मत बढ़ाते हैं बच्चों की, विद्यार्थियों की, देखो घबराओ नहीं, परीक्षा अच्छे से देना। अगर किसी ने पीठ पर हाथ थपथपा दी कि देखिए तुम अच्छा कर रहे हो, परिणाम अच्छे ही होंगे, और अगर परिणाम इधर उधर हो भी गए तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस तरह से अगर कोई हमारे इर्द गिर्द हिम्मत बढ़ाने वाले लोग होते हैं ना, तो हमारा जीवन बहुत सुंदर होता है।
1: बिल्कुल सोनाली, और इसी के साथ साथ हमारे एक साथी और लिखते हैं, हिम्मत साहस हौसला इसके कई रूप है। बड़ी से बड़ी स्थिति को डट कर सामना करना हिम्मत का काम है। किसी भी गलत बात के लिए आवाज उठाना बहुत हिम्मत का काम है। अपने मन की ना सुनकर सही राह पर चलना भी हिम्मत का काम है। कोई बात किसी की ना पसंद आए, सही ना लगे, उसको मना करना, ये भी बहुत हिम्मत की बात है। हिम्मत के रूप तो कई हैं। बचपन में तो मम्मी के सामने कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं हुआ करती थी। अगर गलती करते थे तो डांट पड़ जाती थी, तो चुप रहकर सुन ही लेते थे। हिम्मत नहीं हुई तो सर नहीं होती थी सर उठाने की।
0: यानी पुराने जमाने की बात ही कुछ और हुआ करती थी।
1: देखिए मम्मी ही नहीं भाई, पापा लोग से, पिताजी लोग से भी बड़े
0: उनकी आंखों से ही डरते थे।
1: उनकी आंखों से डरते थे। तो ये बात थी कि उस समय हम लोग अगर वो कुछ कहते थे तो हिम्मत नहीं होती थी कि हम उन्हें जवाब दें। आजकल पलट के जवाब सुनने को मिल जाता है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं होता था। तो ये तो एक ऐसी आदतों की बात होती है, लेकिन हिम्मत अगर आपके अंदर है, हौसला है, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और हमारे फौजी भाइयों और सिपाहियों सैनिकों में बहुत हौसला होता है, हिम्मत होती है कि सरहद पर खड़े होकर वो दुश्मनों से हमारी रक्षा करते हैं और देश के प्रति अपनी हिम्मत और जज्बे को दिखाते हैं। तो उनको हमें बहुत बहुत सलाम नमस्कार करना चाहिए
0: और गीत सुनना चाहिए।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई देखो सोनाली, अब हमारी बात होने वाली है पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र। इस पर हमारे साथी लिखते हैं कि इसका जवाब एक लाइन में नहीं है। पड़ोसी हो सकते हैं सच्चे मित्र, पर होते ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं। रात 2 बजे तबीयत बिगड़े उस समय दोस्त और रिश्तेदार फोन पर होंगे, पर पड़ोसी दीवार के उस पार हर दिन की छोटी छोटी जरूरतें आपसी रिश्ते को गहरा करती हैं। लेकिन यही पड़ोसी मित्र कब नहीं बन पाते, जब सिर्फ दीवारें साझा हों पर दिल नहीं। ईर्ष्या, राजनीति, शोर शराबा या दखलंदाजी से पड़ोस का रिश्ता खराब भी हो सकता है, तब वो सिर्फ फ्लैट नंबर बनकर रह जाते हैं। पड़ोसी अपने आप में मित्र नहीं होते, उन्हें मित्र बनाया जाता है। एक नमस्ते, एक कप चाय, त्योहार पर एक प्लेट मिठाई, बस इतनी पहल से दीवारों के बीच का रिश्ता भी दिल का रिश्ता बन जाता है। वाकई में जब कोई दिक्कत होती है तो एक दूसरे के ही काम आते हैं हमारे पड़ोसी, जो भी होते हैं, सब किसी के भी पड़ोसी हैं, वो एक दूसरे के काम ही आते हैं। तो उनके साथ अपना संबंध बना के रखिए, क्योंकि रिश्तेदार तो दूर होते हैं, अचानक आपको दिक्कत आएगी तो वही आपके काम आएंगे, और आप उनको दिक्कत आती तो आप उनके लिए मदद के लिए खड़े हैं।
3: हमारे एक साथी लिखते हैं मंजरी कि ये सच है कि पड़ोसी हमारे लिए रिश्तेदार से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपदा के समय रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही काम आते हैं। हमारे साथ तो पड़ोसी के संबंध को प्रगाढ़ बनाने में उनके सबसे छोटे बच्चे ने बड़ी भूमिका निभाई है। 3-4 महीने से लेकर अब 1.5 साल का होने तक वो बच्चा हमारे साथ ऐसा घुल मिल गया है कि अब अपने घर से ज्यादा हमारे साथ रहता है। सुबह, दोपहर, शाम, देर रात कभी भी दादी बाबा कहते हुए दरवाजे पर आ जाता है, और हम भी उसके भोलेपन के व्यवहार से ऐसे बन चुके हैं कि सब काम छोड़कर उसे बुला लेते हैं, और फिर हमारे घर में उसकी छोटी छोटी शरारतों से एकदम से रौनक आ जाती है। उस बच्चे ने अपने निश्चल और नटखट प्रेम से हम दोनों परिवारों को एक साथ बांध दिया है। क्या बात है, बहुत सुंदर।
2: और एक साथी और लिखते हैं कि पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र ही नहीं बल्कि सच्चे रिश्तेदार भी हैं, क्योंकि जब भी हमें कुछ प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले हमारे पड़ोसी हमारी मदद के लिए पहुंचते हैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, मुझे 4 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। वहां से लौटने के बाद बहुत परहेज वाला खाना खाने को कहा गया। मेरे घर के सामने वाली आंटी ने रोज कुछ ना कुछ बनाकर मेरे लिए

0: भेजती थी ताकि मेरी मम्मी को ज्यादा परेशानी ना हो। मना करने पर बोलती थी कि जब मुझे जरूरत होती है तब तुम भी तो जी जान से सेवा करती हो। वाकई में एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार रहेगा तो आपका घर परिवार और आपके अगल बगल से लेकर पूरा मोहल्ला भी खुशहाल रहेगा, क्योंकि सबके पड़ोसी ऐसे हो जाएं तो।
1: एक साथी ने लिखा है कि पहले सगो पड़ोसी, सगे संबंधी तो दूर दूर रहते हैं, इस बात पर यह कहावत पड़ी होगी कि सगा पड़ोसी, इसलिए जो अच्छे संबंध हो तो वो ही पहले सुख दुख में भागीदार बनता है, इसलिए पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए।
0: बिल्कुल। और एक साथी हमारे लिखते हैं कि एकल या विभक्त कुटुंब पद्धति में अब पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र तथा रिश्तेदार बन रहे हैं। जी हाँ, कभी कभी वो हमारी प्राइवेसी को जरूर डिस्टर्ब कर देते हैं, परंतु सुख दुख और आपातकालीन संकट में वो ही तो सबसे पहले हमारे काम आते हैं, सहारा बन जाते हैं। बदलती समाज व्यवस्था में पड़ोसी जीवन का अहम हिस्सा है, त्योहारों की रौनक और सुख दुख के सच्चे साथी बन गए हैं। थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में होते हैं, उन्हें भूल जाना चाहिए। दरवाजे से दरवाजा जुड़ा है, जुड़ा रहे दिलों तार, खुशी गम और हर मुश्किल में काम आते हैं पड़ोसी मित्र बार बार, क्या बात है।
1: एक साथी लिखते हैं, पड़ोसी हमारे सबसे निकटतम सहयोगी और सच्चे मित्र होते हैं। आपातकाल में दूर बैठे रिश्तेदारों से पहले पड़ोसी ही उपलब्ध होते हैं। एक अच्छा पड़ोसी सुख दुख साझा कर जीवन को सुरक्षित बनाता है। और पड़ोसियों के या पड़ोस धर्म के बारे में हम अधिक पढ़ सकते हैं। यदि आप पड़ोसियों के साथ अपने संबंधों को और बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या आप जानना चाहेंगे एक दूसरे के साथ तालमेल और सद्भाव कैसे बढ़ाएं? त्योहारों और समारोहों में सहयोग के तरीके, किसी भी अनबन को सुलझाने के उपाय हम जान सकते हैं। भैया एक उसमें कटोरी में डाल के कुछ मिठाई दे दी, हाँ। तो पड़ोसी भी ये जो संबंध जो है ना प्रगाढ़ करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये छोटा सा बर्तन।
0: बिल्कुल सही बात है। और एक साथी लिखते हैं, सोनाली, पड़ोसी हमारे सच्चे मित्र हैं। अब ये बहुत अचंभित और कहानी सुनने जैसी बात लगती है। ऐसा नहीं कि पड़ोसी नहीं है, पड़ोसी आज भी है, पर आज की जो जेनजी अपनी दुनिया में खोए हुए हैं, प्राइवेट कॉलोनी में अब ये दूरियां बढ़ गई हैं, फ्लैट और सोसाइटी में ये दिखाई देती। मैंने कोरोना काल में प्राइवेट कॉलोनियों में को भी देखा और सोसाइटी और फ्लैट के सिस्टम में भी देखा है। फ्लैट वाले बहुत अच्छे पड़ोसी साबित हुए प्राइवेट कॉलोनियों के हिसाब से। हमारे जमाने की वो पड़ोसी नहीं कि किसके घर की दाल में आज कौन से मसाले की छौंक पड़ी है, वो भी पता चल जाता था और कहने पर बड़ी सौंधी सुगंध आ रही है तो कटोरी दाल भी आ जाती थी। या अगर कोई दो दिन नहीं दिखाई दिया तो तीसरे दिन आपके घर आकर उनसे पूछ लिया गया, आप दो दिन से दिखाई नहीं दे रहे, क्या बात है। ये भावनात्मक लगाव खत्म हो गया है जो सचमुच चिंतनीय है। बहुत इन्होंने पते की बात,
1: बहुत सही बात की। और खासकर शहरों में बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, छोटे शहरों में और गांवों में अभी भी लोग पड़ोसियों के घर हक से जाकर बैठते हैं, हक से खाना खाते हैं, वहीं पर रह भी जाते हैं। पर यहाँ पे शहरों में बहुत ही गंभीर परिस्थिति आ चुकी है। पर इस गंभीर परिस्थिति को हम हल्का करेंगे गाना सुनकर। जी,

0: तो भाई देखो सुनाली, तुम आई तो मैं सोच रही थी आज तो तुम पक्का मुझे मकई के कुछ कुछ व्यंजन खिलाओगे, लेकिन तुम लाई नहीं। चलो हम रेसिपी पढ़ के संतुष्टि
1: भाई बारिश तो गिरने दो, उसके बाद में हम कुछ, बारिश गिरने के बाद ही मकई खाने का आनंद
0: आता है ना। चलो रेसिपी पढ़ के अपनी भूख को शांत कर लेते। हमारे साथी ने लिख कर भेजा है मकई की चाट, इसकी सामग्री नोट कीजिएगा। एक डेढ़ कप या दो कप स्वीट कॉर्न या देसी भुट्टे के दाने। सब्जियों में आपको लेना है एक छोटा प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्च। और मसाले में आपको लेना है एक छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और नमक आपके स्वाद के अनुसार, काला नमक या आप सादा नमक भी ले सकते हैं। और इसमें एक बड़ा चम्मच मक्खन लेना है आपको, एक बड़ा चम्मच नींबू का रस और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसको बनाने की विधि है कि आप भुट्टो को उबाल लें एक पैन या बर्तन में, पानी डाल करके कॉर्न के दाने आप 5 से 10 मिनट उबालिए और इसको छान लीजिए। तड़का लगाने का के लिए आपको एक पैन में मक्खन गर्म करना है, उसमें उबले हुए कॉर्न 1-2 मिनट के लिए भूने। आप बिना भुने भी इसका चाट, इसकी चाट बना सकती हैं। और इसमें मसाला मिलाए जो आपने फ्राई किया है उसको मसाला मिलाए। एक बड़े कटोरे में गर्म या सामान्य कॉर्न ले और इसमें सभी कटी हुई सब्जियां, प्याज टमाटर हरी मिर्च और मसाले, चाट मसाला जीरा पाउडर लाल मिर्च नमक आदि डालें, मिला लें। नींबू का रस डाल दें, हरा धनिया डालकर अच्छी तरह से आप मिलाएं और ये आपकी चटपटी मसालेदार कॉर्न चाट तैयार होगी।
1: यानी जो लोग डाइटिंग करते हैं वो भी खा सकते हैं।
0: बिल्कुल खा सकते हैं, अनार के दाने भी आप डाल सकते हैं और पड़ोसियों को चाहते हैं आप, है ना।
1: और मकई का हलवा बनाने की विधि लिखकर भेजी है कि ताजे नरम कच्चे भुट्टे के दाने को मिक्सी में से पीस ले, फिर एक पैन में घी गरम करके भुना हुआ मकई का पेस्ट डाले। अब तब तक भुने जब तक वो पैन ना छोड़ने लगे, अर्थात पैन में चिपके नहीं। फिर इसमें दूध, चीनी और इलायची पाउडर डालकर गाढ़ा होने तक पकाए। तैयार है पौष्टिक मकई का हलवा। ऊपर से मेवे डालकर हलवा सर्व करें। और इसमें अगर आपने ज्यादा दूध डाल दिया और थोड़े से दाने ऐसे उबले हुए बिना पिसे हुए दाने डाल दे तो मकई की खीर भी बन सकती है।
0: क्या बात है। और एक साथी लिखते हैं कि मेरे घर मकई की सब्जी बनती है, वो कुछ इस तरह से कि सबसे पहले बिना छिलके वाले साबुत मकईयों को हल्दी नमक पानी के साथ कुकर में उबाला जाता है। ठंडा होने पर इसके 1 से 3-4 पार्ट में इसको काटा जाता है। उबली हुई मकईया के टुकड़े प्याज आलू टमाटर की सब्जी में मिलाकर 4 मिनट तक पकाया जाता है ताकि सब्जी का मसाला मक्की के टुकड़ों में आ जाए। ग्रेवी गाढ़ी या पतली आप चाहो तो इसे रख सकते हो। और मकई के दानों की आप बेसन में मिला करके पकौड़े बना लीजिए,
1: है ना। और एक है ना, सखी ने लिखा है कि भुट्टे के दाने का छिलका या चीला, यानी दाने को बारीक पीस ले। अब इसमें कटी हरी मिर्च, नमक, 1-2 चम्मच बेसन या चावल का आटा या सूजी बारीक कटा प्याज मिला ले और तवा पर इसका चीला बनाए। ये बहुत पतले नहीं बनते, थोड़े मोटे रहते हैं। अगर इसमें आप प्याज नहीं मिलाना चाहते तो बिना प्याज के बहुत अच्छी लगती है। चटनी या दही के साथ खाते, पर मैं तो कहूंगी किसी की जरूरत नहीं, खुद ही बहुत स्वादिष्ट और मीठे लगते हैं। और मकई ना दो तरह की आती है, एक पीले रंग की मकई होती है और सफेद। तो पीले रंग के जो दाने होते हैं ना मीठे होते हैं, और सफेद वाले जो होते हैं इतने मीठे नहीं होते, यानी फीके होते हैं। तो जब नमकीन डिश बनाना होता तब सफेद वाले मकई का इस्तेमाल करें तो ज्यादा अच्छा।
0: तुमने बहुत अच्छी सी टिप्स दी है, तो बड़ा स्वाद आ गया इन सब रे व्यंजनों को सुन करके, देख करके और पढ़ करके। तो अब चलो एक गीत सुन लिया जाए।
1: सुनते हैं गीत।

0: तो सोनाली मकई के सूप के बारे में भी बता देते कि मकई के दाने इसकी लेना है आपको, गाजर, शिमला मिर्च, अदरक, काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लोर लेना है और सब्जियों को हल्का भूने पानी में डालकर उबालें, थोड़ा कॉर्न पीस कर मिलाएं ताकि सूप गाढ़ा हो जाए और गर्मा गर्म आप इसको परोसे।
1: अभी जब सर्दियों के दिन आते हैं या फिर जब झमाझम बारिश गिरती है, जब वातावरण एकदम से ठंडा हो जाता है, उस वक्त ये गर्म गर्म सूप जो है ना ये बहुत हमें अच्छा लगता है, बहुत भाता है। भले ही थोड़ी सर्दी हो जाए ना, उस वक्त भी ये सूप दे दे तो बहुत अच्छा लगता
0: बिल्कुल।
1: है
0: बिल्कुल। और सोनाली जब हम किचन में जाते हैं, कुछ नई चीज हमें बनानी पड़ती है, तो उसके लिए हमें अपना कौशल भी दिखाना पड़ता है और साथ में हिम्मत भी बहुत दिखानी पड़ती है कि जो हम बना रहे हैं
1: जी
0: वो सही बनेगा और लोगों को पसंद आएगा कि नहीं आएगा। और जब अच्छी चीज बनती है तो लगता है थोड़ी सी पड़ोसी को दे दे। तो यानी कहना चाहिए कि हमें आज के सारे विषयों को मिलाकर एक अच्छी नई शुरुआत करनी चाहिए, अपने पड़ोसियों को बढ़िया बढ़िया कुछ ना कुछ खिलाते
1: और श्रोताओं को कहते हैं हम धन्यवाद और लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और मंजरी वर्मा का नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुत करता अनुश्री पाठक।
2: सहेली।

सहेली सकरे का सारे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आज के मेहमान ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: दोस्तों नमस्कार। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एक साहित्यकार को जो नाटक भी लिखते हैं, व्यंग्य भी लिखते हैं, कहानियां और उपन्यास भी लिखते हैं। विवेक रंजन जी, विविध भारती के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, विविध भारती के माध्यम से आपको, विविध भारती परिवार को और तमाम श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
1: कैसा लग रहा है आपको स्टूडियो में आकर?
2: बड़ा आत्मीयता का भाव, सारस्वत भाव। और जिस ढंग से नाटक पर मुझे अभी साहित्य एकेडमी, मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी से अवार्ड भी मिला और विविध भारती की पहचान हवा महल से है मेरे जहन में। बचपन से हम लोग 8:15 बजने का इंतजार करते थे और हवा महल का बहुत बड़ा
1: योगदान। अब 8 बजे का समय हो गया,
2: 8 बजे का हो गया। जी हाँ
1: जी, और भी जो बहुत सारे पुराने प्रोग्राम है, छाया गीत, संगीत सरिता, वो अभी भी ब्रॉडकास्ट?
2: जी हाँ जी हाँ, छाया गीत नियमित सुनता था मैं। हाँ। और कहीं हम लंबी यात्रा पर जाते हैं तो FM विविध भारती ही लगा लिया जाता है। और आपको बताऊं ममता जी, हाँ। कि एक दिन बड़ा रोचक प्रसंग हुआ। मेरी जो श्रीमती जी हैं, उन्होंने कहा आज खाना नहीं बनेगा। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अच्छा। बोले FM रेडियो नहीं बज रहा है। अच्छा। और मैं विविध भारती सुनने बगैर खाना नहीं बनाऊंगी। तो ये विविध भारती की लोकप्रियता है और आप जैसी रेडियो सखी, आपकी बहुत सारी छाया गीत मैं बड़े अच्छे से सुनता रहा हूँ और मुझे प्रसन्नता है कि आज आपसे बातचीत हो रही है। आप कहानीकार भी हैं, आप उपन्यासकार भी हैं और साहित्यकार हैं।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। आज तो आपके बारे में चर्चा करनी है तो चलिए शुरू करते हैं सिलसिला। हम सबसे पहले विवेक रंजन जी जानना चाहते हैं आपसे कि ये जल्लाद क्या है, कहाँ से विचार आया ये नाटक लिखने का, इसके लिए पुरस्कार भी मिला आपको?
2: जी हाँ, मुझे मध्य प्रदेश साहित्य एकेडमी ने अभी रिसेंटली जो साहित्य एकेडमी के पुरस्कार डिक्लेयर किए उसमें हरिकृष्ण प्रेमी नाट्य पुरस्कार 51,000 रुपए का है, वो घोषित हुआ है मेरी नाट्यकृति जलनाद पर। और जलनाद कैसे लिखा मैंने, मैं आपको बताऊं, विश्व जल वर्ष था UNO का, तो नार्डिक देशों के लिए एक प्रोग्राम था जिसमें मुझसे ये चाहा गया कि मैं पानी के महत्व को लेकर के कोई पौराणिक आख्यानों को जोड़ करके एक नाटक तैयार करूं।
1: जी।
2: तो मैंने ये विभिन्न जो हमारे धार्मिक या कहें आध्यात्मिक चिंतन वाले ग्रंथ हैं, क्योंकि जैसा आप जानती ममता जी, कि इस सृष्टि का उदय भी पानी से हुआ और जो अंत की परिकल्पना है आध्यात्मिक रूप से वो भी जल प्रलय से है।
1: जी हाँ।
2: आप जानती हैं कि हमारे ऋषि मुनि पानी से ही मंत्र उच्चारित कर श्राप दे दिया करते थे, वरदान दे दिया करते थे। और न केवल भारतीय मनीषा के उसमें, हम इसको वैश्विक परिदृश्य में देखें तो
1: जल ही जीवन है,
2: जल ही जीवन है, पानी का लिए ही तीसरा विश्व युद्ध होगा। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, आज भी कितने सारी कंट्रीज हैं जहां पर शुद्ध पेयजल हम उपलब्ध नहीं करवा पा रहे, जबकि हम विज्ञान से इस कदर प्रगति कर चुके हैं। अभी आपने देखा कि तेल खाड़ी देशों में जो युद्ध हुआ, वहां भी जो समुद्र के पानी को शुद्ध करके पेयजल बनाया जाता है, तो वो एक बड़ी समस्या थी कि अगर उन पानी के संयंत्रों पर बिजली की कमी या कोई के कारण से पानी नहीं बन पाएगा तो जीवन के लिए संकट उपस्थित हो सकता है। तो पानी का महत्व निर्विवाद है।
1: तो इसमें ये जो नाटक है ये जलनाद, इसमें कैसे पात्रों का चयन किया आपने, संवाद कैसे गढ़े, कहां से आपके पास आइडिया आया,
2: इसमें
1: क्या रिसर्च किया आपने?
2: जी हाँ, मैंने इसमें बहुत सारी रिसर्च करी और पानी से संबंधित जितने दृष्टांत मुझे मिलते चले गए उनको नाट्य रूपांतर में मैं बदलता रहा। तो 12 इसमें नाटक हैं। जैसे

0: मैं एक कविता का एक छोटा सा अंश प्रस्तुत करूं जो मैंने ऋग्वेद से, जो हमारा एक ऋग्वेद का मंत्र था जिसमें जल देवता को संबोधित करते हुए बात की गई है।
1: हाँ।
0: तो मैं उससे एक, जो उसका हिंदी मैंने भाव अनुवाद किया है, एक अंतिम पैरा पढ़ देता हूँ। हे जल के देवता, मेरा आचरण अब तेरे जैसा हो, तेरा रसायन मेरे पोर पोर में समा जाए। तू प्रवाहमान अग्नि है, तू आ मुझे तेजस्वी बना, वर्चस्व प्रदान कर। जिस प्रकार हम जानते हैं ये ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, उसका हिंदी अनुवाद है अंत में मैंने किया, कि पानी की एक बहुत बड़ी गुण है कि वो जिस पात्र में रखा जाता है वह रेप आकार ले लेता है। पानी का एक बहुत बड़ा गुण है कि उसमें जो रंग मिला दिया जाए वह उस रंग में रंग जाता है। तो ये एक, इसका अगर हम बौद्धिक विवेचन करें तो ये हमारे लिए जीवन सूत्र भी है।
1: जी जी, बहुत बढ़िया। और आपने व्यंग्य भी लिखे हैं।
0: जी हाँ।
1: और एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी, मध्य प्रदेश जबलपुर के रहने वाले हैं। तो हरिशंकर परसाई जी को आपने पढ़ा है, उनसे क्या कुछ पाया, क्या कुछ सीखा आपने?
0: ममता जी, व्यंग के ट्रिपॉइड मध्य प्रदेश में है।
1: जी,
0: शरद जोशी जी, बाद में उनकी कर्मभूमि मुंबई रही, वो भोपाल से थे।
1: उनका प्रतिदिन एक कॉलम आता था।
0: हाँ।
1: और
0: हरिशंकर परसाई जी का एक कॉलम आता था, सुनो भाई साधो।
1: जी,
0: तो मैं ये सब पढ़ते हुए अखबारों में बड़ा हुआ हूँ। मेरा परिवार साहित्यिक रहा है तो मुझे पढ़ने में बहुत रुचि थी, तो ये सब पढ़ा मैंने। रविन्द्रनाथ त्यागी जी, वो भी मध्य प्रदेश के थे।
1: जी जी जी।
0: और जो एक कहा जाए कि व्यंग के ट्रिपॉइड, ये तीन स्तंभ रहे हैं, और उनका पूरा साहित्य मैंने पढ़ा, और अवचेतन में कहीं ना कहीं एक व्यंग के बीज अंकुरित होते रहे।
1: जी।
0: व्यंग देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए हैं और बड़ा लोकप्रिय है। लोग उसे पढ़ते हैं, प्रतिक्रियाएं देते हैं। और मेरी व्यंग की 11 किताबें हैं जिनमें मेरे अनेक व्यंग संग्रहित, समय समय पर जो लिखता गया वो किताबों के रूप में आते चले गए एक के बाद एक।
1: कुछ महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र करना चाहेंगे आप?
0: हाँ जरूर। मैंने कुछ संपादन किया वैश्विक रूप से व्यंग संग्रहों का, मैंने वैश्विक लेखकों को एकत्रित किया। मेरा परिदृश्य, मैंने बैकग्राउंड थोड़ा सा वैश्विक हो गया है क्योंकि बच्चे मेरे सब विदेश में हैं तीनों, तो उस वजह से जैसे मैंने एक मिली भगत यानी सामूहिक व्यंग संग्रह बहुत से निकले हैं, भारत से भी कई निकले हैं और बड़े बड़े निकले हैं, लेकिन पहला वैश्विक संग्रह अगर मैं कहूं तो मुझे बताने में गर्व होता है कि मिली भगत, जैसा नाम से ही है, उस नाम से मैंने ये निकाला था। तो इसमें पूरे विश्व के कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, लंदन से जो व्यंगकार उस समय व्यंग लिख रहे थे, उनके व्यंग दुबई से, वो लेकर के और उनका एक सामूहिक संग्रह निकाला था। तो इसका नाम मिली भगत है और उसका संपादन मैंने किया था। जो आपने बात की कि मेरे व्यंग की किताबों की बात, तो राम भरोसे ये एक शीर्षक है, यानी जो भारतीय आम आदमी है वो किसी समय ऐसा लगता था कि जैसे वो राम भरोसे है, अंत्योदय, जो गांधी के अंत्योदय का आदमी है, उसको जब हमने राम भरोसे एक प्रतीकात्मक नाम दिया। व्यंग में एक लक्षणा शक्ति होती है, एक
1: मुश्किल भी होता है व्यंग्य लिखना, क्योंकि जो चुटीले व्यंग्य होते हैं, जब हरिशंकर परसाई के व्यंग्य को पढ़ने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप उस व्यंग्य को लिखकर गुदगुदा सकें या फिर करारा चोट कर सकें, दोनों विधा। तो आपके लिए किस तरह की चुनौती रही?
0: व्यंग में मैंने बहुत सारे प्रयोग किए। उलट बांसी में हम किसी चीज की अतिशयोक्ति से इस तरह से बताते हैं कि उसको इतना ज्यादा महत्वपूर्ण बता देते हैं कि सामने वाला उसको संप्रेषित हो जाता है कि ये इसके विपरीत, मैंने उसके हंसी उड़ा रहा है।
1: जी जी।
0: है ना। और एक प्रयोग होता है जिसमें हम किसी पे अवलंबन लेकर के, जैसे
1: किसी व्यक्ति विशेष को,
0: कोई हमने एक पात्र चयन किया।
1: हाँ।
0: जैसे एक मेरा व्यंग है कि वोटिंग की लाइन में अर्जुन, तो अर्जुन को पात्र बनाकर के, जैसे उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध लड़ूं कि ना लड़ूं, तो उस तरह का हम किंकर्तव्य मूड हो जाते हैं कि हम इसको वोट दें कि उसको वोट दें। दोनों चेहरे तो एक से हैं,
1: जी जी, जी
0: कई बार ये स्थितियां होती
1: हैं। तो हम किंग कर्तव्य विमोढ़ नहीं हो सकते हैं, हम इस समय जानना चाहते हैं कि आप गाने भी सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, तो इस समय एक गाना सुनवाते हैं श्रोताओं को, आपकी पसंद का कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए ममता जी, आपने बहुत अच्छी फरमाइश की है, तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ये सुना जाए, क्योंकि लोग कुछ भी कहते रहेंगे, हमें अपना एक दृष्टि और एक ना लक्ष्य निर्धारित कर उस ओर बढ़ना होता है।
1: जी, अमर प्रेम फिल्म का
0: गाना, अमर प्रेम फिल्म का गाना है, किशोर कुमार की आवाज है, आनंद बख्शी जी ने इसे बहुत अच्छे शब्द दिए हैं, तो क्यों ना हम ये गाना
1: सुनते हैं, यही गीत।

0: विवेक रंजन जी, आपने लिखे भी हैं, नाटक लिखे हैं, व्यंग्य लिखे हैं और उपन्यास भी लिखा है, कहानियां भी, इसकी चर्चा हम करते रहेंगे। लेकिन हमें बताइए कि आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, एमटेक किया, बिजली विभाग में आप अभियंता के रूप में कार्यरत रहे, तो उसकी कहानी थोड़ी बताइए, कैसे वहां पहुंचे और कोई खास याद वहां से जुड़ी हुई है जो?
1: ममता जी, मैं इसके लिए कहूंगा कि आप बड़ी लकी हैं, क्योंकि आपकी अभिरुचि भी साहित्य में है और आप आकाशवाणी जैसे संस्थान में काम भी कर रहे हैं।
0: जी जी जी।
1: मैं इतना लकी नहीं था।
0: विरोधाभास रहा
1: मेरे जीवन में, क्योंकि भारतीय स्थितियों में अनेक लेखकों के साथ मैं जानता हूं कि जो आजीविका के लिए कुछ और हैं और जिनको रुचि कुछ और है। तो मैं एक साहित्यिक परिवार से आता हूँ। मंडला में मेरे दादाजी जो थे उनके गीत प्रभात फेरियों में गाए जाते थे।
0: अच्छा, क्या
1: मेरे पिताजी स्वर्गीय प्रोफेसर चित्रभूषण श्रीवास्तव विदग्ध जी, उनकी 40 विभिन्न किताबें हैं जो आध्यात्मिक प्रसंगों की रचनाएं हैं। उन्होंने भगवद गीता, रघुवंश, मेघदूत जैसी रचनाओं के हिंदी काव्यानुवाद किए और उनको अनुवाद पर सर्वोच्च पुरस्कार भी मिला। तो मैं उससे था, मैंने जब हाई स्कूल में था तब तक हमारे यहाँ 11वीं कक्षा जो होती थी वो हायर सेकेंडरी होती थी, तो मैंने हायर सेकेंडरी तक मंडला की जिला पुस्तकालय और जो भी मंडला के जो सार्वजनिक पुस्तकालय थे उनके सारे साहित्यिक उपन्यास चाट डाले थे।
0: तो उसमें पढ़ने का एक खास शौक हुआ करता था, दौर था पढ़ाई का,
1: बहुत दौर था, क्योंकि मनोरंजन के और साधन नहीं थे। रेडियो, अखबार के साहित्यिक कॉलम वो लोग हम लोग पढ़ा करते थे, पत्रिकाएं आती थी तो हम भाई बहन दौड़ते थे जब भी कोई नया पत्रिका का अंक आता
0: था, कौन पहले पढ़ेगा।
1: तो ये जमाना था।
0: मनोहर श्याम जोशी का साहित्यिक ये साप्ताहिक हिंदुस्तान तो इंतजार होता था
1: धर्मयोग,
0: कौन पहले पढ़ेगा
1: धर्मयोग जी, जी। और उससे भी पहले छोटे की बात करें तो पराग, नंदन, ये सब हम लोगों के बचपन में पढ़ पढ़ के वो संस्कार आए। तो हम बात कर रहे थे कि मंडला में जब हमारा साहित्यिक परिवार से था तो मैं पढ़ने में होशियार था ईश्वर की कृपा से। लक्ष्य निर्धारित हो तो हम सब अपने उस दिशा में चल

0: आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया, तो डेफिनेटली इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना एक अच्छा व्यवसाय माना जाता।
1: इंजीनियरिंग पढ़ने का सपना आपने कैसे देखा, पहले ये बताइए कि कहाँ से बीज पड़ा, क्योंकि आप तो साहित्य रुचियों में
0: रुचि में था, बिल्कुल सही है आपका कहना, लेकिन गणित में मैं हमेशा अव्वल रहा
1: थे।
0: जी हाँ, तो जब मेरा 11th हुआ और मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेक्शन हुआ, तो मैंने सलाह की, मैं मंडला जैसी छोटी जगह, मंडला एक आदिवासी प्रमुख जिला है और कान्हा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान जो वन्य अभयारण्य है उसके लिए जाना जाता है, तो वहाँ से था। तो मेरा NIT रायपुर में सिलेक्शन हो गया, तो मैंने रायपुर से BE किया, फिर उसके बाद BE करने के बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया MSCT भोपाल से, और इस प्रकार इंजीनियरिंग में मैं निष्णात हुआ और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया विद्युत मंडल में, तो मैं वहीं से चीफ इंजीनियर बन के रिटायर हुआ। और आजकल की तरह नहीं कि उस समय, तो आजकल तो जब तक बच्चों की कंपनियों का नाम याद करते हैं हम, तब तक वो कंपनी बदल लेते हैं।
1: तब आपने एक जगह नौकरी ज्वाइन की, तो बस वहीं पे स्थायी रूप से, लेकिन विद्युत मंडल में, विद्युत विभाग में अभी भी बहुत सारे शहरों में बिजली की कटौती होती है, महानगरों को छोड़ दें, मुंबई में तो बिजली जाना मतलब एक खबर बन जाती है, लेकिन अभी भी देखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती होती है, तो ऐसी कभी कोई घटना की शिकायतों से भर दिया गया, कोई ऐसी घटना याद आती है?
0: आप सही कह रही हैं, लेकिन बिजली का परिदृश्य बहुत बदल चुका है ममता जी। मुझे ये बताने में खुशी है कि अब एक समय था कि जब उत्पादन कम था और मांग ज्यादा थी, खपत ज्यादा थी, अब हमारी मांग के अनुरूप काफी बिजली बन रही है और बहुत सारी उसमें नवाचार भी हुए हैं। अब अलग कंपनियां हैं जो विद्युत बनाती हैं, भारत में बिजली बनाने के, जो अपने श्रोताओं को बताना चाहूंगा मैं कि सबसे स्वच्छ बिजली बनती है पन बिजली, जहाँ पर पानी की जो स्थिति, जो ऊर्जा है उसको, पानी को नीचे गिराकर गति ऊर्जा में बदला जाता है और उससे टरबाइन, मैंने बिजली बनाने का बेसिक प्रिंसिपल ये है कि तांबे का कोई, जो हमने फेराडे ला पढ़ा है कि बिजली तभी बनती है जब कोई उनमें बल अंतर होता है, तो वो कॉपर का पूरा कॉइल जब घूमता है किसी मैग्नेट के अंदर तो बिजली बनती है। अब उसको घुमाने का तरीका क्या हो सकता है, तो या तो भाप की शक्ति से घुमाया जाता है तो थर्मल बिजली कहलाती है, उसमें कोयला जलाया जाता है तो प्रदूषण होता है, चिमनियों से धुआं निकलता है। दूसरा होता है पन बिजली, जिसमें कि स्वच्छ पानी गिरता है लेकिन उसकी लागत बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि बांध बनाया जाता है, पानी भरता है तो बहुत से गांव विस्थापित होते हैं, हर एक के अपनी समस्याएं भी हैं। और परमाणु बिजली होती है, तो मैं मंडला में पदस्थ था, तो मंडला जिले में एक चुटका परमाणु परियोजना नर्मदा नदी के बांध के किनारे, जो बरगी बांध है उसके जल भराव के क्षेत्र के किनारे प्रस्तावित है, तो उसके प्रारंभिक सर्वे से लेकर के और उस जमीन का, क्योंकि वहाँ पर जो न्यूक्लियर पावर डिपार्टमेंट है उनकी मांग ये थी कि हमें फाउंडेशन की दृष्टि से जमीन अच्छी चाहिए, पर्याप्त पानी चाहिए, पानी का केमिकल एनालिसिस प्रॉपर होना चाहिए और वहाँ की आबादी कम होना चाहिए, क्योंकि कभी कोई दुर्घटना हो तो इन सारी दृष्टियों से जो मंडला का क्षेत्र था वो सही पाया गया और उसके सर्वे वगैरह मैंने किए। तो एक ये बात है, कच्चे माल के रूप में पानी और ज़मीन यही दिया जाना था, तो ये वो प्रस्तावित है, अभी जब भी बनेगा तो वो भी परमाणु बिजली घर भी मध्य प्रदेश को मिलेगा।
1: जी, बड़ी अच्छी जानकारी दी। यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
0: जरूर,
1: कौन
0: जरूर।
1: सा गाना?
0: एक बैजू बावरा 1952 में एक फिल्म आई थी ममता जी,
1: बहुत
0: मन तड़पत हरि दर्शन को, और इस गाने की खासियत पे हम चर्चा करना चाहेंगे।
1: जी जी।
0: एक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो मोहम्मद रफी साहब ने इसको गाया था, नौशाद जी ने
1: संगीतबद्ध
0: किया था और शकील बदायूनी जी के शब्द हैं और गीत है मन तड़पत हरि दर्शन को। आज
1: तो
0: आज भी ये धुन पूरे हम सब के मंदिरों में बजती है और सब मानव के मन मंदिर में ये बजती रहे और सद्भाव हो देश में, ये मेरी कामना है।
1: क्या बात है, मेरे ख्याल से राग भैरवी पर आधारित ये गाना है।
0: क्या बात तो, है, आपने उसका राग भी बता दिया ममता जी, आपकी तो खैर बात ही कुछ अलग है।
1: तो अब यही गाना सुनते हैं।
0: बिल्कुल।

0: ये जो गाना अभी हमने सुना, गाने के बाद हम चाहते हैं कि आप चूंकि बिजली विभाग में कार्यरत रहे हैं
1: जी हाँ।
0: और बिजली विभाग में जो कार्यरत होते हैं शिकायतें बहुत सारी मिलती हैं
1: जी हाँ।
0: तो कोई ऐसी यादगार बात बताना चाहेंगे आपके पास शिकायतों की भरमार, आपके घर वालों ने भी कभी कोई शिकवा शिकायत की कि आप तो बिजली विभाग में काम करते हैं और हमारे घर पे बिजली गायब है?
1: ममता जी, तो बहुत अच्छा सवाल किया आपने और इस सवाल के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ
0: जी।
1: मैं जब चीफ इंजीनियर था तो मैं अपने जो लाइन स्टाफ था उसको ये कहा करता था कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं और उनको इस ढंग से मोटिवेट करता था। क्या होता है ममता जी कि किसी भी विभाग में जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो अपनी जवाबदारियां समझते हैं, लेकिन कई बार जो हमारे छोटे कर्मचारी हैं जिनका सीधा सामना आम नागरिकों से होता है, हम कहीं बैंक जाते हैं, किसी भी रेलवे स्टेशन में जाते हैं, तो जो विंडो क्लर्क होता है यदि उसका भाव आपसे बातचीत अच्छी है, उसमें संवेदनाएं हैं, उसमें मानवीय गुण हैं, उसमें नैसर्गिक एक समस्या को निपटाने की भावना है, तो जो कंज्यूमर होता है वो सेटिस्फाइड होकर निकलता है। तो वही बिजली विभाग की बात है कि जो हमारे लाइनमैन हैं, जो हमारे लोगों को बिजली कनेक्शन चाहिए होता है, लोगों को अपना बिल पटाना होता है, लोगों को बिजली सही ढंग से उनको अच्छी बिजली बराबर उसी उस पे वोल्टेज पे प्रॉपर मिलती
0: जी,
1: रहे
0: जी, जी।
1: ये उनकी उसके लिए पैसे देने को आज लोग तैयार हैं, लेकिन कई बार हमारी सेवाएँ अगर नहीं होती तो वो तकनीकी सीमाएं जहां पर हैं वहां हैं, लेकिन जहां मानवीय सीमाएं हैं, जो हमारे व्यवहारिक सीमाएं हैं, उनको हम थोड़ा सा ज़्यादा काम करके थोड़ा सा वो कर, तो इसको मोटिवेट करना पड़ता है टीम भावना से। तो मैं अपने डिपार्टमेंट में इसीलिए जाना भी जाता था कि इस ढंग से हम लोगों को अपने मोटिवेट करते थे। और बिजली का परिदृश्य बहुत बदल गया, मेरी एक किताब भी है बिजली का बदलता परिदृश्य, क्योंकि आपको याद होगा कि एक समय था अंधेरा कायम रहे, मैंने लोग बोले कि बहुत बार बार खुशियां मनाने का मौका मिलता है एमपीबी की तरफ से, क्यों? क्योंकि बोले जितने बार बिजली जाती है उतने बार जब बिजली आती है तो लोग खुश हो जाते हैं कि वाह बिजली आ गई तो हमने वो खुशी छीन ली है, अब लगातार मिलती है बिजली। लेकिन ये है कि कभी तकनीकी, क्योंकि आप जानती हैं कि इतना बड़ा नेटवर्क है भारत का, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं।
0: तो आपकी श्रीमती जी ने कभी कोई कंप्लेन की, शिकायत की कि नहीं?
1: हाँ, श्रीमती जी तो शिकायतों का पुलिंदा होती हैं।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं दीपावली में भी जब हम लोग देर रात घर में पूजा कर पाते थे, क्योंकि हमें पूरे शहर की बिजली का देखना होता था कि बराबर बिजली सप्लाई हो गई, सबके घरों में पूजा अच्छे से हो जाए, प्रकाश रहे, कहीं कोई त्रुटि आए तो हम उसे तुरंत निराकरण कर सकें, तो मैं पावर हाउस से देर रात लौटता था तब हम घर की पूजा करते
0: जी जी।
1: तो ये मेरी अकेली समस्या नहीं है, ये पूरे किसी भी सिस्टम के पीछे जो पूरी एक टीम लगी होती है, जब यहाँ मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ तो यहाँ मैं पूरे सारे बिजली के जो कर्मचारी हैं उनकी तरफ से बात कर रहा हूँ, वे सब पूरा, जैसे हम जब सुरक्षा की बात करते हैं तो जो हमारा पुलिस बल है, जब हम अस्पतालों की बात करते हैं तो जो हमारा नर्सिंग स्टाफ है, जब हम उनकी तरफ से बात करते हैं तो वो पूरी टीम लगी होती है तब कहीं जा करके।
0: बिल्कुल। और जब कभी जरा सी बिजली गुल होती है तो लोग शिकायतों की भरमार कर देते हैं और ये नहीं समझ पाते हैं कि उस विभाग में भी कुछ बाध्यताएं होती हैं, कुछ सीमाएं होती हैं, और कहीं कोई त्रुटि हुई तो पूरी टीम काम में लग जाती है। चलिए अब हम यहाँ पर एक गाना सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
1: तो हम सबको मुस्कुराहटें देना चाहते हैं
0: जी।
1: तो किसी की मुस्कुराहटों पर हो निसार, ये 1959, ये
0: अनाड़ी फिल्म का गाना,
1: अनाड़ी फिल्म का, ये मेरी जन्म वर्ष है 1959।
0: अच्छा।
1: 28 जुलाई 59
0: तो सुनते हैं ये
1: जी,
0: गाना
1: जी।

0: अनाड़ी फिल्म का ये गाना था। विवेक जी, हमें बताइए कि आपने नाटक लिखा है, व्यंग्य लिखा है, अन्य विधाओं पर भी लिखा है, तो तीनों विधाओं में से आपके लिए कौन सी विधा में लिखना आसान होता है और कौन सी विधा बहुत मुश्किल लगती है, और कोई रचना प्रक्रिया बताना चाहते हैं वो भी बताइए।
1: जरूर,
0: लिखते समय
1: व्यंग मेरी मूल विधा है
0: जी,
1: क्योंकि जब कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि हम सीधे किसी को कटाक्ष नहीं कर पाते, सीधे बात नहीं कह पाते, किसी से गाली गलौज नहीं कर पाते, तो अपने मन का फ्रस्ट्रेशन मैं कागजों पर उतार देता हूँ और उसे मैं व्यंग में अभिव्यक्त करने में ज्यादा सहज और सरल समझता हूँ। कई बार क्या होता है कि विचार अपने हिसाब से विधाएं चुन लेते हैं
0: जी,
1: जो मैं कभी कभी कहता हूँ कि हर व्यक्ति कभी न कभी जीवन में कवि अवश्य होता है। युवा प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, मैं कभी जब बहुत सारे विचार मन में कौंधते हैं तो कम से कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा बातें संप्रेषित करने की जो विधा है वो कविता है। आप भी रचनाकार हैं और आप इसे समझ सकती हैं
0: जी, जी।
1: क्योंकि कविता एक ऐसा शब्द चित्र बनाती है कि उसमें हर पढ़ने वाला अपने हिसाब से रंग भर सकता है और वह चित्र मुखरित हो जाता है उसके परिवेश के अनुरूप। तो कविताएं भी मैं करता हूं। मेरा 19 पहला काव्य संग्रह आक्रोश नाम से आया था
0: जी।
1: तो उसमें भी गिरजा कुमार माथुर जी आकाशवाणी में रहे हैं
0: जी, जी।
1: उनका एक वाक्य मुझे याद आता है, मैं कोट करना चाहूंगा।
0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान। इस कार्यक्रम में आज के मेहमान हैं साहित्यकार विवेक रंजन श्रीवास्तव। आपसे बातचीत जारी रहेगी इस छोटे से अंतराल के बाद।

0: विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज के मेहमान।
1: उन्होंने लिखा था कि मुझे युवाओं के आक्रोश भरे स्वर बड़े अच्छे लगते हैं।
0: क्या बात है।
1: तो मेरी किताब का शीर्षक ही है आक्रोश, और ये तार सप्तक अर्धशती समारोह भोपाल में हुआ था तो उसमें ये विमोचित हुआ था और ये मेरी पहली किताब थी
0: जी। अगर कुछ पंक्तियां याद हो तो आप सुनाना चाहें सुनाइए, या किसी अन्य कविता संग्रह से कोई कविता याद हो तो सुनाइए।
1: हाँ जरूर, मैं आक्रोश की पहली कविता सुना देता हूँ। छोटी सी कविता है, शीर्षक है निर्वस्त्र। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। वह निर्वस्त्र ही आया था इस दुनिया में और तुम भी निर्वस्त्र ही आए थे। ये और बात है कि तुम्हें नर्सिंग होम में ही झक सफ़ेद तौलिए में लपेट दिया गया और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की गलियों में।
0: क्या बात है।
1: और वह अगले 7-8 बरस नंगा ही घूमता रहा गांव की धूल भरी सड़कों पर। जब भी तुम्हारा उससे सामना हुआ तुम्हें छी गंदा लड़का कहकर उसका परिचय दिया गया। और आज जब उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, जब आज उसके मेहनतकश हाथों ने सी ली है इज्जत की एक छोटी सी टोपी और एक लंगोटी, तो तुमने उसे अपना फटा पुराना पतलून देकर कपड़ों में भी कर दिया है एक बार फिर से निर्वस्त्र।
0: क्या बात है।
1: तो ये जनवादी नेचर की कविता थी।
0: हाँ, तो यहाँ पर कोई आपकी व्यंग्य रचना की कुछ लाइनें अगर याद है तो आप सुनाएं प्लीज।
1: जरूर ममता जी, मैं एक व्यंग का अंश छोटा सा सुनाना चाहूंगा। विसंगति ये है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो वो चल निकलता है, और उससे पहले जैसे निराला जी ने भी एक बार कहा था कि जब उनका नाम हो गया और रचनाएं छपने लगी तो उन्होंने वो रचनाएं पुनः प्रेषित कर दी जो कभी वापस आ गई थी शुरू के दिनों की।
0: जी जी।
1: ये उनकी जीवनी में मैंने पढ़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: तो उसी तरह का है कि विसंगति है नाम का महत्व, और तो ये जो रचना का शीर्षक है छींक का महाकाव्य, उसका छोटा सा अंश पढ़ता हूँ मैं। परम आदरणीय साहित्यकार श्री विभूति नारायण आगाध जी की 3 महीने से एक गंभीर कविता लिख रहे थे, पर शीर्षक ही नहीं सूझ रहा था। तभी एक दिन अचानक उन्हें छींक आई, आंखी छींक इतनी जोरदार थी कि कागज पर स्याही का एक बिंदु बन गया और उसके नीचे अनजाने में ही चू जैसा कुछ लिख गया। आगाध जी उसे काटने ही वाले थे कि उनकी वरिष्ठता जाग उठी। उन्होंने सोचा मैं आगाध हूं, मेरे अवचेतन से निकला कोई भी शब्द साधारण कैसे हो सकता है। उन्होंने कागज पर 3 शब्द और जोड़ दिए, धूप की किरण और चू। उसी शाम एक प्रतिष्ठित पत्रिका के संपादक जी नई रचना लेने उनके पास पहुंचे और कागज पढ़ते ही उनकी आंखें चमक उठी। अद्भुत, इस चू में पूरा ब्रह्मांड बोल रहा है आगाध जी, आपने आधुनिक मनुष्य की छटपटाहट को पकड़ लिया है। आगाध जी ने मन ही मन सोचा कि यह तो सर्दी जुकाम का कमाल था, लेकिन गंभीर

0: चिंता चेहरे पर लाते हुए बोले, इसे पाने के लिए चेतना को बहुत ऊंचे स्तर पर ले जाना पड़ा।
1: क्या बात है।
0: रचना मुख्य पृष्ठ पर छपी और फिर आलोचना जगत में तूफान मच गया। मार्क्सवादी आलोचक ने लिखा कि चूं शोषित वर्ग का विद्रोह है। मनोविश्लेषकों ने इसे दमित अहम की चीख बताया। अस्तित्ववादियों ने इसे जीवन की निस्सारता का सर्वोच्च उदाहरण बताया। एक युवा आलोचक ने तो यहां तक लिख दिया कि कबीर के अनहद नाद के बाद हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा नाद यही चूं नाद है। सोशल मीडिया पर चूं ट्रेंड करने लगा। लोग बिना समझे उसकी प्रशंसा करने लगे। तो आशा यह है कि जब लेखक का नाम हो जाता है तो उसकी रचनाएं चल निकलती हैं।
1: जी, क्या बात है। बढ़िया आपने रचना सुनाई, व्यंग्य रचना। और अब एक गाना सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा गाना सुनवाएं?
0: ये सुना जाए कि जिंदगी प्यार का गीत है, सौतन से।
1: जी, सौतन फिल्म का गाना है। सुनते हैं यही गाना।

0: विवेक रंजन जी, व्यंग्य रचनाओं पर आपकी बात हुई, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हिंदी साहित्य, समकालीन साहित्य में, समाज में किस तरह के सकारात्मक बदलाव आप महसूस करते हैं?
1: बहुत सारे सकारात्मक बदलाव ममता जी हो रहे हैं। स्त्री विमर्श पर आजकल बड़ा चर्चा है और साहित्य का बहुत बड़ा हिस्सा जो तीसरा जेंडर है उस पर भी बहुत सारी रचनाएं आ रही हैं।
0: जी जी।
1: और कहानियों ने भी यथार्थवाद को पकड़ा है।
0: जी।
1: कहानियां अब उस ढंग की नहीं रही कि जो एक आदर्श ही प्रस्तुत करती थी, अब यथार्थ को लेकर के, यथार्थ नायक जो जिस ढंग का, जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, वो सारी चीजें कहानियों में देखने पढ़ने मिल रही हैं।
0: तो आपको क्या लगता है, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे कथाकार जिनको नहीं जाना जाता है तो वो भी चर्चित हो जाते हैं, तो सोशल मीडिया ने क्या सृजन कार्य को कम किया है या बढ़ावा दिया है? मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ना लिखना लोग कम कर रहे हैं या ज्यादा, आपके नजरिए से क्या है?
1: सोशल मीडिया ने एक बहुत बड़ा हथियार हमें दिया है, क्योंकि पहले मुझे याद है ममता जी, आपको भी याद होगा कि हम लोग जब रचनाएं किसी पत्रिका के लिए भेजा करते थे तो साथ में एक पता लिखा, टिकट लगा, लिफाफा रखना होगा।
0: जी जी।
1: और मुझे याद है कि तब हम राइस पेपर पे कार्बन लगा करके मैं लिखता था डॉट पेन से,
0: क्या बात है,
1: नीचे कांच रख करके। मैंने वो युग जिया है और भेजी है रचनाएं उस ढंग से, और हम डालते थे डाक में वो लिफाफे और फिर इंतजार करते थे कि अब मैंने रचना किया तो स्वीकृति आएगी या अस्वीकृति आएगी और मेरा हाथ का पता लिखा लिफाफा लौट के आएगा। तो एक वो समय
0: से इंतजार होता
1: जी हाँ
0: था।
1: ये एक समय था। और आज उसका नुकसान भी कहें और फायदा भी कहें, नुकसान ये है कि असंपादित रचनाएं बेहिसाब इधर मन में आया

0: लिखता है और उसको संपादक की कोई गरज नहीं होती, वो खुद लिख करके खुद उसे संप्रेषित कर देता है। लेकिन उसका जो साहित्य की दृष्टि से दुष्परिणाम की अगर बात करें तो असंपादित रचनाएं जा रही हैं।
1: जी जी,
0: संपादन का एक अलग महत्व होता है। संपादक वह प्रहरी होता है जो पाठक और लेखक के बीच कहीं कोई एक ऐसा कर्टन लगाता है कि उसे बड़े तरीके से प्रस्तुत करता है।
1: एक पुल का काम करते
0: पुल का काम करता है।
1: अगर पुल अच्छा है, मजबूत है, तो निश्चित रूप से
0: नहीं उससे परिष्कार भी
1: पार जा सकते हैं।
0: परिष्कार भी होता है। मैं तो चूंकि घर में मैंने मेरी वाइफ मेरी पहली श्रोता है हमेशा, जब मैं लिखता हूं तो उसे पकड़ के जबरदस्ती बिठा के सुनाता हूं और वो बहुत से परिष्कार रचना में होता ही है।
1: तो क्या प्रतिक्रिया देती हैं? अच्छी बुरी,
0: सुधार के बिंदु बताती है। वो भी एक साहित्यिक परिवार से है, उसके पिताजी ने, वो स्वतंत्र लेखिका भी है और महिला पत्रिकाओं में उसकी रचनाएं छपती हैं। तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस पर क्या लिखा जाना चाहिए, क्या कौन सी बात ऐसी है जो संप्रेषणीय रचना की दृष्टि से हमने लिख ली लेकिन सामाजिकता के मर्यादा की दृष्टि से, क्योंकि साहित्य में स जुटा हुआ है, सबका हित
1: जी।
0: तो जो कुछ हम जब पुरस्कार मिल जाता है किसी को, कोई रचनाकार कुछ लिखता है, तो हम समाज के प्रति जिम्मेदार हो जाते हैं, क्योंकि हम रहे न रहे साहित्य रहेगा।
1: जी बिल्कुल, किताब रहेगी,
0: किताब रहेगी, रचनाएं रहेंगी। तो ये जो आपने सोशल मीडिया की बात की थी तो उसमें ये कमी मुझे लगती है, लेकिन उसका लाभ यही है कि नंबर ऑफ लेखक बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अब विदेशियों की बात करें तो विदेशों में बहुत सारे बच्चे हमारे युवा आज गए, हर तीसरे घर से कोई ना कोई किसी विदेश में है, तो वो उनके साथ उनके मम्मी पापा गए। अब उनके मम्मी पापा वहाँ क्या काम करें, फ्री हैं, तो बहुत से जो महिलाएं हैं जब वो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई, उन्होंने विदेश में लेखन को अपना अभिरुचि बनाई और उसके कारण नए लेखक साहित्य जगत को मिले और प्रवासी लेखकों का एक बड़ा संसार है ममता जी।
1: एक उनकी बाकायदा दुनिया है और एक बहुत सारी पत्रिकाएं हैं।
0: अच्छा, ईश्वर की कृपा से वहां पर रहते हुए संपन्नता के कारण वो उनकी किताबें फिर भारत से ही छपती हैं।
1: जी जी।
0: और अब किताबें भी आप ये देखिए कि फिजिकल किताबें, तो एक समय था कि हमारे पिताजी की किताबें 1000 का संस्करण छपता था, आज आप भी लेखिका हैं, आप जानती हैं कि 200 प्रतियां यदि एक संस्करण में छप रही हैं तो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो ये परिवर्तन हुए हैं
1: जी। प्रवासी साहित्य की बात आपने की, तो आप खुद विदेशों में गए हैं।
0: जी,
1: आपने जिक्र भी किया कि यूएस और दुबई और कई जगह पर गए हैं। तो प्रवासी साहित्यकारों, उनकी दुनिया कैसी है,
0: उनकी
1: फायदे नुकसान?
0: उनकी दुनिया को हिंदी एक मंच पर जोड़ने का बड़ा काम कर रही है।
1: जी।
0: मैं यूएस में गया था तो वहाँ काउंसलेट में मुझे बुलाया गया था और वहाँ पर हिंदी दिवस का आयोजन था, तो मैंने लिखा कि रचना में कि हिंदी जो है वो हमें एक सूत्र में गर्व से जुड़ने का आपस में एक माध्यम बनती है। हिंदी एक फेविकोल की तरह काम करती है जो बहुत सारे भारतीय विदेश में हैं उनको एक मंच पर लाने का काम हिंदी का कर रही है। तो इस तरह से प्रवासी साहित्यकार बहुत सारा अच्छा लेखन कर रहे हैं और उनके संकलन भी आ रहे हैं और छप रहे हैं, चर्चा में हैं। अभी मैं
1: विवेक रंजन जी, आपने नाटक भी लिखे हैं?
0: जी हाँ,
1: नाटक भी था
0: जी।
1: तो क्या होता है, आपकी रचना प्रक्रिया क्या होती है, उसके पात्र कहाँ से लाते हैं और संवाद कैसे गढ़ते हैं, उसके बारे में बताइए।
0: मैं ममता जी सायास बहुत कम लिखता हूँ। सायास मतलब कोई जबरदस्ती कभी नहीं लिखता मैं, जो स्वतः कभी मैंने वैचारिक रूप से अंदर उथल पुथल जब विचारों की चलती रहती है तो वो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर परिपक्व होती रहती है। मेरी रचना प्रक्रिया ये है और किसी दिन सुबह 4 बजे नींद खुलती है और फिर मैं सुबह के समय में 2-3 घंटे में रचना पूरी कर लेता हूँ। तो इस ढंग से मैंने कई नाटक लिखे और हर नाटक का, हर कविता का, हर व्यंग का मेरा एक भाव है और मैं संदेश भी ये मित्रों को देना चाहता हूँ, रचनाकारों को, युवा रचनाकारों को, कि हम जो कुछ भी लिखें उसका एक हमारा मंतव्य होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, लोग पढ़ें और उससे कुछ सकारात्मकता समाज में जाए। केवल नाम की गरज से लिखना या किसी के कहने पर कुछ लिख देना वो नहीं होना चाहिए, ये मेरा मानना है।
1: जी, तो क्या होता है, फिक्शन लिखना पसंद करते हैं या किसी यथार्थ परक विषय?
0: हाँ, मैं जैसे जब कोई व्यंग जब लिखता हूँ तो पीड़ा होती है किसी बात को लेकर के।

0: बड़ा मन व्यथित होता है कि यार ये क्या विसंगति है, तो उसको फिर व्यंग में अभिव्यक्त कर देता हूँ। कोई दृश्य कभी बड़ा मनोरम लगता है, कोई बड़ा अच्छा लगता है, तो उसमें बहुत से रंग भरने की कोशिश होती है, तो शब्द चित्र बनते हैं, तो मैं कविता लिख देता हूँ। जैसे मैंने अपनी जब काम वाली का जीवन देखा, मेरा कहना यह है ममता जी कि हर व्यक्ति अपने आप में एक उपन्यास है, चलता फिरता उपन्यास है। जो मेरे घर में काम करने वाली है, उसकी पीड़ा जब मैंने पास से देखी समझी, कितनी मेहनत वो सुबह से कहाँ से आकर के करती है हमारे लिए, अपना सर्व मैंने फिजिकल मेहनत, जब हम विदेशों में जाते हैं देखते हैं कि खुद फिजिकल मेहनत करना पड़ती है, जो यहाँ पे हाउस हेल्प समय उपलब्ध कराते
1: हैं, सहायिकाएं होती हैं, सहायिकाएं होती हैं, आपको बहुत मदद मिलती है।
0: जी हाँ, तो फिर उस पर मैंने एक कहानी लिखी थी। अच्छा। तो इस तरह से मैंने कि उसके घर में जब खुशियां नहीं मिल रही थी उसे, उसका हस्बैंड उसको पिटाई करता था, तो उसने अपनी खुशियां हमारी खुशियों में ढूंढ ली। मेरे बच्चे कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वो खुश होकर के वीडियो कॉल पे उनसे बात करती, तो ये एक कहानी को जन्म देता है। तो नाटक के लिए जब कोई, जैसे अब ये मेरे जो मुझे 2012 में भी साहित्य अकेडमी का नाटक के लिए ही पुरस्कार मिला था, तो वो हिंदुस्तान हमारा, तो उसमें जैसे DPS लखनऊ में किसी ने मुझसे फेसबुक के जरिए आमंत्रित किया कि हमारे स्कूल के लिए कोई नाटक लिखिए, तो मैंने फिर हिंदुस्तान हमारा देशभक्ति का एक नाटक बच्चों के लिए लिखा था। तो इस तरह से रचना प्रक्रिया चलती है।
1: तो ये तो हो गई, आपने कहा कि हम घर में सहायिका काम कर रही, वहां से उसके दर्द को साझा करते हैं, लेकिन एक कवि हृदय होता है, अमूमन कवियों की कविताओं की शुरुआत प्रेम कविता से होती है, और आपने अपने श्रीमती जी का जिक्र किया दो बार, तो उनके लिए भी कोई कविता लिखी, अपनी पत्नी के लिए कोई कविता लिखी है? तो
0: उनके लिए तो जरूर लिखी है, मगर वो प्रेम पत्रों में बंद है। आज मैं आपको कुछ पंक्तियां अपने श्रोताओं को सुनाना चाहता हूं कि अच्छा लगता है, शीर्षक है। भाव काव्य के मंथन लौट करते घर लौटे तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है।
0: जब हम किसी कवि सम्मेलन में जाते हैं तो वहां से कुछ अगर दो पंक्तियां गुनगुनाते हुए लौटे तो अच्छा लगता है। ये भाव है, है ना। भाव काव्य के मंथन करते घर लौटे तो अच्छा लगता है, शब्द तुम्हारे कुछ जो लेकर घर लौटे तो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है।
0: कौन किसे कुछ देता यूं ही, कौन किसे सुनता है आज, छंद सुने और गाते गाते घर लौटे तो
1: अच्छा लगता है।
0: मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, मेरी पीड़ा तुम क्या जानो, तेरी पीड़ा पर गुमसुम हम, पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है।
1: क्या बात है।
0: पर पीड़ा पर लिखो पढ़ो और सुनो अगर तो अच्छा लगता है। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक। सोशल मीडिया पर ये देखने में मिलता है लाइक और डिसलाइक, मैंने बस एक दूसरे
1: लाइक कमेंट
0: लाइक कमेंट। एक दूसरे के बोलों पर मुग्ध तालियां उन्हें मुबारक, गीत गजल सुन द्रवित हृदय जब रो देता तो अच्छा लगता है। कविताओं की विषय वस्तु तो कवि को ही तय करनी है, शाश्वत भावों की अभिव्यक्ति सुन पर अच्छा
1: लगता है। वाह।
0: रचना पढ़े बिना समझे बिन नाम देख दे रहे बधाई, आलोचक पाठक की पाती पढ़कर लेकिन
1: अच्छा लगता है। वाह।
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर।
1: क्या बात है।
0: कई डायरियां ढेरों कागज रंग डाले हैं लिख लिख कर, पढ़ने मिलता लिखा स्वयं का छपा हुआ जो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया।
0: बहुत पढ़ा और लिखा बहुत, कई जलसों में शिरकत की, बैठे घंटों श्रोता बनकर अब मंचों पर जब बैठो तो
1: अच्छा लगता है। बहुत बढ़िया।
0: शब्द तुम्हारे कुछ लेकर के घर लौटो तो
1: अच्छा लगता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पर एक गाना होना चाहिए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: चलिए एक गाना हम अपने श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे। लता मंगेशकर का गाना है रेशमा और शेरा फिल्म से, तू चंदा मैं चांदनी।
1: बहुत ही बेहतरीन गाना है।

0: तो विवेक जी, ये तो कविता आपने सुनाई,
1: जी
0: अब नाटक पर फिर से आते हैं।
1: जी हाँ
0: नाटक जो लिखे हैं,
1: जी
0: तो ये इच्छा होती है कि नाटक रंगमंच पर आए, तो
1: जी
0: क्या आपके रंगमंच पर भी नाटक मंचित किए गए हैं?
1: जी हाँ, जैसा मैंने बताया कि वो हिंदोस्तान हमारा के कुछ नाटक बाल नाटक थे, तो वो DPS स्कूल लखनऊ में, ज्ञानदीप मंडला में
0: जी
1: मंचित हुए, और स्कूलों में कई जगह वो बाल नाटक मंचित हुए। इसी तरह से जो अभी जलनाद है वो अमेरिका में एक
0: मंचन हुआ।
1: जगह, हाँ, मंचन हो रहा है उसके अंशों का, और NSD को भी भेजा गया है ये नाटक। तो देखिए, जैसा बोला जाता है ना कि गीतों को छू ले कोई, मैंने अगर कोई गीत गा ले तो गीत अमर हो जाता है,
0: होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर
1: गीत
0: कर
1: अमर कर
0: दो।
1: दो। और उसी तरह से नाटक के मामले में कि नाटक दृश्य और श्रव्य विधा है
0: जी।
1: और उसकी संप्रेषण क्षमता बहुत ज्यादा है, यानी कहानी को जब हम पढ़ेंगे तब हमारे मन में हमारे परिवेश के हिसाब से चित्र बनेंगे, लेकिन नाटक जब हम देखते हैं
0: जी
1: तो उसका सीधा असर, इम्पैक्ट हमारे दिमाग पर दोनों दृष्टि से पड़ता है, संवाद डिलीवरी से भी और जो कुछ हम आंखों से देखते हैं।
0: जी
1: तो नाटक का महत्व ही उससे है। और जिस ढंग से हवा महल में जो झलकियां आप लोग सुनाते हैं हमारे श्रोताओं को, तो उसमें आवाज की ही नाटकीयता से सारे भाव प्रेषित होते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: तो मेरी झलकियां, मैं कामना करता हूं कि विविध भारती से भी आए और इस ढंग का कुछ प्रयास मेरा है।
0: जी जी जरूर, आपकी कलम में ताकत है तो फिर ये जरूर होगा। हमें बताइए कि आपके लेखन को किन साहित्यकारों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? मतलब आपने पढ़ा है बचपन से इतने सारे साहित्यकारों को,
1: जी
0: तो किन साहित्यकारों से आप प्रभावित रहे?
1: मूलतः मैं परसाई जी से प्रभावित हूँ, अपने आप को परसाई जी से प्रभावित मानता हूँ, क्योंकि व्यंग की जो प्रारंभिक मेरी भावनाएं जागी वो उनके स्तंभों को पढ़ने से हुई, और फिर आगे जैसे जैसे मैं और गहराई से पढ़ता गया तो निश्चित ही जोशी जी ने, शरद जोशी जी के व्यंग, त्यागी जी के व्यंग, उनसे भी मैं प्रभावित रहा हूँ।
0: जी, और इन दिनों क्या लिख रहे हैं आप?
1: इन दिनों मैं कहानी पर काम कर रहा हूँ और ललित निबंध पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि ललित निबंध में साहित्य अमृत एक पत्रिका है, तो उसमें बड़े अच्छे ढंग से ललित निबंध बहुत पढ़ने मिलते थे। ललित निबंध विधा कम लिखी जा रही है, संस्मरण विधा कम लिखी जा रही है,
0: विस्मृत हो रही है,
1: विस्मृत हो रही है, रिपोर्टाज बहुत कम लिखे जा रहे हैं। तो मेरा ये है कि चूंकि बहुआयामी बहुविध व्यक्तित्व अपना मेरा ऐसा कुछ बन गया है, तो पहले उस विधा की रचनाएं बहुत सारी पढ़ता हूँ, श्रेष्ठ रचनाएं पढ़ता हूँ, और फिर वो ईश्वर ने भाव दिए हैं, शब्द दिए हैं, अभिव्यक्ति की क्षमता दी है, तो उसमें अभिव्यक्त करता हूँ।
0: जी विवेक रंजन जी, बड़ी ही रोचक बातें आपने कहीं साझा की हमारे श्रोताओं के साथ। विविध भारती परिवार की ओर से और श्रोताओं की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए यहाँ, नमस्कार।
1: धन्यवाद ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती परिवार को कि ये आज आपने मुझे अवसर दिया, और तमाम श्रोताओं को कि आपने मुझे सुना और आप मुझे पसंद किया नहीं किया ये तो आपके पत्रों से मालूम होगा। विविध भारती को आपके फीडबैक का जरूर इंतजार रहेगा।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।
1: थैंक यू ममता जी।
2: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लेखक और कवि विवेक रंजन श्रीवास्तव से ममता सिंह की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग रीमा जोशी, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जुबैर खान। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती से।
1: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर शाम के 5 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है युवा साथियों का मन पसंद कार्यक्रम युव वाणी।

0: गुड इवनिंग सागर प्रेमियों, ना उम्मीदी में भी उम्मीद लिए मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्टूडियो की टाइम मशीन पर वक्त हुआ जाता है 5:01। साल के 365 दिनों में खत्म होता हुआ दिन शुमार 196। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं युववाणी उपासना की आवाज में। मेरे श्रोताओं, आपसे आज एक सवाल है मेरा, क्या आपने कभी अपने सपनों की कीमत लगाई है? नहीं नहीं, मैं पैसों की बात नहीं कर रही, मैं उस कीमत की बात कर रही हूं जो एक सपना पूरा करने के लिए चुकानी पड़ती है। कभी नींद, कभी आराम, कभी दोस्तों की महफिल और कभी कभी हालात से रोज की लड़ाई। दोस्तों, कहते हैं हर किसी के हिस्से में आसान रास्ते नहीं आते, लेकिन हर किसी के हिस्से में एक मौका जरूर आता है। फर्क बस इतना होता है कि कोई उस मौके का इंतजार करता है और कोई उसे पहचान कर पकड़ लेता है। आज का हमारा कार्यक्रम उसी एक मौके के नाम है, उन युवाओं के नाम है जो सपने तो बड़े देखते हैं लेकिन कभी कभी जेब छोटी पड़ जाती है, जो पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मन में एक सवाल बार बार आता है, क्या पैसों की कमी मेरी पढ़ाई रोक देगी? दोस्तों, अगर आपके मन में भी कभी ऐसा सवाल आया है तो आज का कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है। एक बात मैं आपसे शुरुआत में ही कहना चाहूंगी कि गरीबी कभी भी किसी की पहचान नहीं होती, पहचान बनती है मेहनत से, हौसले से और हार ना मानने के फैसले से। पता है, जब एक स्टूडेंट किताब खोलता है तो सिर्फ एक अध्याय नहीं खोलता, उसके साथ खुलती है उसके परिवार की उम्मीदें, माँ की दुआएं, पिता का विश्वास और भविष्य का एक नया दरवाजा। इसीलिए अगर कभी थक जाएं तो पढ़ाई मत छोड़िए, थोड़ी देर रुक जाइए, रुक कर फिर चलना मत भूलिए, क्योंकि मंजिल तक वही पहुंचते हैं जो रास्तों से दोस्ती करना सीख जाते हैं। और अब हम बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर। हमारे साथ हैं एक विशेष परिचर्चा जो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि हजारों युवाओं के लिए उम्मीद का संदेश भी है। अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया कि क्या आर्थिक परेशानियां मेरी मंजिल में बाधा बनेंगी, तो अगले कुछ मिनट बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस परिचर्चा में हम जानेंगे कि कैसे सही जानकारी, सही समय पर उठाया गया एक कदम और छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं आपकी पढ़ाई की राह को आसान बना सकती हैं। तो आइए सुनते हैं ये विशेष परिचर्चा। हमारे विशेषज्ञ हैं धर्मवीर मौर्य और डॉक्टर नरेश तिवारी, इनसे बातचीत कर रहे हैं दीपक निषाद।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका इस बातचीत में। मैं हूं आज आपके साथ दीपक निषाद और हम एक बेहद खास योजना के ऊपर आज बातचीत करने जा रहे हैं। भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना संचालित की जा रही है, छात्रवृत्ति योजना है ये, और श्रम कल्याण संगठन द्वारा ये संचालित है भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दो बेहद खास मेहमान हमारे बीच आज उपस्थित हैं। हमारे बीच हैं श्री धर्मवीर मौर्य साहब, आप कल्याण प्रशासक हैं श्रम कल्याण संगठन मध्य प्रदेश परिक्षेत्र के, और हमारे साथ हैं डॉक्टर नरेश तिवारी साहब। डॉक्टर नरेश तिवारी साहब, आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं सेंट्रल हॉस्पिटल सागर के, जिसे हम बीडी अस्पताल के नाम से भी जानते हैं। आप दोनों ही मेहमानों का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
2: श्रमिक भाई बहनों को मेरा नमस्कार और बच्चों को मेरा प्यार।
1: धर्मवीर साहब, हम इस बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता छात्रवृत्ति योजना, ये योजना क्या है, छात्रवृत्ति योजना या वित्तीय सहायता योजना क्या है?
2: मैं आकाशवाणी सागर के माध्यम से भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय श्रम कल्याण संगठन द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजना की महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ। इस छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत बीडी खदान सीनियर श्रमिकों तथा उनके बच्चों इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, और श्रम कल्याण को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना का यही उद्देश्य है कि कोई भी श्रमिक या उसका बच्चा शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो पैसे की कमी उसकी रुकावट ना बन सके या बच्चा अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े।
1: जी, पैसे की कमी रुकावट ना बने छात्र की शिक्षा के मार्ग में। डॉक्टर नरेश तिवारी साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत
3: जी
1: कितनी राशि छात्रवृत्ति बतौर प्रदान की जाती है।
3: इसमें क्लास 1 से 4 तक तो 1,000 रुपये प्रतिवर्ष मिलता है और क्लास 5 से 8 के तक 1,500 रुपये प्रतिवर्ष, 9 और 10 की क्लास वालों को 2,000 प्रतिवर्ष, 11वीं और 12वीं वालों को 3,000 रुपये प्रतिवर्ष, अगर कोई डिप्लोमा कर रहा है, ITI कर रहा है, स्नातक कर रहा है तो उसको 6,000 रुपये प्रतिवर्ष, और अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करता है जैसे MBBS कर रहा है या कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, मेडिकल कर रहा है, उनको 25,000 रुपये प्रतिवर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है।
2: इसमें एक सुझाव देना चाहता हूँ कि ये जो राशि जो प्रदान की जाती है केंद्र सरकार भारत सरकार के द्वारा, ये राशि सीधे बच्चों के खाते में दी जाती है, उसको DBT के माध्यम से सीधा ही उसके खाते में प्रदान की जाती है।
1: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर द्वारा सीधे हितग्राही के खाते में ये राशि ट्रांसफर की जाती है। अच्छा, इसमें एक ये भी बात की जाती है कि जो भी श्रमिक होते हैं उनका ई श्रम कार्ड बनता है, तो क्या ई श्रम कार्ड के माध्यम से भी वो राशि जा सकती है?
2: नहीं, हमारी योजना का वो पात्रता है कि उसके पास में BD श्रमिक परिचय पत्र होना चाहिए या फिर खदान श्रमिक परिचय पत्र या फार्म B रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए। इन परिचय पत्र के माध्यम से वो श्रम या बच्चा अपना जो आवेदन करेगा NSP पोर्टल पर, वो पहली पात्रता ये होनी चाहिए।
1: और किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है आवेदन करने की प्रक्रिया के अंतर्गत?
2: इन दो दस्तावेजों के अलावा इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और पिछले वर्ष की अंक तालिका जो कि NSP पोर्टल पर अपलोड की जाएंगे, और आवेदन करने के पश्चात सभी विद्यालय इन्हीं दस्तावेज आधार पर उस आवेदन का सत्यापन करेगा।
1: जी, आवेदन शुरू करने की प्रक्रिया कब से शुरू हो रही है और इसकी अंतिम तिथि भी क्या कुछ है?
2: हाँ, आवेदन जो प्रक्रिया है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से की जा रही है और ये प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू हो गई है, और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में शिक्षा का ये वर्गीकरण प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक के द्वारा किया गया है। प्री मैट्रिक अर्थात कक्षा 1 से 10 तक विद्यार्थियों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 है, जबकि पोस्ट मैट्रिक अर्थात 11 से लेकर उच्च शिक्षा स्नातक स्नातकोत्तर उसके लिए यह अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 है।
1: डॉक्टर तिवारी साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आवेदन करने के लिए क्या कोई शुल्क भी दे है या आवेदन निःशुल्क है?
3: आवेदन निःशुल्क है, जो कियोस्क होते हैं MPI लाइन वालों के, बच्चा वहाँ पे जाके अपना भर सकता है छात्रवृत्ति के लिए।
1: क्या ये छात्रवृत्ति हर वर्ष मिलती है या एक बार आपने अप्लाई कर दिया और जब तक आप पढ़ाई कर रहे हैं तब तक आपको ये मिलती रहेगी?
3: हर वर्ष मिलती है, पर लेकिन हर वर्ष अप्लाई करना पड़ता है, बिना अप्लाई करे नहीं मिलेगी। कि जैसे एक बार अगर सोचे बच्चा कि अब मिल गई तो अगले साल फिर मिलेगी, ऐसा नहीं है। हर साल उसको MPI पोर्टल जाके NSP पोर्टल जाके अप्लाई करना पड़ेगा।
1: हर वर्ष आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अगले वर्ष पढ़ाई करनी पड़ेगी तभी आप अप्लाई कर पाएंगे, बड़ी बात है ये, ड्रॉप आउट नहीं होना पड़ेगा। मौर्य साहब, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आवेदन में यदि मान लीजिए कोई गलती हो गई है, कोई त्रुटि हो गई है, तो क्या त्रुटि सुधार संभव है?
2: जी, विद्यार्थी अगर आवेदन भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि कर देता है तो स्कूल के नोडल अफसर के माध्यम से या जब INO लेवल से स्टेट लेवल में आती है तब भी उसकी आवेदन दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन ये समय अवधि के भीतर वो विद्यार्थी को करना चाहिए।
1: ये छात्रवृत्ति योजना तो हर वर्ष चलती है
2: जी,
1: तो क्या सत्र 2026-27 में योजना के जो प्रावधान है उसमें कुछ परिवर्तन, कुछ बदलाव किए गए हैं?
2: हाँ जी, पूर्व में यह सिद्धांत था 1 स्टूडेंट 1 स्कॉलरशिप, अभी केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन किया है। अभी मेरिट बेस्ड जो शैक्षणिक उत्कृष्ट योग्यता के आधार पर जो मिलती है उसको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप बोलते हैं, एक वो ले सकता है और दूसरा वेलफेयर बेस्ड कल्याण आधारित योग्यता के आधार पर वो एक या एक से अधिक छात्रवृत्ति आवेदन कर सकता है।
1: यानी कि एक स्कॉलरशिप एक विद्यार्थी के पीछे ये जो योजना थी इस योजना के अंतर्गत लागू नहीं है। हाँ। दूसरे स्कॉलरशिप के साथ भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा जो विद्यालय महाविद्यालय में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, विद्यालयों और महाविद्यालयों से आप क्या अपेक्षा करते हैं?
2: विद्यालयों महाविद्यालयों से मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि विद्यालय इस छात्रवृत्ति योजना के बारे में बच्चों को जागरूक करे और उसे आवेदन करने के लिए प्रेरित करे, बच्चों को बताए कि अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, बच्चों को यह भी सुझाव दे, यही सलाह दे कि बच्चे जब फॉर्म भरे तो इसमें पूर्ण रूप से देखकर अपने दस्तावेज अपलोड करें। बच्चे को यह भी एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताना चाहूंगा कि यह DBT योजना है और इसमें बच्चे का बैंक जो खाता है वो दुरुस्त होना चाहिए, DBT इनेबल्ड होना चाहिए, तो बच्चे का जब छात्रवृत्ति का राशि आएगी तो उसकी राशि अगर DBT इनेबल्ड नहीं होगा खाता तो उसमें पहुंच नहीं पाएगी। तो इस तरह की काफी आवेदन हमें देखने को मिले हैं जिसमें बच्चे का पैसा वो पहुंच नहीं पा रहा है और हम बहुत भरसक कोशिश करने के बावजूद भी बच्चे तक नहीं पहुंच पाते हैं।
1: दस्तावेजों में मुख्य रूप से कौन कौन सी ऐसी त्रुटियां होती हैं जिस पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और जो डॉक्टर नरेश तिवारी साहब आप बताइए कि कौन कौन सी त्रुटियां हैं जिसमें आमतौर पर छात्र गलतियां करते हैं जिसको सुधार करना जरूरी है?
3: देखिए, जो दस्तावेज इसमें लगते हैं उसमें ऐसा त्रुटि वाली बात तो कुछ भी नहीं है। आधार कार्ड से लिंक, जैसे मोबाइल नंबर चाहिए, उनकी मार्कशीट चाहिए। एक जगह से प्रॉब्लम आती है और वो ये आती है कि बच्चों के अक्सर

0: होता है कि जो बैंक अकाउंट होते हैं छोटे बच्चों के, मतलब ये बात कर रहा हूँ एक से लेकर चार या चार से लेकर आठ तक के बच्चों के, उनके बैंक अकाउंट में यूजुअली क्या होता है कि उनके माँ बाप मदर फादर के साथ में उनका नाम होता है, तो मदर फादर का नाम पहले आ जाता है और बच्चे का नाम बाद में आता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो डायरेक्ट पैसा उसको ट्रांसफर नहीं हो पाता है और वो रुक जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज उनको ये बताना होती है कि पहले जो अपना बैंक खाता जो हो बच्चे का, उसमें आगे उसका नाम हो, पीछे मदर फादर का नाम। अगर मदर फादर का नाम पहले उसने लिखवा दिया और अपना नाम बाद में लिखा, तो स्कॉलरशिप उसको नहीं मिल पाई। ये बस इसी में त्रुटि होती ज्यादातर, बाकी तो सब नॉर्मल रहता है, बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए यानी छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए जो महाविद्यालय या विद्यालय है वहां से जो अटेस्टेशन का प्रोसेस होता है, वेरिफिकेशन का या कह लीजिए सत्यापन की जो प्रक्रिया होती है, वो भी बहुत जरूरी होती है और कई बार जो है उसमें छात्रों को तकलीफ होती है। ऐसे परिस्थिति में, ऐसे केस में आप क्या कहेंगे डॉक्टर तिवारी?
0: देखिए उसमें ये कि हम लोग हर स्कूल जाते हैं, जितने भी संभव हम लोग हमारे अस्पताल के स्टाफ हर स्कूल जाता है, वहाँ पे जो भी इस चीज को देखता है नेशनल पोर्टल आईनो जो इंस्टीट्यूट का नोडल ऑफिसर होता है, उनको हम जाके चीज बताते हैं कि आप इसको जैसे आप खोलेंगे पोर्टल तो आपके स्कूल के सारे बच्चों की लिस्ट उसमें आ जाएगी किन किन बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें उनको खाली वेरिफिकेशन करना होता है कि हाँ ये बच्चा यहाँ पढ़ाई कर रहा है बस।
1: धनवीर मौर्य साहब, आपसे मैं जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है कि छात्रवृत्ति से संबंधित ये एक योजना है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका इसमें होती है, बिना उनके सहयोग के ये योजना पूरी तरीके से अमलीजामा पहनाया जा पाए वो भी संभव नहीं है, तो आप शिक्षा विभाग के अधिकारियों से क्या अपेक्षा करते हैं, आपकी उम्मीद क्या है उनसे?
2: आकाशवाणी के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों से ये निवेदन करता हूं कि मध्य प्रदेश में जितने विद्यालय महाविद्यालय हैं वो अपना नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, इसके अलावा अपना प्रोफाइल अपडेट करें, विद्यालय का जो प्रोफाइल है डाइस कोड और अन्य जो है उसको अपडेट कराएं, और इसके अलावा स्कूल की जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूट HOI और INO इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर की लोगन ID अपडेट करें या नया बनवाए। कई बार ऐसा होता है कि विद्यालय के प्रिंसिपल या नोडल ऑफिसर का ट्रांसफर हो जाता है और वो आईडी अपडेट नहीं हो पाती है, जिसके कारण से बच्चे का आवेदन वो लंबित रह जाता है। इनका लोगन आईडी तैयार करवाएं, बाय ऑथेंटिकेशन को अपडेट कराएं, अगर ये नहीं हो पाएगा तो NSU पोर्टल पर बच्चा अपना आवेदन तो कर दिया है वो सब लंबित रह जाएगा, उसका सत्यापन समय से नहीं हो पाएगा। एक दूसरा एक महत्वपूर्ण अनुरोध यह करना चाहूंगा महाविद्यालयों से या शिक्षा विभाग के अधिकारियों से कि विद्यार्थी आवेदन कर देता है उसके बाद जो सत्यापन की प्रक्रिया आती है तो उसमें विद्यालय या महाविद्यालय ये आशा करता है कि बच्चा आवेदन की प्रतिलिपि वहां उनको ले जाके सौंपे, तत्पश्चात वो उनके सत्यापन करेगा। मैं चाहता हूं कि आप पोर्टल पर उस बच्चे का आवेदन की प्रतिलिपि स्वयं निकालें, उसका रिकॉर्ड स्वयं मेंटेन करें और बच्चे का जो भी स्कूल में किसी प्रकार का है कि वो हमारा विद्यार्थी है कि नहीं, किस कैटेगरी से बिलोंग करता है क्या है, वो स्वयं ही अरे विलंब उसका आवेदन का सत्यापन करें और ऑफिसर की तरफ फॉर्म भेजे।
1: प्रक्रिया को आसान बनाना ये मकसद है ताकि छात्र को अधिक से अधिक लाभ मिले, उसे भटकना ना पड़े, कागजी कार्रवाई में यहाँ से वहां तक। मौर्य साहब आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि जो विद्यार्थी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, यदि वो और अधिक जानकारी लेना चाहें या आप मान लीजिए कि श्रम कल्याण संगठन मध्य प्रदेश परिक्षेत्र से वो संपर्क करना चाहें, तो कुछ नंबर या कुछ संपर्क सूत्र आप देना चाहें जिसके माध्यम से वो जानकारी प्राप्त कर सकें?
2: मैं आकाशवाणी के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश परिक्षेत्र में हमारे 35 डिस्पेंसरीज हैं, उनमें हमारे चिकित्सा अधिकारी हैं और अन्य स्टाफ है, उनके माध्यम से वो हमारे जो बच्चे हैं BD वर्कर है या माइन वर्कर है अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल है, उस पोर्टल में भी संबंधित सभी तरह की जानकारियां उसमें उपलब्ध कराई गई हैं। और जबलपुर में हमारा मुख्यालय है, मुख्यालय का दूरभाष नंबर मैं आपको प्रदान करता हूं, 07614039510। इसमें ही बच्चा अपना फोन करके हमसे जानकारी प्राप्त कर सकता है।
1: कार्यक्रम के आखिर में चलते चलते डॉक्टर नरेश तिवारी साहब, आप कुछ संदेश देना चाहें विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या फिर स्कूल्स के लिए, ताकि अधिक से अधिक योजना का लाभ ले सकें?
0: देखिए सभी पात्र विद्यार्थियों से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ अवश्य उठाएं, और वही बात है कि अंतिम तिथि का इंतजार न करते हुए उसको समय पर आवेदन करें और ज्यादा से ज्यादा इस योजना का फायदा उठाएं।
1: मौर्य साहब आपका क्या संदेश है?
2: मेरा यही संदेश है कि शिक्षा जो है वो विद्यार्थी की किस्मत लिख सकता है, समय परिवर्तन कर सकता है, हाथों की लकीरों में उसकी किस्मत नहीं लिखी हुई है, बच्चा अपने कलम से अपनी तकदीर लिख सकता है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से यही अनुरोध करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों अपना समय खराब न करके अच्छे से पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें, जितना अच्छे से पढ़ाई करेंगे, जितना लिखेंगे पढ़ेंगे, उतनी ही अच्छी नौकरी प्राप्त होगी या उतने अच्छे क्षेत्र में जाएंगे। सरकारी नौकरी ही नहीं, प्राइवेट क्षेत्र में भी

0: इतना अच्छा आप मुकाम हासिल कर पाएंगे। तो शिक्षा ही वो माध्यम है जो आपकी तकदीर लिख सकती है।
1: जी, बहुत महत्वपूर्ण संदेश आपका है कि शिक्षा से ही आप अपनी तकदीर को बदल सकते हैं, तकदीर खुद लिख सकते हैं। आपको किसी सहारे की जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ाई करनी है, खूब पढ़ाई करनी है। और पढ़ाई करने के लिए भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है, छात्रवृत्ति योजना संचालित की जा रही है। और बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है और इसके बारे में बहुत विस्तार से हमारे दोनों ही विशेषज्ञों ने, दोनों ही मेहमानों ने एक एक पहलू के बारे में जानकारी प्रदान की। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं डॉक्टर नरेश तिवारी साहब, आप मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं सेंट्रल हॉस्पिटल सागर में, और धर्मवीर मौर्य साहब, कल्याण प्रशासक श्रम कल्याण संगठन मध्य प्रदेश परिक्षेत्र से आप हमारे बीच आए। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार खरिया, स्वास्थ्य क्लिनिक सागर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, साधारण सर्दी या खांसी को कब गंभीरता से लेना चाहिए और डॉक्टर से सलाह कब लेनी चाहिए?
3: यदि बच्चों को दो दिन से अधिक बुखार रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में घबराहट की आवाज आए, खांसी लगातार बढ़ रही हो, बच्चा ठीक से खा पी ना रहा हो या सामान्य से अधिक थका हुआ और सुस्त दिखाई दे, तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। छोटे बच्चों में स्थिति कभी कभी बहुत तेजी से बिगड़ सकती है, साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां देने से बचना चाहिए। समय पर चिकित्सीय सलाह लेने से बच्चा जल्दी ठीक होता है और संक्रमण के घर और स्कूल में फैलने की भी संभावना कम हो जाती है।
2: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
4: अभी आपने सुना छात्रवृत्ति और शिक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण परिचर्चा। उम्मीद है कि आज सिर्फ जानकारी ही नहीं मिली होगी बल्कि एक नया विश्वास भी मिला होगा। दोस्तों, जिंदगी कभी ये नहीं पूछती कि तुम्हारे पास कितना पैसा था, वो सिर्फ इतना पूछती है कि जब मौका मिला तब तुमने कोशिश कितनी ईमानदारी से की। इसीलिए कोशिश करते रहिए, गलतियां होंगी, नंबर भी कम आएंगे कभी, लोग हंसेंगे भी, लेकिन जो लोग आज आपकी कोशिशों पर हंस रहे हैं, हो सकता है कल वही आपकी सफलता की कहानी सुनाए। सपनों का मजाक उड़ाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन सपनों को सच करने वाले सिर्फ आप होंगे। और इसी जज्बे के नाम आइए सुनते हैं एक ऐसा गीत जिसने न जाने कितने युवाओं के भीतर फिर से लड़ने का हौसला जगाया है। गीत कर हर मैदान फतेह, फिल्म संजू, गीतकार सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज।

संगीत आप सुन रहे थे करहर मैदान फतेह, गायक सुखविंदर सिंह और श्रेया घोषाल की आवाज में। तो मेरे दोस्तों, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, रास्ते खुलेंगे और मंजिल भी मिलेगी। वैसे क्या आपको पता है कि आज यूथ स्किल्स डे भी है? तो थ्योरी के साथ साथ स्किल्स भी सीखिए। स्किल्स जैसे वीडियो एडिटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, और एआई का जमाना है तो एआई को प्रॉम्प्ट कैसे देते हैं वो भी सीखिए। एआई का जमाना है तो सीधी सी बात है कि नौजवानों का भी जमाना है।

हम नौजवानों का जमाना है, हम युवाओं का जमाना है दोस्तों। खैर, घड़ी के कांटे बता रहे हैं कि चलने का वक्त हो चला है, आपसे अलविदा लेने का वक्त हो चला है। तो अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खूब खाइए, खूब पढ़िए। कार्यक्रम आप सुन रहे थे युवाणी, उपासना की आवाज़ में। नमस्कार।

0: युववाणी युवा साथियों का ये मन पसंद कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे।
1: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से 11:30 बजे तक।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए गैर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम संगीत सरिता।
3: हाँ हो सुना
2: संगीत सरिता कार्यक्रम में आइए। सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं गुलाम अली साहब की आवाज में ये गजल।
3: बिल्कुल ताजा गजल, चंद मिनट।

गुलाम अली साहब की आवाज़ में अभी आपने ये गज़ल सुनी। और आइए कार्यक्रम संगीत सरिता में अब सुनते हैं मिताली सिंह की आवाज़ में जहीर अनवर की लिखी ये गज़ल।

0: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार खरिया, स्वास्थ्य क्लिनिक सागर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, साधारण सर्दी या खांसी को कब गंभीरता से लेना चाहिए और डॉक्टर से सलाह कब लेनी चाहिए?
1: यदि बच्चों को दो दिन से अधिक बुखार रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में घबराहट की आवाज आए, खांसी लगातार बढ़ रही हो, बच्चा ठीक से खा पी ना रहा हो या सामान्य से अधिक थका हुआ और सुस्त दिखाई दे तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। छोटे बच्चों में स्थिति कभी कभी बहुत तेजी से बिगड़ सकती है, साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां देने से बचना चाहिए। समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने से बच्चा जल्दी ठीक होता है और संक्रमण के घर और स्कूल में फैलने की भी संभावना कम हो जाती है।
0: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
2: कार्यक्रम संगीत सरिता में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं कतील शिफाई के अल्फाजों को मिताली सिंह और भूपिंदर की आवाजों में।

0: यदि आप अब कोई नई कार या बाइक लेने की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपको काफी किफायती दामों पर उपलब्ध होगी। जीएसटी परिषद ने छोटी कारों 350 सीसी तक की बाइक और तिपहिया वाहनों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाला ये त्योहारी तोहफा एंट्री लेवल गाड़ियों को और भी किफायती बना देगा, जबकि लग्जरी कारें और बड़ी बाइक 40% के नए स्लैब में आ गई हैं, लेकिन फिर भी उन पर कम टैक्स लगेगा।
1: कार्यक्रम युवा कार्यक्रम संगीत सरिता में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार की आवाजों में विजय का लिखा गीत।

कविता कृष्णमूर्ति और अमित कुमार की आवाजों में अभी आपने ये गीत सुना और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम संगीत सरिता अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था, आज नेट

0: एक्सपोर्टर बन गया है और सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया है।
1: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजघट सवार डांगोआपोसी चौथी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030 से 2031 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। NIP 2012 के तुलना में NIPU 2026 के अंतर्गत लगाए गए हर संयंत्र से 250 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होने का अनुमान है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि ये व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रुसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ. जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रुसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। अमरीका ने होर्मुज जलनबरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमरीका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब सुनिए ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी का गाया गीत बोल अनजान की फिल्म का नाम बहारें फिर भी आएंगी।
3: आपके हसीन रुख

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है
2: जी।
1: जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने करते।
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। अरिजीत सिंह का गाया विलेन फिल्म का गीत सुनिए, गीत संगीत मिथुन का।

अभी आपने चांदनी फिल्म में आशा भोसले और विनोद राठौर को सुना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। इस फिल्म का गीत सुनिए, आवाजें विशाल ददलानी, शंकर महादेवन, ईशान नूरानी और गुलराज सिंह की। शंकर एसॉल लॉय के संगीत निर्देशन में गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने।

अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार को सुना। फिल्म का नाम था जैसे को तैसा। आर डी बर्मन ने तर्ज बनाई थी, वो लिखे थे आनंद बख्शी ने। कार्यक्रम तराने नए पुराने यही समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:30 होने को हैं और लीजिए अब सुनिए सदाबहार फिल्मी नगमे। कार्यक्रम सदाबहार गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए स्वामी फिल्म से ये गीत सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गीत को लिखा है अमित खन्ना ने और संगीत है राजेश रोशन का।

स्वामी फिल्म से अभी आपने एक गीत सुना और सदाबहार फिल्मी गीतों में आइए आप सुनते हैं। अगला गीत किशोर कुमार की ही आवाज में है, लिखा आनंद बख्शी ने है, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है पिया का घर।

पिया का घर। इस फिल्म से अभी आपने गीत सुना और आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम बेमिसाल आवाज लता मंगेशकर की।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आपने बेमिसाल फिल्म से गीत सुना और इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार गीत अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6:45 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं राजू पटेल की गाई ये गणेश वंदना।

0: राजू पटेल और साथियों की आवाज़ों में अभी आपने ये गणेश वंदना सुनी। कार्यक्रम लोक रंग में हम लौट कर आते हैं इन संदेशों के बाद।
1: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार खरिया, स्वास्थ्य क्लिनिक सागर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, साधारण सर्दी या खांसी को कब गंभीरता से लेना चाहिए और डॉक्टर से सलाह कब लेनी चाहिए?
2: यदि बच्चों को दो दिन से अधिक बुखार रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में घबराहट की आवाज आए, खांसी लगातार बढ़ रही हो, बच्चा ठीक से खा पी ना रहा हो या सामान्य से अधिक थका हुआ और सुस्त दिखाई दे, तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। छोटे बच्चों में स्थिति कभी कभी बहुत तेजी से बिगड़ सकती है, साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां देने से बचना चाहिए। समय पर चिकित्सीय सलाह लेने से बच्चा जल्दी ठीक होता है और संक्रमण के घर और स्कूल में फैलने की भी संभावना कम हो जाती है।
1: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
0: कार्यक्रम लोक रंग में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और आइए आप सुनते हैं रामदीन आर्य की आवाज में ये बुंदेली गीत।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए।
2: 287 मेरी चाय।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कार्यक्रम लोकरंग में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं विजय सिंह ठाकुर का गाया ये बुंदेली गीत।

विजिटिंग ठाकुर और साथियों का इस बुंदेली गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7 बजने वाले हैं। अब आप हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों की प्रतीक्षा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 10,998 करोड़ रुपीज की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीज का बनेगा।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को भी मंजूरी दी। मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी है।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीज का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं में ओडिशा में पारादीप हरिदासपुर डबलिंग और झारखंड में राजखरसावां डांगो आपोसी 4थी लाइन का काम शामिल है। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमानित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू

0: हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत की 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर कहा कि व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता भारत ब्रिटेन की साझेदारी में एक महत्वपूर्ण क्षण है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते के प्रभावी होने की सराहना की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जाहरिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने बताया कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। भारत ने आगाह किया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार न होने और वैश्विक संघर्षों का प्रभावी समाधान न निकाल पाने से लोगों का संयुक्त राष्ट्र में विश्वास घट रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के लिए बहुपक्षवाद को उपयुक्त बनाने संबंधी विषय पर मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद विश्व में चल रहे संघर्षों में सार्थक हस्तक्षेप करने में विफल रही है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकेबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमले तेज कर दिए। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वो अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए तैयार नहीं होता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में महिला वर्ग में आज 3 भारतीय मुक्केबाजों ने स्वर्ण पदक और 10 मुक्केबाजों ने रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कार्यक्रम विवरण में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सबसे पहले जानते हैं कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। कल सुबह 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। श्री रामचरितमानस का संगीत में पाठ सुनेगा सुबह 6:30 पर। सुबह 6:40 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। संस्कृत में समाचार सुबह 6:55 पर आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। और सुबह 7 आप सुनेंगे हमारा दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह। मन चाहे गीत फरमाइशी फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे कल सुबह 7:20 पर। और 7:45 पर सुनेगा कार्यक्रम संगीत सरिता। कल सुबह 8:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से आप सुनेंगे स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। फोन करें लोकगीत सुने इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण आप सुनेंगे कल 10:05 पर। कल सुबह 11 आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। कल शाम 5:02 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे युवा साथियों का मन पसंद कार्यक्रम युव वाणी। कल शाम 7:20 पर सुनेगा खेती गृहस्थी का कार्यक्रम किसान वाणी। हमारी आज की सभा में आप सुनेंगे शाम 7:10 पर प्रादेशिक

समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से शाम 7:20 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम लोकरंग और शाम 7:30 पर आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा। रात्रि 8:00 हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत और रात्रि 8:15 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता। रात्रि 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम नशे से दूरी है जरूरी। रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले की जाएगी। रात्रि 9:00 आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नगमों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे और रात्रि 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात्रि 11:10 पर हमारी आज की सभा का समापन होगा। तो ये थी जानकारी आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इसके साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 7:10 होने वाले हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी का साकार हुआ सपना, जन जन सब गाएं मिल मधुर गान अप...

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से होगी शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए की मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंदौर में किया बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ। और प्रदेश मंत्रिमंडल में फेरबदल। राज्य मंत्री लखन पटेल से वापस लिया गया पशुपालन विभाग, अब मुख्यमंत्री के पास रहेगा प्रभार। अब समाचार विस्तार से। देश की पहली ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा से शुरू होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस ट्रेन की तस्वीरें साझा करते हुए इसकी जानकारी दी। ये भारतीय रेलवे की हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल का हिस्सा है। इसके तहत भविष्य में 35 और हाइड्रोजन ट्रेनें शुरू की जाएंगी। नई ट्रेन 10 कोच वाले हाइड्रोजन चलित DEMU सेट के रूप में तैयार की गई है, जिसमें 682 सीटें हैं। इसकी अधिकतम गति 75 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार ये ट्रेन बिना हानिकारक धुआं छोड़े केवल जल वाष्प और गर्मी उत्पन्न करती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस योजना का बजट 62,500 करोड़ रुपए है। ये योजना 5 वर्षों के लिए लागू रहेगी। इसके तहत कंपनियों को बिक्री पर 2.25 से 5% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा।

0: था। सरकार के अनुसार इस योजना से देश में मोबाइल फोन का उत्पादन करीब 39 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सेमीकॉन 2.0 को मंजूरी दी है। इस मिशन के लिए कुल 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। इस मिशन की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया,
1: हमने सेमिकॉन 1.0 में फोकस दिया कि एक तरीके से उस इंडस्ट्री को स्टार्ट करना है भारत में स्थापित। 2.0 में सबसे पहला फोकस आएगा डिजाइन ऑफ चिप्स। डिजाइन ऑफ चिप्स स्ट्रेटेजिक चिप्स भी होगी और कमर्शियल चिप्स भी होगी। भारत में जितनी भी ड्रोन्स, मिसाइल्स, एयरक्राफ्ट, टैंक्स, जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक रिक्वायरमेंट है, उन सब की चिप्स भारत में डिजाइन होगी, उसकी आईपी भारत में रहेगी और भारत में ही उसका फैब्रिकेशन होगा। इस तरह की व्यवस्था ही सेमिकॉन 2.0 में 100% हम इसमें आत्मनिर्भर हो जाएंगे बाय द एंड ऑफ दिस सेमीकंडक्टर प्रोग्राम।
0: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक व्यापार और आर्थिक समझौता आज से लागू हो गया है। इस ऐतिहासिक समझौते से भारत के 99% निर्यातित वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजारों में कोई शुल्क नहीं लगेगा। इसे एक जन केंद्रित समझौता बताया गया है जिसे सभी वर्गों को लाभ मिलेगा। ये समझौता भारत के वैश्विक बाजारों से जुड़ने और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। इसके तहत डेयरी उत्पाद, मोटा अनाज, खाद्य तेल, अनाज और सेब जैसे संवेदनशील क्षेत्रों को विशेष सुरक्षा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज से लागू हुआ भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों की साझेदारी में महत्वपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और लघु उद्योगों को नई गति देगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि इससे प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भी सहयोग मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में काम कर रहे भारतीय पेशेवरों के लिए बेहद मददगार साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज इंदौर में बलराम कृषि महोत्सव का शुभारंभ किया। प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जाता है और इसी कड़ी में महोत्सव आयोजित हुआ। महोत्सव में किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, ड्रोन स्मार्ट, सिंचाई, जैविक खेती और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इंदौर के बाद ये महोत्सव धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर और खंडवा में भी आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा,
2: किसान कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं को रोजगार दिलाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अब हमारे प्रदेश के अंदर एविएशन के क्षेत्र में, विमानन के क्षेत्र में भी मध्यप्रदेश आगे बढ़ रहा है। एक तरफ हम किसान कल्याण की बात कर रहे हैं, दूसरा आज ही इंदौर से अबू धाबी की भी एक नई फ्लाइट शुरू हो रही है। ये मध्यप्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू हो रही है, इसका विजीएफ हमारी सरकार के माध्यम से देने वाले।
3: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में मंत्रिमंडल में बदलाव हुआ है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल ने पशुपालन विभाग वापस ले लिया गया है। ये विभाग अब मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपने पास रखेंगे। इसके बाद लखन पटेल अब केवल आनंद विभाग के मंत्री रह गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। लखन पटेल पथरिया विधानसभा से विधायक हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज उज्जैन में सक्षम आंगनवाड़ी केंद्र कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने पात्र हितग्राहियों को हितलाभ और मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने आंगनवाड़ी केंद्र का अवलोकन कर बच्चों के विकास से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। इसके अलावा डॉ. यादव ने इंदौर में नवनिर्मित 300 बिस्तरीय जिला चिकित्सालय भवन का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज इंदौर से अबुधाबी के लिए प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। ये उड़ान टाटा समूह की विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा संचालित की जाएगी और सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को उपलब्ध रहेगी। अभी तक इंदौर से अबुधाबी जाने के लिए यात्रियों को दिल्ली या मुंबई होकर जाना पड़ता था, जिसमें 7 से 8 घंटे लगते थे। नए उड़ान से यह सफर सिर्फ 3 घंटे 15 मिनट में पूरा हो सकेगा। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजीव कुमार झा ने आज दतिया कलेक्टर और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। इसमें दतिया विधानसभा उपनिर्वाचन की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निष्पक्षता और गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। श्री झा ने स्वीप गतिविधियों के जरिए मतदाता

जागरूकता बढ़ाने को भी कहा। उन्होंने क्रिटिकल मतदान केंद्रों, अवैध हथियारों की जब्ती और आचार संहिता उल्लंघन जैसे मुद्दों पर भी जानकारी ली। मंत्री विश्वास सारंग ने आज भोपाल के छोला स्थित श्री खेड़ापति हनुमान लोक कॉरिडोर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ कॉरिडोर की 3D डिजाइन का अवलोकन कर निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। प्रदेश के सहकारिता विभाग में पदोन्नति नियम 2025 के तहत बड़े पैमाने पर पदोन्नति की गई है। कुल 15 संवर्गों में 613 अधिकारियों और कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। इनमें प्रथम श्रेणी के 41, द्वितीय श्रेणी के 84 और तृतीय श्रेणी के 486 पद शामिल हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कैच द रेन अभियान के तहत जल संरक्षण के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये काम अमृत 2.0 योजना के तहत हो रहा है। देश भर के 900 से अधिक शहरी निकाय इस अभियान में शामिल हैं। इसके तहत 1.25 लाख एकड़ से अधिक जल निकायों का पुनर्जीवन किया जा रहा है। 28 जुलाई से रीवा से कोलकाता के लिए एयर इंडिया की उड़ान शुरू होगी। ये उड़ान भोपाल होते हुए कोलकाता पहुंचेगी। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि इससे विंध्य क्षेत्र के यात्रियों को कोलकाता जाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे व्यापार, शिक्षा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कैबिनेट मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह ने हरसूद विधानसभा क्षेत्र में आज विधानसभा स्तरीय महिला सम्मेलन में शामिल होकर बहनों से संवाद किया। प्रदेशव्यापी नशे से दूरी है जरूरी अभियान का शुभारंभ आज शिवपुरी मंडला आगरमालवा जिलों में जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। शहडोल जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 के अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक कराया जा सकता है। अशोकनगर में आज राजस्व विभाग ने कार्रवाई करते हुए लगभग 2,20,00,000 रुपए की शासकीय भूमि अधिग्रहण मुक्त की गई है। छिंदवाड़ा की 11 वर्षीय अशिता देहरिया ने विशाखापट्टनम में आयोजित 37वीं अखिल भारतीय नृत्य प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया है। झाबुआ में 5 वर्ष तक के बच्चों को गंभीर बीमारियों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से दस्तक अभियान 14 जुलाई से 31 अगस्त तक पूरे जिले में चलाया जाएगा। सीहोर से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 46B के बुतनी स्थित मिडघाट सेक्शन में आज भीषण सड़क हादसे में 8 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जबलपुर में पिछले 4-5 दिनों से उमस से बेहाल शहरवासियों को आज शाम करीब 4 बजे हुई तेज बारिश के बाद राहत मिली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:20 हुए हैं। लीजिए अब सुनिए बुंदेली गीतों का कार्यक्रम लोक रंग। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवा रहे हैं रामचरण यादव का गाया ये सहरा।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए,
2: 287 मेरी चाय।
3: नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर ब्रजेश कुमार खरिया, स्वास्थ्य क्लिनिक सागर से, जो मॉनसून के दौरान बच्चों को स्वस्थ रखने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव साझा करेंगे। डॉक्टर, साधारण सर्दी या खांसी को कब गंभीरता से लेना चाहिए और डॉक्टर से सलाह कब लेनी चाहिए?
4: यदि बच्चों को 2 दिन से अधिक बुखार रहे, सांस लेने में तकलीफ हो, सीने में घबराहट की आवाज आए, खांसी लगातार बढ़ रही हो, बच्चा ठीक से खा पी ना रहा हो या सामान्य से अधिक थका हुआ और सुस्त दिखाई दे, तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। छोटे बच्चों में स्थिति कभी कभी बहुत तेजी से बिगड़ सकती है, साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह के दवाइयां देने से बचना चाहिए। समय पर चिकित्सकीय सलाह लेने से बच्चा जल्दी ठीक होता है और संक्रमण के घर और स्कूल में फैलने की भी संभावना कम हो जाती है।
3: यह संदेश एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा जनहित में जारी किया गया है।
5: कार्यक्रम लोकरंग में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं नत्थू सिंह का गाया ये बुंदेली गीत।

नथू सिंह के गाय इस बुंदेली गीत के साथ ही कार्यक्रम लोक रंग अब यहीं संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगा हर्ट्ज पर। शाम के 7:30 होने वाले हैं। अब आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम सभा। बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: बुंदेली समाचार।
1: भैया हम बात कर रहे थे युवा कौशल की। युवा कौशल में एक और कौशल है, आप ऐसी खेती कर सकते हैं जो तकनीक पर आधारित है। आज एक तकनीकी खेती की जानकारी हम आपको दे हैं। मनो उससे पहले हम सुनाते हैं एक जो बढ़िया सो नोनो गीत गाओ है रईस सिंह यादव और साथियों ने।

तरसे दोई नैन मैया दरस के लाने, रई सिंह यादव के स्वर में आपने जो गीत सुनो। और भैया देखो, आज से गुप्त नवरात्र शुरू हो गई हैं। आज पहलो दिन है मैया के दर्शन और मैया के भजन हमारे लाने जग गीत के माध्यम से हो रहे हैं। एक बढ़िया भेंट वार्ता हम आपको आज सुनवा रहे हैं। तकनीकी खेती की भी हम बात कर लेते हैं। मशरूम की खेती भी तकनीकी खेती है, और जो हुनर अगर आपके पास है तो फिर आपके लाने बहुत मजा है। और जा आज की जो बातचीत

0: थे ना, एक हो आप सुन हो तो समझ जे हो कि मशरूम की खेती कैसे करी जाए। तो जब बातचीत जो है मशरूम उत्पादन तकनीक कम लागत अधिक मुनाफा, डॉक्टर मुकेश कुमार से हमने बात करी थी, सुनो। किसान भाइयों, खेती किसानी का काम जितना मेहनत का होता है उतना ही चतुराई का होता है। चतुराई इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम पारंपरिक खेती करते रहेंगे तो हमें उतना मुनाफा नहीं मिल पाता। अगर हम पारंपरिक खेती से हटकर कुछ और नया करेंगे तो नया करने से आनंद भी मिलता है और मुनाफा भी मिलता है। आज हम बात कर रहे हैं मशरूम की खेती की, क्योंकि आज मशरूम की लोकप्रियता जिस हिसाब से बढ़ रही है, किसानों में भी उसकी लोकप्रियता बढ़ रही है और किसान उगा रहे हैं, लाखों लाख किसान लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आइए ना, आज हम इसी विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर मुकेश कुमार, जो कि सहायक प्राध्यापक हैं सेज यूनिवर्सिटी भोपाल में। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर।
0: बात हम कर रहे हैं मशरूम की। सबसे पहले तो हमारे श्रोता यही जानना चाहेंगे कि यह मशरूम क्या है और आज इसकी किसानों में इतनी लोकप्रियता क्यों हो रही है।
1: सर, मशरूम एक प्रकार का कवक है। कवक में होता फंगस, फंगस जैसे सब्जी के रूप में खाया जाता है सर। आज के समय में सर दुनिया भर में मशरूम का प्रचलन है। बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरेंट में मशरूम बहुत तेजी से इसकी मांग बढ़ रही है, क्योंकि एक हेल्थ पर्पज से देखा जाए तो ये बहुत ही पौष्टिक आहार है और इससे बहुत सारे अच्छे गुड प्रोटीन्स हमको प्राप्त होते हैं, विटामिन मिलता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, तो ये हमको इसके सेवन से मिलता है और ये गुड आहार है, ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा हेल्थी है, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं यूज करना चाहते हैं और खाना पसंद करेंगे सर इसको।
0: अच्छा अच्छा, ये एक बात भी जानना चाहूँगा कि हम कह रहे हैं ना कि मशरूम जो है पौष्टिक आहार माना जाता है, इससे किस तरीके से स्वास्थ्य लाभ मिलता है व्यक्ति को?
1: सर, ये इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, बैड फैट नहीं होता, अच्छे गुड प्रोटीन होते हैं, तो ये हमारे जो है हेल्थ के लिए, बैड जो हार्ट के रोगी होते हैं, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता सर, तो उससे हमको फ़ायदा मिलता है और इसलिए हम उनको सलाह देते हैं कि मशरूम खाया जाए हार्ट के पेशेंट के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है सर।
0: अच्छा सर, ये मशरूम उगाने की तरफ हम चलते हैं।
1: जी सर,
0: मशरूम उगाना चाहता है कोई व्यक्ति तो किस व्यवस्था के साथ, किस खासियत रखना चाहिए, कौन कौन सा हुनर होना चाहिए, क्या तकनीक होना चाहिए, मतलब ऐसे सवाल जो मशरूम नहीं उगाते उनके मन में बहुत होते हैं।
1: जी सर,
0: तो क्या करें कि आसानी से हम मशरूम उगा सकें?
1: जी सर, मशरूम सर उगाने के लिए पहली बात तो ये है कि बहुत कम एफर्ट्स लगाने पड़ते, बहुत व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। अगर मेरे किसान भाई मेरी बात सुन रहे हैं तो उनके लिए एक बताना चाहूँगा कि बहुत मिनिमम सोर्सेस में इसको हम बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, कोई अलग से हमें स्टार्टअप नहीं बनाना। अगर हमारे पास एक झोपड़ी है तो हम उसमें कर सकते हैं, हमारे पास एक कोई खाली रूम पड़ा है हम उसमें इसको ग्रो कर सकते हैं। इसमें क्या है, हमको केवल अच्छी क्वालिटी का एक स्पान चाहिए। स्पान क्या होता है, मशरूम का बीज को हम स्पान बोलते हैं, तो वो हम कहीं से परचेज कर सकते हैं। अगर बहुत बड़ा स्टार्टअप है तो हम इसको लेबोरेटरी में बना भी सकते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तो ये है कि जो छोटे किसान हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा वेटेज ये रखता है कि बहुत कम पैसे में इसको स्टार्ट कर सकते हैं। मशरूम का अगर 10 बैग पैक कर रहे हैं, मान लिया 1 क्विंटल अगर कंपोस्ट बना रहे हैं, तो 4 से 5 हज़ार रुपये लागत आती है और उसमें अच्छा इससे मुनाफा कमाया जा सकता है।
0: सर वाकई जब हम जैसे लोग, क्योंकि मैं कभी मशरूम की खेती नहीं की, और जब मैं रेडियो पर आपकी इस बात को सुन रहा हूं तो अंदर से ऐसा लग रहा है बड़ा टेक्निकल मामला है ये, इसकी तकनीक समझना पड़ेगी, इस पाम क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये बड़ी जटिल चीजें हैं। इसको सरल भाषा में अगर हम कहें कि मशरूम को किस तरीके से व्यक्ति उगा सकता है तो कितना आसान है, कितना आसान है?
1: ठीक है सर, मैं बताता हूँ आपको। मशरूम का जो एग्रीकल्चर का वेस्टेज होता है, वेस्टेज मीन्स होता है भूसा हो गया और ये राइस एक्स्ट्रा हो गया, जो धान का पुआल बचता है उसको एक्स्ट्रा बोलते हैं, वो हो गया। हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो 3 से 5 सेंटीमीटर के पीसेस जो है उनमें कट कर लेंगे, जो धान का जो पुआल है हाँ उसको 3 से 5 सेंटीमीटर के पीसेस को कम कर लेंगे। फिर सर एक उसको हम एक ड्रम ले लेंगे, उसमें या तो वॉयल वाटर होगा उसमें उबला हुआ, तो उसमें डिप कर देंगे उससे। उससे क्या होता है कि जो उसके ऊपर फंगस होते हैं, जो पैडी स्ट्रॉ के ऊपर, जो पुआल के ऊपर, वो किल हो जाते हैं, जो हार्मफुल होते हैं। तो उनसे क्या होगा कि जब वो किल हो जाएंगे तो हमें आगे कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिर हम उसको निकाल के एक पॉलीथीन बिछा लेते हैं जमीन पे, उसके ऊपर फैला देते हैं पतला पतला, ताकि जो एक्सेस मॉइस्चर है उसका, जो नमी है, वो रिड्यूस हो जाए और सूख जाता है। उसके बाद हम क्या

करते हैं उसमें एक फंजीसाइड होता है कार्बेंडाजिम और क्या कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, वो मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है कि जो ब्लैक फंगस और मोल्ड आते हैं जिनसे कंटामिनेट हो जाता है हमारा मशरूम, उनसे बचाव हो जाता है। जब उनको मिला देते हैं

0: पिन कर देते हैं उसमें, छेद कर देते हैं पॉलीथीन में। वो इसलिए करते हैं जब उसका माइसिलियम ग्रोथ कर जाता है तो जो छेद करते हैं, एक तो उससे एरेशन होता है, अच्छा हवा आती जाती है, और दूसरा जो है वहीं से माइसिलियम बाहर आता है, वहीं से फ्रूट बाहर आता है उसका।
1: अच्छा अच्छा। हम जैसे सोयाबीन की बात करें, धान की बात करें, गेहूं की बात करें, हर फसल की किस्में होती हैं
0: जी सर।
1: लेकिन जो नहीं जानता मशरूम के बारे में, उसे तो लगता है सारा मशरूम एक जैसा होता होगा, तो क्या वाकई इसकी किस्में होती हैं?
0: जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तीन, इंडिया में तीन तरह के मशरूम जो है वो बहुत कॉमन है। एक तो बटन मशरूम, एक होता ओयस्टर मशरूम, एक होता पैडी स्ट्रो मशरूम, जिसको हम बोलते हैं, क्या कहते हैं, डिंगरी मशरूम। ओयस्टर मशरूम सर सबसे अच्छा मशरूम है। जो हम अपने जो किसान भाई हैं उनके लिए सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर वो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाह रहे हैं तो ओयस्टर मशरूम से ही करें, क्योंकि इसमें कंटामिनेशन के चांसेस बहुत कम और ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी होती है और उत्पादन इसका बहुत ज़्यादा होता है। बटन मशरूम थोड़ा सा रिस्की होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा हमको देखरेख करनी पड़ती है। प्रॉपर जो हमारा सेड बना होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, कहीं से धूप नहीं आनी चाहिए, वो सब होना चाहिए। लेकिन ओयस्टर मशरूम में अगर कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो भी जाता है, जब पहली बार करते हैं तो इतना ऑप्शन हमारे पास नहीं होता, इतना अनुभव नहीं होता
1: जी जी।
0: लेकिन ये है कि अगर हम ओयस्टर करेंगे तो वो अच्छी कंडीशन में उग जाता है।
1: सर, मशरूम उत्पादन आज कृषि आधारित उद्यम के रूप में बहुत ज़्यादा ख्याति पा रहा है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं, ये किसानों को किस तरह से फायदा दे सकता है?
0: सर, हमारे किसान भाई बहुत ट्रेडिशनल खेती, पारंपरिक खेती पर लगे हुए हैं अभी तक, तो हम उनके लिए ये एक ऐसी टेक्निक लेके आए हैं कि बहुत कम जगह में, बहुत कम बीज में अधिक मुनाफा, छोटे से इन्वेस्ट करके बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो उनके लिए है ये कि अगर उसी चीज़ पे अगर हम रहेंगे, ट्रेडिशनल खेती करते रहेंगे, तो हमारा किसान भाई धीरे धीरे गरीब होता जा रहा है और उसके पास कोई इनकम का कोई सोर्स नहीं जनरेट हो रहा है। तो हम उनके लिए बोलना चाहेंगे, अगर ये अच्छी से खेती करते हैं और स्टार्टअप करते हैं तो 101 पैकेट पे मशरूम के 40 से 50 रुपये सर लागत आती है।
1: बिल्कुल
0: ठीक है। और सर मुनाफा होता है 150 से 200 रुपये का। ठीक है, तो अगर हम इसको धीरे धीरे बड़ा बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहें तो ये एग्री स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है सर।
1: ओके ओके। सर, ये मशरूम उत्पादन के लिए जो संसाधन या सामग्री की जरूरत होती है वह क्या क्या लगेगी?
0: सर, सामग्री के लिए तो एक सबसे मेन होता है उसका सेड, और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट, सेड से ज्यादा भी इम्पोर्टेंट होता है उसका स्पान। वो सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर मान लिया हमारे पास सारी व्यवस्था है, हमारे पास सेड भी अच्छा है, अगर सेड नहीं है तो हम अपने कमरे में भी कर सकते हैं, जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा पानी और मॉइस्चर व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मान लिया इन सब चीज़ों की व्यवस्था है हमारे पास और हमारे पास स्पान अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि हमारा जो स्पान है वो बहुत बेस्ट क्वालिटी का होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण एकदम होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि कहीं खराब कोई कंटामिनेशन निकल आए और वो हमारे को मशरूम को खराब कर दे।
1: मतलब अच्छे किस्म का बीज मशरूम का अगर आप लाएंगे तो उत्पादन भरपूर पाएंगे आप।
0: जी सर, बिल्कुल।
1: सर, आपने एक बीच में बोला था ऑयस्टर मशरूम,
0: ऑयस्टर मशरूम,
1: इसकी प्रक्रिया क्या है, इसको अगर बहुत आसान तरीके से आप बताएं तो?
0: सर, ऑयस्टर मशरूम ये है कि अगर सर इसको जो हमारे नए किसान है जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं, मैं उनके लिए सजेस्ट करूंगा सबसे पहले ऑयस्टर खेती, मशरूम की खेती से स्टार्ट करें, क्योंकि ये आसानी से जो चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं उनसे हो जाता है। जैसे हमारे पास भूसा हो गया, धान का पुआल हो गया, उसके क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं फंगस, जो क्या कहते हैं जिनसे फंजीसाइड जो करते हैं, वो भी हमें सारे आसानी से मिल जाते हैं। तो इसको ग्रोथ उगाने में उतनी कठिनाई नहीं होती जो बटन मशरूम में होती है जितनी, और जितनी क्या कहते हैं प्लूटोरस और स्पेसीज वगैरह में होती है, उतनी ओयस्टर मशरूम में नहीं होती। तो जो जहाँ तक अगर कहीं आप प्रोडक्शन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट और जो क्या कहते हैं वैज्ञानिक हैं वो यही दिखाते हैं कि सबसे पहले ओयस्टर मशरूम की खेती से स्टार्ट किया जाए, फिर जैसे जैसे अनुभव बढ़ता है फिर बटन मशरूम और ये प्लूटोरस और सजर काजू बहुत सारी स्पीसीज हैं, इनको ग्रोथ कर सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल। सर, जब भी कोई खेती की जाती है तो कहते हैं ना कि उसके तापमान बहुत मायने रखता है।
0: जी सर,
1: है ना, पानी बहुत मायने रखता है, हवा बहुत मायने रखती है। मशरूम चूंकि घर के अंदर हो रहा है ना, बंद कमरे में हो रहा है, तो इसके उत्पादन में तापमान, नमी और वेंटिलेशन को किस तरीके से आप देखते हैं?
0: सर, जैसे सर अभी आपने पूछा कि सर ओयस्टर खेती के बारे में सर बताइए, तो सर ओयस्टर खेती इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बटन मशरूम जो है वो 10 से 14 डिग्री के टेम्परेचर रहता है, उसके लिए फेवरेबल टेम्परेचर है। और ओयस्टर मशरूम की खेती ऐसी है कि अगर 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर भी चला जाएगा तब भी वो अच्छी ग्रोथ करेगा, तो उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता। अब हमारे पास मध्य प्रदेश का जो एरिया है, जो ठंड सर्दियों के समय में भी 3-4 महीने का ऐसा समय

0: नवंबर से लेकर फरवरी तक कि वहीं तक 10 से 12 डिग्री टेम्परेचर तक रहता है। बट ये जो ओयस्टर मशरूम है इसको हम थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं वेंटिलेशन रूम में, और क्या कहते हैं जहाँ पे अच्छा वेंटिलेशन हो, जहाँ अच्छा सेड हो उसका, तो वहाँ पे थ्रू आउट द ईयर कर सकते हैं। तो ये है टेम्परेचर का रूम। और ह्यूमिडिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है, अगर कहीं ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी, इन्वायरमेंट में ज़्यादा मॉइस्चर होगा, तो मशरूम तो ऑलरेडी फंगस तो है ही, फंगस है, तो उसको अगर ज़्यादा पानी मिलेगा तो वो कंटा सड़ने का डर रहेगा, उसका जो माइसिलियम है सड़ जाएगा, कंटामिनेट हो जाएगा, और जब दूसरे फंगस आ जाएंगे मोल्ड बन जाएगा, जैसे मैंने बताया ग्रीन मोल्ड वो उसका फंगस है, अगर वो लग गया तो सारा मशरूम खराब हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी बहुत मेजर करती है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दो इसके बहुत मेजर जो हैं फैक्टर हैं, जो अगर इनको मेंटेन करेंगे तो।
1: तो इसको मेंटेन करने के लिए क्या कोई गैजेट है जो वहाँ लगाया जाता
0: या
1: है?
0: तो सर हम एयर कंडीशनर एसी लगाएंगे, अगर हमारे पास इतना बड़ी व्यवस्था नहीं है तो मैं किसान भाई जो छोटे तबके के किसान हैं, मैं उनको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जो छप्पर जो झोपड़ियाँ पड़ती थी उनमें ग्रोथ करें, उनमें सबसे बेस्ट है, क्योंकि उनमें इतनी ज्यादा गर्मी जो है नहीं होती और टेम्परेचर बहुत हद तक उनमें मेंटेन
1: रहता है। सर जैसा शुरुआत में आपने कहा था कि एक फंगस है ये, है ना, ये मशरूम जो है एक फंगस है, और ये शब्द सुनकर लोग डर जाते हैं, है ना, और लोग कहते हैं कि भाई जहाँ मशरूम की खेती की जाती है वहाँ बहुत सफाई की जरूरत होती है, क्योंकि आप अगर गंदगी रखेंगे तो फिर ये फंगस आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसमें कौन कौन सी सावधानियां रखना पड़ती हैं?
0: सर सावधानियां ये, जहाँ पे हम अपने मशरूम के कल्चर कर रहे हैं, तो जैसे अगर हमको पानी का स्प्रे करना है तो उसके लिए हैंड स्प्रे चाहिए होगा, तो अगर उसको हम कहीं दूसरी जगह यूज करके लेके आएंगे और फिर अपने अपने सेड में लेके जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना। जो हमको इक्विपमेंट रखना है वो अपने सेड के अंदर ही रखने हैं, और ऐसे जब बाहर अगर लेके गए, खुले में लेके गए और हमने अंदर दोबारा उनको यूज किया, तो वो हमारे को सारे मशरूम को खराब करने की वो रखते हैं, पूरा कंटामिनेट कर देंगे। तो हमको ये सावधानियां रखनी, स्वच्छ पानी देना है, गंदा पानी हमको यूज नहीं करना है, हमको इक्विपमेंट पूरे प्रॉपर तरीके से अच्छे, किसी से संक्रमण ना हो, ऐसे ना फैल जाए कि बहुत ज़्यादा खराब लेके आए और हमने उन्हीं से यूज कर लिया, निकाई गुड़ाई कर दी, उनमें हल्का सा वो चला दिया, क्या कहते हैं जो इसकी परत बन जाती है, तो उसको हमने हटा दिया, उसको छूना ही नहीं है बिल्कुल। तो ये सर सब जो है सावधानियां रखनी है।
1: सर ये जैसा अन्य फसलों में किसान भाई देखते हैं रोग और कीट लगते हैं,
0: जी सर,
1: तो क्या मशरूम में भी रोग कीट होते हैं?
0: जी सर बिल्कुल सर, मशरूम में कीट लगते हैं, रोग तो एक में सर आपको मैंने बताया था ग्रीन मोल्ड जो दूसरा है वो भी फंगस ही सर, लेकिन एक फंगस में जब दूसरा फंगस आ जाता है तो वो संक्रमित हो जाता है, तो एक तो उसकी समस्या बहुत आती है, एक लैब बीड आता है उस वो भी क्योंकि उसके क्या कहते हैं जो इसका स्पान होता है वो वहीं से लग जाता है, अगर वो लग गया तो बहुत समस्या आती, तो उसको और क्योंकि इस पर हम फंजीसाइड का स्प्रे भी नहीं कर सकते, क्योंकि मशरूम ऑलरेडी फंगस है और हम फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे तो हमारा मशरूम ही खत्म हो जाएगा। तो हमको क्या करना, पहले से ही सावधानियां बरतनी है, और इसमें जो है एक मक्खी आती है, अगर वो लग जाती तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, दूसरी जगह से तीसरी जगह बैठेगी, तो वो ऐसे मशरूम की क्वालिटी बहुत खराब करती, क्योंकि उस पर स्पॉट पड़ जाते हैं, और जहाँ मशरूम पे स्पॉट पड़े तो उस मशरूम की क्वालिटी खराब होगी, तो उसके रेट भी उतने अच्छे नहीं मिल पाते। तो सर इस तरह की सावधानी।
1: नियंत्रण फिर कैसे करेंगे?
0: सर नियंत्रण तो ऐसे करें, क्योंकि बहुत ज्यादा रूम जो है वो या तो ऐसे बंद रहेगा, तो साफ सफाई ध्यान रखेंगे, इसलिए साफ सफाई ज्यादा मेजर है, अगर साफ सफाई का ध्यान रखेंगे तो हो सकता है ये चीज ना आए, अगर आ जाती मोल्ड के लिए, अगर आ जाता है तो जितने एरिया में लग गया या तो हम उस बैग को हटा देते हैं अपने सेड से, अगर नहीं हटाते तो अगर मान लिया थोड़े से हिस्से में लगा तो हम उसको काट के बाहर कर देते हैं उस पोर्शन को और उसको बाहर निकाल देते हैं, तो कहीं ना कहीं किस हद तक हमारा जो है कंट्रोल हो जाता है।
1: सर मशरूम तैयार हो गया है और ऐसी स्थिति में अब बात आती है कि उसकी हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई चुनाई वो सब कैसे की जाए, क्या सावधानी रखी जाए?
0: सर आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछी, अगर जब हार्वेस्ट हो गया तो उसकी कटाई बहुत इंपॉर्टेंट है, और कटाई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें उसकी प्रोसेसिंग करना है। मशरूम एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है, सेल्फ लाइफ इन द सेंस मतलब होता है कि वो खुद से बहुत दिन तक सही रह पाता है, कि बहुत कम समय ऐसा रहता है कि वो सही रहे, आपने तोड़ा अगर उसको टेम्परेचर प्रॉपर नहीं रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे में हमको क्या जरूरत है कि उसकी पैकेजिंग और कटाई हमको बहुत इंपॉर्टेंट रखती है। कटाई हम ऐसी करेंगे सर, उसको जब जहां से माइसिलियम निकला रहता है उसको ऐसे घुमा देते हैं 360 डिग्री, जब घुमाएंगे हम एकदम तो वो टूट जाता है, फिर उसके बाद हम एयर टाइट जो पॉलीथीन आती है हम उसमें पैक करेंगे और हम ऐसे जगह पर स्टोर करेंगे कि जहां पर टेम्परेचर 10 से 14 15 20 से अंदर ही टेम्परेचर रहे, ऐसी जगह पर स्टोर करते हैं तो हमको एकदम सेफ रहता है, तो उसकी सेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज हो जाती है और हमको ज्यादा दिन तक मशरूम यूज कर सकते हैं।
1: कितने दिन तक रख सकते हैं उस टेम्परेचर पे?
0: अगर हम 10 से नीचे रख रहे हैं तो 20 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, 30 दिन तक कर सकते हैं, 10 से 15 के बीच में रख सकते हैं तो 15 दिन तक कर सकते हैं, और 15 के ऊपर जाते हैं तो एक वीक तक हम सर स्टोर कर सकते हैं उसको।
1: अच्छा, मार्केटिंग की तरफ चलते हैं सर। किसान भाई क्या है, उगा लेते हैं, फिर मार्केटिंग यानी बाजार में जब बेचने की बात आती है तो फिर उनको थोड़ी दिक्कतें आती हैं, उसके लिए क्या कहेंगे
0: सर? आजकल तो सर ऑनलाइन का जमाना है, हमारे किसान भाई भी थोड़े से स्मार्ट हो गए हैं, तो ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिसपे हम अपना मशरूम को सेल कर सकते हैं, और हम मंडी में भी ले जाके अपने उसको अच्छी क्या कहते हैं इनकम ले सकते हैं। और वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर ऑनलाइन कहीं से वो होता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, बहुत सारे ऐसे जो सब्जी और ये सब कर रहे हैं तो हम इन पे सेल कर सकते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे,
1: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकते हैं, और बड़े बड़े होटल्स में जाकर भी आप बात कर सकते हैं जहां आपका सामान मशरूम बिक सकता है। मशरूम उत्पादन के बाद बची हुई जो सामग्री है उसका उपयोग क्या किया जा सकता है?
0: जी सर बिल्कुल सर, अगर जो बची हुई सामग्री है उसको हम एज ए कंपोस्ट में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो जो बहुत सारा वेस्टेज होता है, हम पहले तो एक वेस्टेज को यूज कर रहे हैं अपने उत्पादन के लिए, हमने एक लाभ तो उससे अर्जित कर लिया क्योंकि हमने मशरूम उगा लिया, और जो हमारा जो उसकी सामग्री है बची जो कंपोस्ट है उसको हम खेती में यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई ऐसी हार्मफुल चीज नहीं है, कोई वो नहीं है ऐसा कोई हानिकारक, उसमें ना तो फंजीसाइड डाला, जितना उसका सब्सट्रेट है हम उसको सारा खेती के यूज कर लेंगे, कंपोस्ट के रूप में यूज कर लेंगे।
1: तो फिर लाभ ले सकते हैं।
0: जी सर बिल्कुल।
1: सर हमारी इस बातचीत को सुनकर हमारे जो श्रोता हैं, बहुत सारे ऐसे किसान भाई होंगे जिनके मन में लग रहा होगा कि अब मुझे मशरूम की खेती करना है पर फिर भी डर है कहीं चूक ना हो जाए।
0: जी सर।
1: तो उनके मन में ये सवाल होगा कि मुझे ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी, कोई ट्रेनिंग संस्था दे दे मुझे सिखला दे।
0: जी सर।
1: तो वो पैसे भी देने तैयार हैं ट्रेनिंग के, तो वो प्रशिक्षण लेने के बाद जब कोई काम किया जाता है तो परफेक्ट होता है, तो वो ट्रेनिंग वगैरह कहीं मिल सकती है क्या, कहाँ से ले सकते हैं?
0: जी सर, यहाँ मध्य प्रदेश में सर बहुत सारे ऐसे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं होता कृषि विज्ञान केंद्र, पर 2-3 मंडल पे एक नए कृषि विज्ञान केंद्र जरूर होगा, तो वहाँ अच्छी साइंटिस्ट रहते हैं, वहाँ अच्छी हर 15-10 दिन के बाद एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करवाते हैं लोग, तो वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर वहाँ से नहीं ले सकते हैं तो बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऐसे हैं वो मशरूम की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, और अगर उनके पास में कोई विश्वविद्यालय है, कोई गवर्नमेंट विश्वविद्यालय है, वो भी अच्छी खासी ट्रेनिंग करवाते हैं मशरूम पे, प्लांट पैथोलॉजी विभाग में इसका प्रशिक्षण चलता है, बहुत जगह होता है, तो वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। और अगर पहली बार कर रहे हैं तो ऑयस्टर मशरूम का ही प्रशिक्षण लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उसमें थोड़ी सावधानी कम बरतनी पड़ती है, और उससे जो है अगर एक बार हमारा ग्रोथ हो जाती है अच्छी तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है कि अब हम कर लेंगे इसको।
1: बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश कुमार जी, हमारे किसान भाइयों के लिए आपने जो मशरूम के ऊपर विस्तृत जानकारी दी है निश्चित ही हमारे किसानों के लिए इससे बहुत लाभ होगा, बहुत बहुत आभार आपका। भैया अभी अपन एक जा बातचीत सुन रहे थे, मशरूम उत्पादन तकनीक कम लागत अधिक मुनाफा डॉक्टर मुकेश कुमार बता रहे थे और हम बात कर रहे थे। हालांकि बातचीत बड़ी थी मनो विस्तार से, जहाँ उन्होंने बहुत सारी बातें बताई हैं, आप भी अगर उन पर बातों को विचार करोगे तो मशरूम उत्पादन में आप काम कर सकत हो। भैया एक गीत और सुन ले, बढ़िया गीत है जो, और गाओ है हरचरण सिंह नरवरिया और साथियों ने।
2: अरे राम कहो मन मोरे

भैया टाइम की कमी है तो जो गीत आप पूरे नहीं सुन पाए हैं, रामचरण सिंह नरवरिया और साथियों ने जो गीत गाओ थो, और चलत चलत आपसे एक बात जरूर कह दें कि खेती को ध्यान पूरो रखना है, पानी की अगर कमी होए तो सिंचाई की व्यवस्था भी तैयार करके रखो, कैसे के आपदा की स्थिति में हमें फसलों के लाने जीवन रक्षक सिंचाई जरूरी है। साथ ही खरपतवार नियंत्रण और कीट और उन सब के बारे में तो हम आपको जानकारी जामे मिलते ही रहे थे। ग्राम सभा सुनत रहो, जुड़े रहो और आप नई नई जानकारियां प्राप्त करत रहो। अब चलबे की बिरिया है, स्वीकार करो मनोज भैया की। राम राम।

ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजे हैं, आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। कार्यक्रम चित्रपट संगीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। आइए सबसे पहले सुनते हैं त्रिनेत्र फिल्म से ये दो गाना, जो लिखा है समीर ने, संगीत आनंद मिलिंद का, और आवाजें हैं सपना मुखर्जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की।

अभी आपने त्रिनेत्र फिल्म से ये गीत सुना। और श्रोताओं, हम आपको बता दें, आज रात्रि 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम नशे से है दूरी जरूरी। जी, आप सुनेंगे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सागर द्वारा प्रायोजित भेंट वार्ता नशे से दूरी है जरूरी, रात्रि 8:30 पर। कार्यक्रम चित्रपट संगीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं अगला गीत। फिल्म शबनम से ये गीत है, आवाज है अनुराधा पौडवाल और एसपी बाला सुब्रमण्यम की, शब्द रचना रानी मलिक की, संगीत अनु मलिक का।

अभी आपने शबनम फिल्म से ये गीत सुना। और श्रोताओं, आपको बता दें, आज रात्रि 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सागर द्वारा प्रायोजित भेंट वार्ता, नशे से दूरी है जरूरी। श्रोताओं, कार्यक्रम चित्रपट संगीत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आइए इस कार्यक्रम में अब सुनते हैं सरफरोश फिल्म से ये गीत। आवाजें हैं अलका याग्निक कुमार सानू की, अल्फाज समीर के, संगीत जतिन ललित का। फिल्म का नाम सरफरोश।

सरफरोश फिल्म से अभी आपने गीत सुना और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में फरेब फिल्म से ये गीत, जो लिखा है नीरज ने और संगीत है जतिन ललित का।

फरे फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रपट संगीत अब यहीं संपन्न होता है। श्रोता, आपको बता दें रात्रि 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सागर द्वारा प्रायोजित भेंट वार्ता, नशे से दूरी है जरूरी। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:20 हो चुके हैं। आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन की आवाज़ों में मोमिन खान का कलाम।

0: होता है। श्रोताओं, हम आपको बता दें, रात्रि 8:30 पर हमारे स्टूडियो से आप सुनेंगे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सागर द्वारा प्रायोजित भेंट वार्ता, नशे से दूरी है जरूरी।
1: पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:30 होने वाले हैं। लीजिए अब सुनिए, पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सागर द्वारा प्रायोजित भेंट वार्ता, नशे से दूरी है जरूरी।
1: इस भेंट वार्ता के प्रायोजक हैं पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सागर।
2: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार नशा मुक्त भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्वास जताया है कि जनता के सहयोग से नशे के खिलाफ अभियान भी सफल होगा।

0: नशा मुक्त भारत की ओर हम भी कदम बढ़ाएं। मध्य प्रदेश पुलिस के नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान को सफल बनाएं। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल सागर द्वारा जनहित में जारी। मध्य प्रदेश पुलिस 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान चला रही है। इसी विषय पर केंद्रित है ये भेंट वार्ता।
1: इस भेंट वार्ता को लेकर हाजिर हूँ मैं साहिबा। श्रोताओं आपको बताना चाहेंगे, आज इस भेंट वार्ता में हमारे साथ हैं पुलिस अधीक्षक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल श्रीमती प्रतिमा पटेल जी, साथ ही मौजूद रहेंगे उप पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत बरहैया जी और निरीक्षक श्री अफरोज खान जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सबसे पहले जो सवाल आ रहा है और हम चाहते हैं कि यदि पुलिस अधीक्षक महोदय इसका जवाब हमारे श्रोताओं तक पहुंचाएं, तो वो ये है कि नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान जो है ये बहुत अधिक सक्रिय रूप से चल रहा है, जो एक बहुत ही बड़ी समस्या सामने थी उसको पूरी तरह मिटाने की ओर तत्पर है, तो आप कुछ बताइए ना उसके बारे में।
2: बिल्कुल मैम, नमस्कार। मैं प्रतिमा। श्रोताओं, नशे से दूरी जरूरी 2.0 केवल एक सरकारी अभियान नहीं है बल्कि है एक सामाजिक क्रांति का दूसरा और अधिक उन्नत चरण है। जब हमारा पहला चरण शुरू हुआ तब हमारा मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना था, लेकिन अब 2.0 के अंतर्गत हमने रणनीति को और अधिक आक्रामक और परिणाम उन्मुख बना दिया है। आज के समय में नशे का स्वरूप बदल गया है, पारंपरिक मादक पदार्थों की जगह सिंथेटिक ड्रग्स वगैरह ने ले लिया जो अत्यंत घातक है।
1: बिल्कुल, बहुत देखिए अच्छी तरीके से आपने ये बात हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई है, ये घातक है और इससे निपटने की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए पूरे देश को इससे मुक्त कराया जा रहा है। अगला सवाल उप पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत बरहैया जी तक हम पहुंचाना चाहते हैं कि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की और नशा मुक्त अभियान मध्य प्रदेश में जो है उसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, सर क्या इस पर प्रकाश डालेंगे आप?
3: जी मैडम नमस्कार। नशा मुक्त मध्य प्रदेश के संकल्प को साकार करने के लिए सरकार और प्रशासन होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच यानी बहुआयामी रणनीति पर काम कर रही है। इस अभियान की सफलता के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। सबसे पहले सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए पुलिस और नारकोटिक्स विभाग लगातार जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तस्करों के नेटवर्क को ध्वस्त किया जा रहा है, उनकी संपत्तियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू जागरूकता है। ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक नशा मुक्ति समिति बनाई गई है। स्कूल कॉलेज और यहाँ तक कि आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम

0: से महिलाओं और बच्चों को जागरूक किया जा रहा है। हम जानते हैं कि लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग की भूमिका बहुत बड़ी है, इसलिए नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या उनकी गुणवत्ता बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा प्रशासन लगातार स्वयंसेवी संस्थाओं एनजीओ और धार्मिक व सामाजिक गुरुओं के साथ मिलकर काम कर रहा है, क्योंकि समाज के इन वर्गों की बात बहुत लोग गहराई से सुनते हैं। प्रदेश भर में लगातार सेमिनार नुक्कड़ नाटक और खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है ताकि युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा मिल सके। हमारा स्पष्ट मानना है कि अभियान तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि यह एक जन आंदोलन के रूप ना ले ले और हमारे प्रयास इसी दिशा में केंद्रित।
1: देखिए, बहुत ही अच्छी तरह आपने बताया है कि प्रयास तो भरपूर किए जा रहे हैं और हर पैमाने पर हर लेवल पर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन सभी की सहभागिता बहुत जरूरी है और इस बात को हम चाहते भी हैं कि हमारे श्रोताओं तक ये बात पहुंचे कि आप हम सब मिलकर ही इस दिशा में बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते हैं कि युवा जो है वो देश का भविष्य है, तो युवाओं के बारे में भी हमें सोचना होगा कि ये जो एक समस्या है जो धीरे धीरे फैल गई है उससे हमें युवाओं को बचाना है, तो युवा शक्ति को इस अभिशाप से बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, इस बारे में अधिक जानकारी हम चाहते हैं निरीक्षक श्री अफरोज खान जी से।
2: बहुत अच्छा सवाल है ये, और चूंकि भारत विश्व का सबसे युवा देश है, मध्य प्रदेश की एक बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है, यह एक डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी युवा शक्ति हमारी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर हम विचार करें कि जिस युवा के कंधों पर देश के निर्माण की, नई तकनीकों के विकास की और एक मजबूत समाज बनाने की जिम्मेदारी है, अगर वह नशे के खोखलेपन में डूब जाए तो क्या होगा? आज का युवा बहुत अधिक मानसिक दबाव प्रतिस्पर्धा का सामना कर रहा है, कई बार पीयर प्रेशर तो कभी असफलता से उपजी निराशा के कारण वे नशे की तरफ मुड़ जाते हैं। शुरुआत सिर्फ एक शौक या कूल दिखने की चाहत से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे यह एक जानलेवा लत बन जाती है। नशे से न केवल उनका शरीर और मानसिक स्वास्थ्य नष्ट हो जाता है, बल्कि उनका पूरा करियर और उनका परिवार भी तबाह हो जाता है। इसलिए यह अभियान बहुत आवश्यक है जो कि हमारे पुलिस विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है। निश्चित ही हम इसमें सफल होंगे और इसका पूर्ण रूप से उन्मूलन करने का प्रयास,
1: निश्चित ही हम इसमें सफल होंगे। और देखिए, कहते हैं ना कि युवा जो है वो अधिकतर देखा गया है कि परिवार में भी अगर उनकी माता चाहें, बहनें चाहें, तो उनको बहुत अच्छे से समझा सकती हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ पुलिस अधीक्षक महोदया श्रीमती प्रतिमा पटेल जी हैं। तो हम जरूर चाहते हैं कि युवाओं से आप एक अपील कीजिए, जिसको वो ये समझें कि उनकी एक परिवार की तरफ से अपील आई है कि इससे बचकर रहें, क्योंकि ये उनके लिए घातक है, फिर हम कार्यक्रम को और गति देंगे।
3: बिल्कुल मैम, जैसे कि हमारे डीएसपी साहब ने बताया और हमारे निरीक्षक महोदय ने बताया, स्पेशली 0.20 अभियान की जो शुरुआत है और सबसे बड़ी खासियत है बच्चों के ऊपर फोकस करना, उन्हें ये बताना कि पुलिसिंग और रिहैबिलिटेशन, रोकथाम, कानूनी कार्रवाई, पुनर्वास, अन्य धुरियों पर भी काम किया जा रहा है। इसके संबंध में केवल नशा करने वालों को ही नहीं पकड़ा जा रहा है, बल्कि उनके पीछे छुपे हुए मनोवैज्ञानिक परमार्थी और इलाज की व्यवस्था भी कर रहे हैं। हमारे स्कूल कॉलेज के विशेष नोडल अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं जो बच्चों की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और नशे के नुकसान से अवगत कराया जा रहा है। इसके साथ ही इस अभियान में आधुनिक तकनीक, सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग किया जा रहा है ताकि युवाओं तक उन्हीं की भाषा में संदेश पहुंचाया जाए।
1: बहुत बढ़िया बात है, युवा सुन रहे होंगे और निश्चित रूप से वो इसका पालन करेंगे। बात को हम और आगे लिए चलते हैं और उप पुलिस अधीक्षक महोदय श्री हेमंत बरहिया जी से हम ये जानना चाहते हैं, जैसे मैडम भी अभी बात कर रही थी कि प्रयास तो भरपूर है, तो जो नशा मुक्ति भारत बनाने की दिशा में मध्य प्रदेश पुलिस बहुत अच्छी तरह सहयोग कर रही है, तो वो प्रयास क्या है, कुछ और इन पर आप प्रकाश डालें।
0: मैडम, मध्य प्रदेश पुलिस काफी प्रयास कर रही है। नशा मुक्ति के इस महाभियान में मध्य प्रदेश पुलिस फ्रंट लाइन पर खड़े होकर अपनी भूमिका निभा रही है। पुलिस का काम अब केवल डंडे के जोर पर अपराध रोकना नहीं रह गया है, बल्कि हम बहुत ही वैज्ञानिक और मानवीय दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अवैध पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए पुलिस पूरी मुस्तैदी से काम कर रही है। आज के समय ड्रग तस्कर डार्क वेब और डिजिटल माध्यम के उपयोग कर रहे हैं। इसे देखते हुए मध्य प्रदेश पुलिस भी आधुनिक तकनीक, साइबर ट्रैकिंग और डेटा एनालिटिक का भरपूर उपयोग कर रही है, ताकि केवल छोटे तस्कर ही नहीं बल्कि पूरे सिंडिकेट को चलाने वाले मुख्य सरगनाओं को पकड़ा जा सके। इसके साथ ही पुलिस बल के भीतर भी एक बड़ा बदलाव लाया गया है। हमारे पुलिस प्रशिक्षण विद्यालयों में जवानों और अधिकारियों को विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। उन्हें सिखाया जा रहा है कि नशे का शिकार हुए व्यक्ति को एक अपराधी की तरह न देखकर एक फ्यूडल

0: की तरह देखा जाए। कम्युनिटी पुलिस के तहत हमारे जवान बस्तियों और मोहल्लों में जाकर लोगों से संवाद कर रहे हैं। ऑपरेशन प्रहार जैसे अभियानों के जरिए जहां एक और अपराधियों पर नकेल कसी जा रही है, वहीं नशे के शिकार युवाओं की काउंसलिंग कर उन्हें रिहैब सेंटर तक पहुंचाने में भी पुलिस एक मित्र की तरह मदद कर रही है।
1: जी हाँ, देखिए बहुत ही सुखद सी बातें पहुंच रही हैं और जनता निश्चित रूप से ये समझ रही होगी कि आपको बचाने के लिए कितने प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों में आपकी भागीदारी भी बहुत ही जरूरी है। जब कोई एक व्यक्ति नशे की लत में पड़ता है तो ये तय है कि वह सिर्फ एक प्रभावित नहीं होता, उससे उसका पूरा परिवार प्रभावित होता है, उससे पूरा समाज प्रभावित होता है। तो अब हम जानना चाहते हैं निरीक्षक श्री अफरोज खान जी से कि किसी व्यक्ति को अगर नशे से बाहर निकालना है तो परिवार और समाज की क्या भूमिका हो सकती है, इस बारे में कुछ प्रकाश डालें।
2: निश्चित रूप से परिवार और समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि परिवार और समाज अगर किसी भी व्यक्ति की मानसिक स्थिति से देखा जाए तो सीधे तौर पर जुड़ा होता है। कभी भी कोई व्यक्ति किसी समस्या में आकर, किसी असफलता के कारण या किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव में आकर यदि नशा स्टार्ट करता है तो परिवार और समाज अगर उसकी मदद करे, यदि वो व्यक्ति चाहे तो इनकी मदद से बहुत ही जल्द से जल्द उस नशे से पार पा सकता है और नशे को दूर रख सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति किसी समस्या में, आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो या किसी भी प्रकार की समस्या पैदा होती है, तो परिवार ही एक ऐसी कड़ी होती है जो उस व्यक्ति को मानसिक रूप से सुदृढ़ बना सकती है, क्योंकि वह सीधे तौर पर कनेक्ट होता है। और व्यक्ति यदि आपस में चर्चा करता है, अपने परिवार में चर्चा करता है और उस चीज़ को चाहता है कि वो उस चीज़ से दूर रहे, तो निश्चित रूप से परिवार और समाज उसको उस नशे से दूर रखने में उत्तरदायी हो सकता है।
1: तो हमें पूरी उम्मीद है कि सभी लोग इस भेंटवार्ता को सुनकर इस बात को ख्याल रखेंगे कि जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं है, जिम्मेदारी हम सब की है। जन भागीदारी बढ़े ये भी बहुत जरूरी है और लोग आगे आएं और सहयोग करें, मध्य प्रदेश पुलिस का भी सहयोग करें, उन लोगों का भी सहयोग करें जो इस लत में पड़ चुके हैं। इस बारे में पुलिस अधीक्षक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल श्रीमती प्रतिमा पटेल जी से हम आग्रह करना चाह रहे हैं कि आप जनता से ये अपील जरूर कर दें कि वो सहभागिता करें। और साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि आप वो कुछ नंबर्स भी अगर हमारे साथ साझा कर लें जो उपयोगी हो सकते हैं तो ये बहुत ही हित कर रहे हैं।
3: बिल्कुल, मैं आपके इस लोकप्रिय मंच के माध्यम से प्रदेश की पूरी जनता से एक बहुत ही भावुक और सीधी अपील करना चाहती हूँ। देखिए, पुलिस और प्रशासन अपना काम पूरी ताकत और ईमानदारी से कर रहा है, लेकिन कोई भी पुलिस तंत्र इतना नहीं हो सकता कि वह हर गली, हर चौराहे, हर मोहल्ले में और हर घर के बाहर खड़ा हो सके। प्रशासन तभी शत प्रतिशत सफल हो सकता है जब जनता उसके आंख, नाक और कान बनकर काम करे।
1: बेशक,
3: मेरी आपसे अपील है कि आप अपने आसपास के माहौल को लेकर सजग रहें। यदि आपको पता चलता है कि आपके क्षेत्र में स्कूल, कॉलेज, बाहर या किसी गुमटी पर कोई संदिग्ध व्यक्ति नशीले पदार्थों की बिक्री कर रहा है तो कृपया चुप न रहें, तुरंत पुलिस को या हमारे टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर को जो जारी किए गए हैं उन पर सूचना दें। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि सूचना देने वाले का नाम और पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी। इसके अलावा माता पिता से मेरी अपील है कि वे अपने बच्चों के दोस्तों को जानें, उनकी दिनचर्या पर ध्यान दें, उनसे एक दोस्त की तरह बात करें, शिक्षक को अपने छात्रों से हो रहे बदलाव को पकड़ें। यह हमारा प्रदेश है, हमारे बच्चे हैं, हमारा भविष्य है। अगर हम आज आग मूल लेंगे तो कल यह आग हमारे घर तक भी पहुंच सकती है। इसीलिए आगे आएं, निडर बनें, नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने के इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति जरूर दें। और मैम, कुछ टोल फ्री नंबर हैं जिनमें मैं चाहूंगी कि जिन भी बच्चों को जरूरत हो या अन्य व्यक्तियों को, तो वो जरूर इस टोल फ्री नंबर में कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 1933, नेशनल सुसाइड हेल्पलाइन है 144416, नशा मुक्ति हेल्पलाइन है 1446, मध्य प्रदेश नारकोटिक्स विभाग से हमारा नंबर है 7049100785।
1: जी हाँ, बहुत धन्यवाद। और इस उम्मीद और आशा और विश्वास के साथ कि मध्य प्रदेश नशा मुक्त बनेगा और ऐसे ही हमारा भारत भी नशा मुक्त होगा, ऐसी बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ हम चाहते हैं कि सभी लोग इस समस्या से निजात पालेंगे और बहुत साफ सुथरा अच्छा माहौल हम सब जिएंगे और सब सुरक्षित रहेंगे। इन्हीं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज इस भेंट वार्ता को यही विराम देते हैं, इस उम्मीद के साथ कि एक नई लहर एक नई मंजिल की ओर हमें लेकर जाएगी। आज भेंटवार्ता में हमारे साथ रही पुलिस अधीक्षक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल

श्रीमती प्रतिमा पटेल जी, उप पुलिस अधीक्षक श्री हेमंत बरहैया जी, निरीक्षक श्री अफरोज खान जी। और अब मैं साहिबा आपसे चाहती हूँ इजाजत इस भेंट वार्ता से।

भेंटवार्ता नशे से दूरी है जरूरी, अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब आप समाचार संध्या आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे, बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। सरकार ने देश में विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक जीते और फीफा विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात अमेरिका के एटलांटा में अर्जेंटीना का सामना इंग्लैंड से। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश के सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था। दूसरे चरण के अंतर्गत सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को भी स्वीकृति दी। इसे हाइब्रिड एनुइटी मॉडल के अंतर्गत बनाया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि इस परियोजना की कुल लागत 14,400 करोड़ रुपए से अधिक है।
1: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट 6 लेन और 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर, 43 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 10,998 करोड़ रुपीस की इसकी इन्वेस्टमेंट आएगा और करीब करीब 4 साल में कंप्लीट होगा। दूसरा है गंगा जी के साथ साथ कंप्लीट 6 लेन का एलिवेटेड कॉरिडोर, 46 किलोमीटर का ये होगा, 14,448 करोड़ रुपीस का बनेगा।
0: मंत्रिमंडल ने 62,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी स्वीकृति दी। श्री वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में मोबाइल फोन बनाने के लिए पात्र बिक्री पर 2.25% से 5% तक की प्रोत्साहन सहायता दी जाएगी।
1: मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसमें 62,500 करोड़ रुपीस का लेआउट हुआ। इन 10 वर्षों में एक मैसिव चेंज आया इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में, 7 गुना मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी, प्रोडक्शन बढ़ा और 11 गुना एक्सपोर्ट बढ़ा 2014 के कंपैरिजन में। और भारत जो मोबाइल फोन इम्पोर्टर था आज नेट एक्सपोर्टर बन गया है और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर बन गया।
0: मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को भी मंजूरी दी। लगभग 3,907 करोड़ रुपए की कुल अनुमान

0: नित लागत वाली इन परियोजनाओं के 2030-31 तक पूरा होने की संभावना है। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को भी मंजूरी दी है।
1: यूरिया का रिक्वायरमेंट लगातार बढ़ रहा है, करीब 5% पर एनम रिक्वायरमेंट बढ़ रहा है। तो आज की जो स्कीम अप्रूव हुई है उसमें करीब 8 से 9 नए यूरिया के मैन्युफैक्चरिंग के प्लांट्स लगेंगे। पिछले एक दशक में 6 नए प्लांट ऐड किए गए। 6 नए प्लांट ऐड करने से बहुत हमारा इम्पोर्ट का डिपेंडेंस कम हुआ है, आत्मनिर्भर भारत हुआ है। और ये 8 और प्लांट ऐड करने से जितनी भी भारत की रिक्वायरमेंट है यूरिया की वो देश में ही बनेगी और भारत यूरिया में आत्मनिर्भर हो जाएगा। बहुत बड़ा मिशन है ये, क्योंकि देश को विकसित भारत पे ले जाने के लिए आत्मनिर्भर भारत बनाना एकदम आवश्यक है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया है। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा। साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के पहले ही दिन भारत से ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर मूल्य का सामान निर्यात किया गया। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समझौता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि यह भारत के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी व्यापार समझौतों में से एक है। भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त लिंडी कैमरून ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा,
3: आज 15 जुलाई को यहां आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हम उस समझौते के लागू होने का उत्सव मना रहे हैं जिससे ब्रिटेन और भारत के बीच व्यापार करना तेज, सस्ता और आसान हो जाएगा। दोनों पक्षों ने बहुत मेहनत की है और इसका पूरा श्रेय यहाँ के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को जाता है जिन्होंने शानदार काम किया है। मेरी टीम ने भी बहुत बढ़िया काम किया है। यह दोनों पक्षों के लिए बेहतरीन समझौता है। हमारी अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की पूरक हैं।
2: कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण के तरुण बजाज ने आकाशवाणी समाचार से कहा,
4: ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये सच में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि इससे जो है हमारे किसानों को बहुत फायदा मिलने वाला है, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, हमारे प्रोसेस फूड सेक्टर को बहुत फायदा मिलने वाला है और हमें उम्मीद है कि ये एग्रीमेंट से हमारा ट्रेड बहुत अधिक बढ़ने वाला है।
2: इस समझौते से ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा विनिर्माण क्षेत्र के लिए नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। दीपेंद्र कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज के दिन को भारत ब्रिटेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता भारत के वस्त्र, चमड़ा, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग उत्पाद, समुद्री उत्पाद, रसायन, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, किसानों और निर्माताओं के लिए अभूतपूर्व अवसर पैदा करेगा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज स्टार्टअप, कौशल विकास और कृषि प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि को मजबूत करने के लिए कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के समर्थन का आह्वान किया। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि उद्योग जगत की ये जिम्मेदारी है कि वे CSR के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में निवेश करके राष्ट्र निर्माण में भागीदार बने।
5: जो CSR है हमारी इसी भाव का प्रतीक है। एक तरफ हमारी जवाबदारी का एहसास है, क्योंकि हम जो कुछ अपनी कंपनी हो, अपना व्यवसाय हो, अपना उद्योग हो, हम जो अर्जित करते हैं वो अकेले अपने दम पे अर्जित नहीं करते, उसमें सरकार का, समाज का बड़ा योगदान होता है। ये धरती भगवान ने सबके लिए बनाई, ये धरती, ये खनिज, ये संसाधन, ये पानी, ये हवा सबकी है, लेकिन सारे संसाधन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो उससे धन कमाए, लेकिन उस धन का एक हिस्सा वो समाज के हित में समर्पित कर दें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में यात्रियों की सुविधा में सुधार और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देने के लिए 5,740 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में निर्धारित विशेष गहन पुनरीक्षण की समय सीमा को 11 दिन तक बढ़ा दिया है। इस बदलाव के साथ अंतिम मतदाता सूची अब 1 अक्टूबर के बजाय 12 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। पंजाब की मुख्य चुनाव अधिकारी आनंदिता मित्रा ने बताया कि घर घर जाकर गिनती की प्रक्रिया 3 अगस्त तक जारी रहेगी। पहले इस चरण को 24 जुलाई तक पूरा किया जाना था। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR का गणना चरण सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। प्रारूप निर्वाचक नामावली 21 जुलाई को प्रकाशित की जाएगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेरणा पुरी ने आज चंडीगढ़ में पत्रकार वार्ता में कहा कि गणना चरण 15 जून से 14 जुलाई तक संचालित किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। सरकार ने सोशल मीडिया पोस्ट का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को क्रिप्टो को विनियमित करने पर विचार करने के लिए कहा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है और वित्त मंत्रालय ने ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया है। भारत क्रिप्टो को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं देता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने होर्मुज जल डमरू मध्य से गुजरने की कोशिश कर रहे जहाजों पर हमलों के जवाब में ईरान पर फिर समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। अमेरिका ने आज हवाई हमलों का अभियान तेज कर दिया। ईरान के अधिकारियों ने बताया है कि सेना की बैरक पर अमरीकी हमले में 7 सैनिक मारे गए। अमरीकी हमलों से देश भर में 260 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ईरानी सरकार की प्रवक्ता फातिमेह मोहजारियानी ने कहा कि हाल के दिनों में अमरीकी हमलों में 30 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। नाकाबंदी फिर लागू होने के साथ ही अमरीका और ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच कई दिनों से जारी हमलों के बाद अंतरिम शांति समझौता खत्म कर दिया गया है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि अगर वह अगले सप्ताह तक वार्ता के लिए नहीं आता है तो उसके खिलाफ सैन्य हमलों को और तेज कर दिया जाएगा। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान के बिजली संयंत्रों और पुलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज बेल्जियम के ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ की स्टार्टअप अनुसंधान और नवाचार आयुक्त एकातेरिना जहारिएवा से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने कहा कि इस दौरान स्वच्छ और हरित ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान के अवसरों पर चर्चा हुई। डॉ जयशंकर ने बेल्जियम की 2 दिन की यात्रा के दौरान ब्रसेल्स में उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ भारत बेल्जियम रणनीतिक संवाद के उद्घाटन सत्र की सह अध्यक्षता भी की। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। अंडर 19 में चंद्रिका पुजारी ने 51 किलोग्राम वर्ग और प्राची ने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर 23 में निशा ने 54 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है प्राची प्रिया।
6: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 130 अंक यानी 0.2% बढ़कर 77,185 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक यानी 0.1% बढ़कर 24,079 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 6 पैसे कमजोर होकर 96.26 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने देश में विनिर्माण पारदर्शी

0: पारिस्थितिकी को मजबूत करने के लिए 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए मोबाइल फोन विनिर्माण योजना को भी मंजूरी। केंद्र ने सड़क संपर्क बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 2 एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजनाओं को स्वीकृति दी। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता तथा सामाजिक सुरक्षा समझौता पूरी तरह से लागू। पहले ही दिन ब्रिटेन को 14 करोड़ डॉलर का भारतीय सामान निर्यात किया गया। ईरान पर अमरीकी हमलों और नौसैनिक नाकाबंदी लागू करने से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। और एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9 बजे हैं, आइए सुनते हैं फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मन चाहे गीत। कार्यक्रम मन चाहे गीत में सभी श्रोताओं का स्वागत है। पहली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की, नन्नी देवरी से सुनना चाहते हैं जयंत चौरसिया, गोपालगंज से सुनना चाहते हैं देवी सिंह और सदर बाजार सागर से इस गीत की फरमाइश की है मोहम्मद बशीर मकरानी, आसिफ मकरानी, साजिद मकरानी, इमरान मकरानी, अब्बास मकरानी, ईशान मकरानी, अनवर मकरानी, फराज मकरानी, समीर मकरानी, शबे नूर मकरानी, साबरीन मकरानी, रुबीना मकरानी, तबस्सुम मकरानी, रेहान मकरानी। इसी गीत को पसंद किया है दलपतपुर से मेरू जैन, अनिल, अंकुश जैन और उनके समस्त परिवार ने। ये सभी सुनना चाहते हैं साधना सरगम और पंकज उदास की आवाज़ों में मोहरा फिल्म का ये गीत, जो लिखा है इंदी फर ने, संगीत है विजू शाह का।

0: अपना व्यापार आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770442297।
1: मन चाहे गीत फरमाइशी फिल्मी गीतों के इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। अगली फरमाइश हमारे इन श्रोताओं की, किशनगंज बिहार से सुनना चाहते हैं रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, माधुरी किरण। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र से सुनना चाहते हैं अनिल कुमार घोड़के, वैशाली अनिल, प्राजक्ता घोड़के, वैष्णवी घोड़के, गायत्री घोड़के, यज्ञेश घोड़के। आप सभी सुनना चाहते हैं आशा भोसले और शत्रुघ्न सिन्हा की आवाज़ों में वर्मा मलिक का लिखा गीत, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम जानी दुश्मन।
2: समझ लूं ऐसी नहीं है तू, मगर जो मैंने समझा था वैसी भी नहीं है तू।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मन चाहे कि इस कार्यक्रम में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है, और आइए अब सुनते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमें भेजी है भूत चौराहा बुलंद शहर से पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका सिंह, आकृति सिंह, वंशराज सिंह। कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी, फराज, फरहान, फरहीन, फारिया और ताहिरा। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से सुनना चाहते हैं रोशन देवांगन, हेमलता देवांगन, डिम्पल देवांगन। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य।

आपने पसंद किया है कालीचरण फिल्म से ये गीत आशा भोसले मोहम्मद रफी और साथियों की आवाजों में। गीत लिखा है रविंद्र जैन ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। तो आइए सुनते हैं कालीचरण फिल्म से ये गीत।

का व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770 43

कार्यक्रम मंचाहे गीत में सभी श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है। आइए अगली फरमाइश सुनते हैं हमारे इन श्रोताओं की। मंथन रेडियो श्रोता संघ ग्राम अमावनी से गुड्डू तिवारी, पूजा तिवारी, नारायण प्रसाद तिवारी, योगिता तिवारी, वैष्णवी तिवारी, इसी गीत को पसंद किया है। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान छीपा, पूजा परिहार ने, और इसी गीत को सुनना चाहते हैं बठिंडा पंजाब से परम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर, दरन, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन, अभिजोत, आप सभी सुनना चाहते हैं तीसरी आंख फिल्म से गीत। आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार की, शब्द रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

तीसरी आंख फिल्म से अभी आपने गाना सुना और आइए इस कार्यक्रम के आखिर में सुनते हैं विश्वनाथ फिल्म से ये गीत। आवाज है लता मंगेशकर की, शब्द रचना एम जी हशमत की, संगीत राजेश रोशन का, फरमाइश आप सभी की। ग्राम बनेगा तहसील बंडा जिला सागर से सुनना चाहते हैं बलराम सेन, अरविंद सेन, रेखा सेन, रविंद्र सेन, संगीता सेन, महेंद्र सेन, रामदेवी सेन, सुरेंद्र सेन, नंदिनी सेन, रिया गौरव, राज आर्यन, कौशल और दीप्ति। इसी गीत की फरमाइश की है नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नुपुर, ऋषिका रॉबिन, शिवा, शिवांशु, यश, अवधेश, प्रेम नारायण, रमेश कठोंदिया, सुजीत, रमाकांत दुबे। तो आइए सुनते हैं सभी की फरमाइश पर विश्वनाथ फिल्म से ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

विश्वनाथ इस फिल्म किस गीत के साथ ही फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनचाहे गीत अब यही संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब आप विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से सुनेंगे। बस कीजिए कुछ ही पलों का इंतजार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर

नमस्ते दोस्तों, हाजिर हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार। दोस्तों, आज के फनकार हैं एक ऐसे सुरीले संगीतकार जिन्होंने नाजुक तरीन गाने दिए हैं, जिनका जादू आज तक कायम है और सदियों तक गाए जाएंगे उनके गीत।

0: थे।
1: आज के फनकार एक ऐसे संगीतकार जिनके स्वरबद्ध किए गाने हमारी जिंदगी के साथी हैं, जिनके संगीत में खुशी है, गम है, प्यार है और इंतजार है, ढेर सारी कशिश है, जज्बात का सागर है।

संगीतकार मदन मोहन ने ढाई दशक के सिनेमा के करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया। मदन मोहन की बनाई धुन आपकी नजरों ने गीत से संगीत सम्राट नौशाद इतने प्रभावित थे कि उन्होंने इस धुन के बदले संगीत का पूरा खजाना लुटाने को तैयार हो गए थे।

मदन मोहन कोहली का जन्म 25 जून 1924 को कुर्दिस्तान में हुआ था। उनके पिता राय बहादुर चुन्नीलाल वहां नौकरी करते थे। जिंदगी के शुरुआती 5 साल मदन मोहन ने वहीं बिताए।

आगे चलकर उनका परिवार मुंबई आ गया और उनका बचपन बीता राज कपूर, नरगिस और सुरैया के साथ। दरअसल ये उनके पड़ोसी थे। आगे चलकर मदन मोहन ने आकाशवाणी लखनऊ में नौकरी कर ली, जहां उन्हें मिला साथ उस्ताद फैयाज खां, उस्ताद बरकत अली खां, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी हस्तियों का।

मुंबई आने के बाद मदन मोहन श्याम सुंदर और सचिन देव बर्मन के सहायक बन गए। सबसे पहले मदन मोहन को निर्माता निर्देशक देवेंद्र गोयल ने फिल्म आंखें में संगीत देने का मौका दिया। इसके बाद मदन मोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर और मदन मोहन का साथ लेकर आया कई अनमोल गाने। उन गानों की बात करने से पहले आपको ये बता दें कि फिल्म अदा से लता मंगेशकर और मदन मोहन ने साथ काम करना शुरू किया, जैसे अदालत,

मदन मोहन के संगीत की दुनिया लता जी तक ही नहीं सीमित रही, न ही मदन मोहन का संगीत सिर्फ संजीदा गानों तक सिमटा रहा, बल्कि उन्होंने मजाहिया गीतों का जादू भी बिखेरा, जैसे फिल्म चाचा जिंदाबाद का ये गाना।

0: उनके बेटे संजीव कोहली और समीर कोहली विविध भारती के स्टूडियो में आए थे। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
1: ये हमारा सौभाग्य है कि हम उनके बेटे पैदा हुए, लेकिन मेरे हिसाब से कड़ी तो उनका संगीत है और कड़ी उनके सुनने वाले हैं और चाहने वाले हैं जिन्होंने आज तक उनको जिंदा रखा है। और ये जिंदा उनको ऐसा रखा है क्योंकि उनके गाने आज भी लोग इतने ही प्यार से सुनते हैं जैसे पहले सुनते थे। मदन जी जब गुजरे, हमारे पिताजी, मैं मदन जी ही कहूँगा क्योंकि इट बी इजी फॉर देम, जब वो गुजरे मैं 18 साल का था, समीर शायद 13-14 के थे, तो हमारी यादें जो बचपन की जुड़ी हैं वो काफ़ी याद हैं लेकिन कुछ धुंधलाई भी हैं। ज़्यादातर हमने उनके जाने के बाद सुनने वालों के तौर पे उनको जाना। मेरा यह सौभाग्य रहा कि मैंने म्यूजिक कंपनी में भी काम किया और कई संगीतकारों के साथ मिल के काम किया, कई एल्बम्स, कई लोगों का म्यूजिक बड़े मतलब चाह से सुना समझा। और ये फिर इल्म हुआ कि मदन मोहन जी का एक जो स्थान था वो कुछ अलग था। जितनी इज्जत लोगों ने उनको दी, जितना प्यार सुनने वालों ने और उनके गायकों ने, बाकी संगीतकारों ने जो उनको इज्जत बख्शी है, जिससे हमें इज्जत मिलती है कि मदन जी का संगीत इतने सालों बाद आज भी लोगों को पसंद है। 25 साल उन्होंने म्यूजिक दिया, उनका करियर 25 साल का था, जल्दी गुजर गए।

0: 51 की एज पे, हमेशा उन्हें लगता था कि जितना सक्सेस उन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हमें नहीं लगता है, लेकिन उन्हें जरूर लगा, और इसकी वजह भी है। सक्सेस का जो बैरोमीटर है वो था कि बड़े बैनर हों, बड़ी फिल्में हों जिनमें बड़े बड़े स्टार्स हों, दिलीप साहब हों, राज कपूर हों, देवानंद हों। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस वक्त एक ही अवार्ड था, कि उनके जाने के बाद ये सब होता गया।
1: जी, मेरी एक छोटी सी याद है, उस जमाने में मैं विविध भारती बहुत सुना करता था, और मुझे अभी तक याद है ये, उस जमाने में टेलीविजन तो था नहीं, तो 7:05 पे आप लोगों का प्रोग्राम शनिवार को जयमाला बजता है, तो वो सुनने के लिए मैंने रेडियो करीब 7 ऑन किया, और मैंने रेडियो में ये सुना न्यूज में कि दस्तक ने उस साल के सारे अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड्स स्वीप कर लिए थे। संजीव कुमार साहब को बेस्ट एक्टर के लिए, रेहाना सुल्ताना साहिबा को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए, मजरू साहब को बेस्ट लिरिक्स के लिए, मदन जी को म्यूजिक के लिए। तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया, और मैंने डैड को, म्यूजिक रूम घर के सामने था, मैंने फोन किया उन्हें, मैंने कहा कि आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। तो मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं इस वक्त म्यूजिक सिटिंग में हूं। तो मैंने कहा नहीं, खबर बहुत अच्छी, मैं आपसे आके मिलना चाहता हूं, और खबर इतनी अच्छी कि मैं आपसे 1,000 रुपये मांगना चाहता हूं, इस खबर के लिए आप मुझे 1,000 रुपये दें। तो उन्होंने कहा खबर अच्छी होगी तो मैं देखूंगा, नहीं तो तुम देखो तुम्हारी क्या हालत करता हूं, मैं बहुत बिजी हूं। तो मैं डरते डरते रोड क्रॉस करके मैं म्यूजिक रूम में गया, और मैंने जब घंटी बजाई और उन्होंने कहा क्या है, तो मैं देखा कि कोने में रफी साहब बैठे हैं, राजेंद्र कृष्ण साहब बैठे थे वहाँ, कि किसी गाने की सिटिंग चल रही थी। तो मैंने कहा कि आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा जी आपको दस्तक फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वो बड़े गुस्सा हो गए, क्योंकि उन्होंने लगा कि मैं शायद उनके साथ मजाक कर रहा हूँ। और उसी वक्त दरवाजे की घंटी फिर से बजी, और उनके बड़े करीबी मित्र मरहूम जयदेव साहब दरवाजे पे खड़े थे, उनके हाथ में एक शैंपेन की बॉटल थी, और उन्होंने कहा मदन मैंने भी अभी सुना है कि तुम्हें दस्तक के लिए अवार्ड मिला है, और मैं तुम्हें मुबारकबाद।
0: इसकी एक वजह थी, वजह यह थी कि उन्हें तब तक कोई बड़ा अवार्ड मिला ही नहीं था, और दस्तक 1970 में, मतलब 20 साल का करियर हो चुका था, तो थोड़ा वो निराश भी थे कि मुझे अवार्ड कभी मिलता ही नहीं। और फिर वो दिल्ली जाने से उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि नेशनल अवार्ड राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है। तो संजीव कुमार जी, जिनको भी उस फिल्म के लिए एक्टर का अवार्ड मिला था, वो हमारे घर आए, और उन्होंने उनको मनाया कि आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। फिर संजीव कुमार जी ने वही किस्म के दो सूट सिलवाए, और मदन जी और संजीव कुमार ने वही दो सूट बोटाई के साथ, एकदम सेम सूट्स पहन के दोनों साथ में उस फंक्शन के लिए गए।

लेकिन मैं जैसे कह रहा था, इसकी वजह ये थी कि पहले जब फिल्म फेयर अवार्ड, जो मेन अवार्ड उस वक्त कमर्शियल अवार्ड, पॉपुलर अवार्ड होता था जो वोट से होता था, उन्हें 3 बार नॉमिनेट किया गया लेकिन अवार्ड नहीं मिला अनपढ़ 1962 में। उससे मुझे जुड़ी एक बात याद आ रही है कि हम छोटे थे, मैं 6 साल का था, तो मदन जी गाड़ी खुद चलाते थे, उनकी बहुत बड़ी गाड़ी होती थी जो पहचानी जाती थी कि ये मदन मोहन की गाड़ी है, क्योंकि बहुत स्पेशल रंग था गाड़ी का। तो वो जब हमें ड्राइव पे ले जा रहे थे, हम वर्ली सी फेस पे जा रहे थे और हम बच्चे थे।

मैं जैसे कहा छोटा था तो हम बोलते थे डैड तेज चलाओ क्योंकि बर्ली सी फेस उस वक्त ट्रैफिक बहुत कम होता था, तो वो तेज चलाने लगे। आस्ते आस्ते पुलिस की सायरन्स की आवाज़ पीछे से आने लग गई। हम तो बच्चे थे, समझ नहीं आया कुछ, इतना घबरा गए कि पीछे पुलिस आ गई है। मेरी माता जी जो साथ में बैठी थी, भाई रोको गाड़ी रोको, पुलिस आ रही है, क्या तुम इतने तेज से क्यों चला रहे हो। गाड़ी रोकी और पुलिस के इंस्पेक्टर थे, इनफैक्ट वो उस वक्त सीनियर इंस्पेक्टर थे बहुत, और वो उतरे और उन्होंने कहा शीशा नीचे कीजिए। उन्होंने कहा मदन जी मैंने इसलिए आपको रोका है कि मैंने आपकी नज़रों ने समझा गाना जो सुना है का माल गाना है। और फिर वो चले गए और मेरे पिताजी ने माताजी की तरफ देख के कहा कि देखो मेरे लिए अवार्ड यही है।

0: संगीतकार मदन मोहन ने थोड़े समय तक फौज में नौकरी की थी। जब चेतन आनंद ने बनाई फिल्म हकीकत, तो संगीत की जिम्मेदारी सौंपी मदन मोहन को और उन्होंने इस फिल्म में दिया बड़ा ही शानदार संगीत, जिसकी मिसाल है ये देशभक्ति गीत।
1: कर चले हम पिता जान तन

दोस्तों, मदन मोहन न केवल सुरीले संगीतकार थे बल्कि उन्होंने सुरीला स्वर भी पाया था। वो खुद भी गाते थे। आकाशवाणी लखनऊ में काम करते हुए मदन मोहन ने संगीत के राग रागिनियों का भी रियाज और प्रयोग किया। इन राग रागिनियों का उन्होंने फिल्मी गानों में भी खूब खूब प्रयोग किया।

0: सन 1975, जुलाई का भीगा भीगा मौसम, जुलाई के 14 तारीख को मदन मोहन ने इस फानी दुनिया से अलविदा कह दिया।
1: हम

0: शोध आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का। इस कार्यक्रम के संपादक और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन छाया गीत कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है छाया गीत। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। सामिन, जीवन का ये जाल बहुत जटिल है। कभी प्रेम तो कभी नफरत के बीच झूल रहे होते हैं हम। जिंदगी क्या क्या खेल खेल जाती है पता ही नहीं चलता। प्यार पाते पाते भी चूक जाते हैं हम। पास पहुंचते पहुंचते छिटक जाते हैं। हाथ पहुंच ही रहा होता है और अचानक फासला बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा, और हम ठगे से खड़े रह जाते हैं। बस

कुछ सिरफिरे आपके दिलों से खेल जाते हैं, जज्बातों पे चोट कर जाते हैं, यहां तक कि आपकी जिंदगी से भी खेल जाते हैं कुछ लोग, और फिर दम घुटने लगता है। एक शरारत, एक धोखा, एक जालसाजी जिंदगी में तूफान पैदा कर देती है और हम जीना भूल जाते हैं, हर एक पे विश्वास करना भूल जाते हैं हम।

जब तुमने उठाकर जुल्फों के बाल बांधे थे ना, तब मैंने अपने दिल में लाखों ख्याल बांधे थे। हाँ, जुल्फों के पेच अक्सर उलझा देते हैं प्यार को, जैसे कि हम उलझ कर रह गए, है ना? जितनी जल्दी हम प्रेम की कैद में जाना चाहते हैं, उतनी ही जल्दी सब छूट जाता है अक्सर, क्योंकि प्यार तो धीमी धीमी आंच पर पककर ही ऊष्मा और स्वाद देता है। हाँ।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बीमार शब्दों से प्यार रोने लगता है, वहीं शब्द जब गहरे एहसास से आते हैं तो वही प्यार गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है, नाचने लगता है और झूमने लगता है। शब्दों के इस खेल में कब शब्द बाण बन जाते हैं और कब शूल, क्या पता। लेकिन सच तो ये है कि प्रेम हमारे स्वभाव में होना चाहिए, शब्दों में नहीं। हाँ, प्रेम हमारे स्वभाव में होना चाहिए।

कहते हैं इंसान अगर दिल से खेलना छोड़ दे तो किसी की भी मोहब्बत अधूरी न हो। कुछ प्रेम कहानियां बिना शोर के भी परवान चढ़ जाती हैं, तो कुछ शोर शराबे में ही दब कर रह जाती हैं। तब वो खरोंच, वो याद, वो इश्क जो एक तरफा था, सब दफन हो जाते हैं। असल में रिश्ते कमिटमेंट मांगते हैं, केमिस्ट्री नहीं। हाँ,

प्यार में परत दर परत हम दिल की दीवारों में नए नए रंग चढ़ाते चले जाते हैं। प्रेम का रंग घोलकर हम उन दीवानों को रंगते चले जाते हैं। फिर एक रोज किसी ठोकर से या गहरी सीलन से वो परतें हटने लगती हैं और तब पीछे से वो धूसर रंग झांक रहा होता है। अरे किसी को बिना शर्त चाहकर देखो तो कभी। दिल कोई प्रयोगशाला नहीं है और प्रेम कोई कांच की नली नहीं जिसे मनमर्जी से गर्म और ठंडा करके परखा जाए।

0: बंद कर लूं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश की सेमीकंडक्टर डिजाइन और विनिर्माण परिस्थिति को मजबूत करने के लिए 1,27,500 करोड़ रुपए के बजट के साथ सेमीकंडक्टर मिशन के दूसरे चरण को मंजूरी दी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मीडिया को बताया कि सेमीकॉन मिशन

0: के दूसरे चरण के तहत 4,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद है।
1: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में उद्योग को शुरू करने और स्थापित करने पर ध्यान दिया गया था, दूसरे चरण के अंतर्गत हमारी सभी रणनीतिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी चिप भारत में डिजाइन की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 और वाराणसी रिंग रोड के बीच 46 किलोमीटर से अधिक लंबे 6 लेन वाले ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने ओडिशा और झारखंड के 4 जिलों में 2 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी। श्री वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत के लिए राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति NIPU 2026 को मंजूरी दी है। भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता आज से लागू हो गया है। इसके साथ ही भारत ब्रिटेन सामाजिक सुरक्षा समझौता भी लागू हो गया। सामाजिक सुरक्षा समझौता ब्रिटेन में अस्थायी रूप से काम कर रहे भारतीय पेशेवरों को अमूल्य सहायता प्रदान करेगा और भारतीय उद्यमों की प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूती देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये समझौता भारत के किसानों, उद्यमियों और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नई गति प्रदान करेगा, साथ ही कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों को ब्रिटेन के बाजार तक मजबूत पहुंच प्राप्त करने में मदद करेगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उद्योग जगत ने भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते के लागू होने की सराहना की है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मताधिकार का प्रयोग करके लोग लोकतंत्र में अपनी आस्था का प्रमाण देते हैं। उन्होंने निर्वाचित प्रतिनिधियों से ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ सेवा करके इस विश्वास को कायम रखने का आह्वान किया। राजस्थान विधानसभा की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जयपुर में एक सम्मेलन में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि राज्य विधानसभाएं भारतीय लोकतंत्र की धड़कन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। श्री मोदी जिंद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री दोपहर को चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना सहित 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज नई दिल्ली में दिल्ली नगर निगम MCD और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य दिल्ली में मवेशियों के गोबर का वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल करके कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र लगाना है। इस पहल का उद्देश्य शहर की डेयरियों से निकलने वाले कचरे को यमुना नदी में बहने से रोकना है। इसकी बजाय इस कचरे को बायोगैस और खाद में बदला जाएगा। NDDB मॉडल के तहत डेयरियों और गौशालाओं से गोबर को सीधे गैस और खाद संयंत्र तक पहुंचाया जाएगा। डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के अंतर्गत डिजिटल इंडिया भाषिणी डिवीजन DIBD और पंजाब नेशनल बैंक PNB ने समावेशी बैंकिंग तथा नागरिक केंद्रित वित्तीय सेवाओं के लिए बहुभाषीय AI समाधानों को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करने के वास्ते एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारतीय महिला मुक्केबाजों ने 3 स्वर्ण और 10 रजत पदक अपने नाम किए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के दूसरे सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे अटलांटा में अर्जेंटीना का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इस मैच के विजेता का मुकाबला फाइनल में स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani. The news read by Abhineet Shukla. The Union Cabinet today approved the Semicon 2.0 with a budgetary outlay of 1,27,500 crore rupees to strengthen India's semiconductor design and manufacturing ecosystem. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw announced about the cabinet decisions while briefing media in New Delhi today. Mr. Vaishnaw said, building on the momentum of Semicon 1.0, The scheme aims to further the government